सुप्रभात। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर ये विविध भारती का जयपुर केंद्र है। आज मंगलवार है। शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 16वीं तिथि, तदनुसार 7 जुलाई सन 2026। इस समय सवेरे के 5:57 होने वाले हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: ये विविध भारती का जयपुर केंद्र है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे जिन्हें हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में कल शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया ने 2018 में अपने संबंध सुदृढ़ कर व्यापक रणनीतिक साझेदारी तक पहुंचाया, जिससे लोगों को लाभ हुआ है। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीनों देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। श्री जयशंकर खाड़ी देशों की अपनी 4 राष्ट्र की यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। यात्रा के अन्य चरण में कुवैत और ओमान भी शामिल हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूता उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा कर दी है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। चुनाव की अधिसूचना आज जारी की जाएगी। नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। इन सीटों के लिए मतदान 24 जुलाई को होगा और मतगणना भी उसी दिन होगी। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट के सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा के इस्तीफे स्वीकार कर लिए हैं। दोनों ने राम मंदिर में दान राशि में कथित गड़बड़ी के मामले में नाम सामने आने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। कल अयोध्या में बैठक के बाद ट्रस्ट ने नए महासचिव की नियुक्ति तक कृष्ण मोहन को अंतरिम महासचिव बनाया है। ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी ने कहा कि पूरे मामले में किसी साजिश की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ट्रस्ट ने कहा कि दान में मिली सभी वस्तुएं सुरक्षित हैं।
2: अनेक अच्छे अच्छे पदार्थ जो दिए गए, अनेक वस्तुएं जो प्रदान की गई, वे भी कहाँ गुल हो गई, वे कहाँ चली गई। उन सारी वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों ने आपके सामने आपको दिखाने के लिए लाया है। हम आपको दिखाएंगे और वे सारी वस्तुएं जिनका वर्णन आता है, इन सब को हम आज आपके सामने यहाँ पर रख करके दिखाने वाले हैं। किस प्रकार की 2800 वस्तुओं का रजिस्टर हम लोगों के पास उपलब्ध है और वे सारी वस्तुएं सुरक्षित है।
1: फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में अमेरिका के टेक्सास के डेलस शहर में स्पेन ने पुर्तगाल को 1-0 से हरा दिया। राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में सह मेजबान अमेरिका का सामना बेल्जियम से जारी है। इंग्लैंड, नॉर्वे, मोरक्को और फ्रांस क्वार्टर फाइनल में पहुंच चुके हैं। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब और पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों तथा कर्नाटक में मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये है विविध भारती
4: वंदन वार।

आज का चिंतन। माधव कहते हैं, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसके लिए व्याकुल मत हो, और जो तुम्हारे हाथ में है उसे करने में शंका मत रखो। कर्तव्य पथ पर चलने वाला कभी अकेला नहीं चलता, कभी अकेला नहीं होता, क्योंकि जब नियत शुद्ध हो तो परमात्मा स्वयं सारथी बन जाते हैं। ये था आज का चिंतन। लीजिए अब सुनिए भक्ति रचनाएं।

लीजिए श्रोताओं, अब प्रस्तुत है झरोखा। आपको सुनवा देते हैं आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा। अब से कुछ ही देर में यानी 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस गान। इसका भाग 242 आज प्रसारित होगा। सुबह 6:45 पर और पुनः 6:45 पर आप सुनेंगे संगीत सरिता के अंतर्गत श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। इसका भाग 7 आज प्रसारित होगा। कलाकार बांसुरी वादक पंडित रोनू मजूमदार, संवादिका ममता सिंह, संपादन सहायक झरना सोलंकी और प्रस्तुति अनुश्री पाठक की। सुबह 7 आप सुनेंगे कार्यक्रम भूले बिसरे गीत और 7:30 पर हम है राही प्यार की। सुबह 8 हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार प्रभात आप सुनेंगे और उसके तुरंत बाद 8:15 पर और पुनः दिन में 2 त्रिवेणी का प्रसारण किया जाएगा। आलेख एवं स्वर सोनाली पाठक का, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। नए गानों का कार्यक्रम चित्रलोक आप सुनते हैं सुबह 8:30 पर और रात्रि 8:15 पर। आज के फनकार कार्यक्रम 9:30 पर आज सुबह आप सुनेंगे, जो कि केंद्रित रहेगा अभिनेता दिलीप कुमार पर, प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। सुबह 10 पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा सेहतनामा। स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर आशालता देवलीकर से ममता सिंह की बातचीत, संपादन रीमा जोशी का, प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। कार्यक्रम रंग तरंग आप सुनते हैं सुबह 11:00, 12:05 पर यादों की महफिल और दिन में 1 सुनिएगा सुरीला सफर। सदाबहार नगमे ये कार्यक्रम आप सुनेंगे दोपहर बाद 2:30 पर और 3 कार्यक्रम सखी सहेली। शाम 4 पिटारा के अंतर्गत सुनिएगा सेल्यूलॉइड के सितारे, अभिनेता विपुल देश पांडे से जयंत पात्रिकर की बातचीत, संपादन सहयोग काजल भदरगी का है और प्रस्तुतकर्ता जुबेर खान। शाम 5 छाया गीत, 5:30 पर कार्यक्रम तराने नए पुराने। शाम को आप सुनेंगे 6:30 पर झरोखा, 6:35 पर समय रहेगा संध्या रंजन का। फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला शाम 7:00, 7:45 पर सुनिएगा इंद्रधनुष के अंतर्गत पॉप एक्सप्रेस। रात्रि 8 हवा महल के अंतर्गत झलकी मुंशी इतवारी लाल, लेखन नरेश मिश्रा का, निर्देशक विनोद रस्तोगी, झलकी का नाम मुंशी इतवारी लाल। आठ 8:45 पर संध्या समाचार संध्या आप सुनेंगे और रात्रि 9 कार्यक्रम आपके लिए। रात 9:30 पर आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित रहेगा संगीतकार अनिल विश्वास पर, संगीतकार अनिल विश्वास, प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
कार्यक्रम छाया गीत आप सुनेंगे रात्रि 10 बजे और 10:30 पर ढलती जाए रात। रात्रि 11 बजे रंग तरंग का पुनः प्रसारण। तो ये था आज के कार्यक्रमों की रूपरेखा झरोका के अंतर्गत। लीजिए अब प्रस्तुत है रामचरितमानस गान का भाग 242।

सीता के पांव से रक्त बहता देख श्री राम ने धनुष पर सरकंडे का बाण चढ़ा दुष्ट कौवे के पीछे छोड़ दिया। मंत्र से प्रेरित बाण कौवे का पीछा करने लगा। भयभीत हो जयंत अपना असली रूप धारण कर पिता इंद्र की शरण में पहुंचा, पर इंद्र ने रामद्रोही जान उसे शरण नहीं दी। प्राण बचाने के लिए जयंत ब्रह्मलोक शिवलोक आदि में भागते भागते थक गया, किंतु कहीं भी उसे शरण नहीं मिली। जयंत की दशा देख देवर्षि नारद को दया आई और उन्होंने उसे श्री राम की ही शरण जाने को कहा। जयंत को तब तक प्रभु की शक्ति का पूरा आभास मिल चुका था। उनसे उसने अपने प्राणों की भीख मांगी। पार्वती को प्रभु महिमा की कथा सुनाते हुए भगवान शंकर कहते हैं, ऐसे दयालु हैं प्रभु कि प्राणों की भिक्षा मांगते कौवे की आर्तवाणी सुनकर उसे एक आंख का काना करके छोड़ दिया। चित्रकूट में निवास करते हुए कुछ काल बीत जाने पर एक दिन श्रीराम के मन में ये विचार आया कि बहुत लोगों को उनके निवास स्थान की सूचना मिल चुकी है, फलस्वरूप उनके दर्शनों को आने वालों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जाएगी। अतः अपने वन प्रवास को अज्ञात रखने के लिए किसी अन्य स्थान के लिए प्रस्थान करना चाहिए। समय उपयुक्त जान वहां के निवासी मुनिगण आदि से विदा लेकर श्री राम अनुज लक्ष्मण तथा पत्नी सीता को लेकर गहन वन की ओर अग्रसर हुए। राह में ऋषि अत्रि का आश्रम पड़ता था। श्री राम के आगमन का समाचार पाकर ऋषिवर उनकी अगवानी के लिए दौड़ते हुए आए।

0: श्रोताओं नमस्कार। संगीत सरिता कार्यक्रम में आपको सुनवा रहे हैं श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत कर रही हैं ममता सिंह। लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी।
1: दोस्तों नमस्कार, पंडित जी एक बार फिर स्वागत है आज की इस कड़ी में आपका। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी।
1: पंडित जी बताइए कि आपने बहुत सारी फिल्मों में बांसुरी बजाई है, हमारे बहुत सारे श्रोताओं को जानकारी है, कुछ श्रोताओं को जानकारी नहीं है, तो हम ये बता दें कि फिल्म देश परदेश है, फिल्म बेताब है जिसमें आपकी बांसुरी की सुरीली तान है, जब हम ध्यान से सुनेंगे तो पाएंगे। तो आप बातचीत के दौरान जिक्र कर रहे थे धर्मेंद्र साहब के बारे में, देव साहब के बारे में।
2: जी, सबसे पहले तो धर्म जी बहुत जिंदा दिल इंसान थे और मैं 9 भाषाएं बोलता हूँ, उसमें एक पंजाबी भी है।
1: जी जी।
2: तो मेरे साथ तो पंजाबी में ही बात करते थे।
1: अच्छा, कौन कौन सी 9 भाषाएं आपको? हिंदी,
2: भोजपुरी, बंगाली, गुजराती, मराठी, पंजाबी, राजस्थानी तो, और भी शायद कोई छूट गया, मैं बोलता हूँ। तो मेरे नाल उन्होंने तो पंजाबी गल करते सन मेरे नाल।
1: वाह।
2: तो अपने बेटे को लॉन्च कर रहे थे सनी को बेताब में, तो सनी भी स्टूडियो में आया हुआ था और धर्म जी भी आए थे। एक बड़ा मार्मिक एक दृश्य था फिल्म का। उस फिल्म में सनी देओल का बड़ा प्यारा सा एक डॉग था, कुत्ता, और जो उसमें विलेन थे वो सनी को मारने के लिए उस कुत्ते को गोली मार देते हैं, और सनी उस क्योंकि प्यार उसको बहुत ना
1: गले से लगा के
2: रो रहा है, और उसमें मेरी बांसुरी। और केसी लॉर्ड बहुत बड़े म्यूजिशियन हुए।
1: जी जी।
2: पंचमदा के राइट हैंड एकदम।
1: जी।
2: केसी लॉर्ड ने एकोलाइट लगाया था और मैंने भी दिल चीर के बजाया डी के बांसुरी में।
1: जी।
2: और वो ऐसे कि एक एक स्वर उस कुत्ते के खून बह रहा है और यहाँ बांसुरी में से आंसू निकल रहा है।
1: जी जी। तो वो क्या यहाँ पर हमारे श्रोताओं को आप सुना सकते हैं?
2: वो तो इम्प्रोवाइज था। जब हम लोग बैकग्राउंड म्यूजिक बजाते हैं ना
1: जी,
2: तो हम लोग जैसे कि राग में इम्प्रोवाइज करके एक एक नोट कर करके वो नहीं करते, हम

0: वाह, सचमुच दिल चीर देने वाली,
1: दिल चीर देने वाला वो सीन था। जब टेक ओके हो गया, बांसुरी के अलावा 40-50 वायलिन एक नोट को होल्ड किए हुए थे और उसके ऊपर बांसुरी बज रही थी, और साथ में वाइब्रोफोन बज रहा था। और केसी लॉर्ड तो पारसी थे
0: जी जी,
1: और उनका छोटा भाई था भजी लॉर्ड, भजी ना बोलते हैं
0: जी,
1: केसी जी गुजर गए, भजी लॉर्ड अभी जीवित है
0: जी।
1: कमाल के लोग, और मैं तो खुद उनका दूसरे कारण से फैन हूँ, क्योंकि रूप तेरा मस्ताना में जो उन्होंने एकॉर्डियन बजाया, तो वो सेंसुअलिटी एकॉर्डियन से कैसे पैदा हो सकती है ये उन्होंने बताया। और मनोहरी दास जैसे सैक्सोफोन प्लेयर
0: जी, उस
1: पे हावी हो गए वो, ये केसी लॉर्ड ही कर सकते हैं
0: जी जी।
1: तो धर्म जी इतने शेर दिल थे, और पुत्र कमाल कर दिता यार, तेरा जवाब नहीं। वो मैंने हंजू हंजू कहते ने पंजाबी विच, आंसू को हंजू कहते हैं, ते कहते मेरे हंजू आ गए, अखा तो हंजू आ गए, बड़ा बड़ी चंगी बंसरी कहते ने पंजाबी में, कहते बड़ा सुंदर बंसरी बजाया पंचम दा, ओए पंचम ओ कितों लाया ये मुंडे नू, ये लड़के को कहां से लाया। तो उस दिन से, उसके बाद उन्होंने स्टूडियो बनाया सनी, उस स्टूडियो का नाम ही रखा उन्होंने सनी,
0: जी जी,
1: सनी सुपर साउंड। मैं जब भी जाता था, धर्म जी कभी शूटिंग से आके थोड़ा रिलैक्स होके पांव फैला के बैठते थे, तो मैं उनसे जाके हाथ मिलाता था, क्योंकि मुझे ये शौक था पहलवानी का थोड़ा,
0: अच्छा,
1: तो मुझे मालूम था ये एक्चुअल रेसलर है
0: जी जी,
1: और एक बार दारा सिंह को उठा लिए थे
0: जी जी, और फिल्मों में तो उनकी दहाड़ मशहूर है।
1: हाँ, तो उनके हाथ को जब मैं हाथ मिलाता था
0: जी,
1: तो लगता था कि मैं कुछ 10 हाथ का ताकत और की हाल है बोल के जब हाथ पकड़ते थे तो लगता था हाथ टूट जाएगा मेरा, उस अनुभव के वजह से मैं हाथ मिलाता था
0: जी जी।
1: ये जो पुराने एक्टर लोग थे, यहाँ तक कि राजेश खन्ना भी
0: जी,
1: जब हमें और जीने की चाहत ना होती मैं बजाया मैंने, तो किशोर दा तो रुला दिए उस गाने को गा के, तो काका हम लोग बोलते हैं राजेश खन्ना को
0: जी जी बिल्कुल,
1: तो काका उस वक्त भी जाके किशोर दा का पांव छू लिए। अब बताइए, किशोर दा तो उनसे बहुत बड़े थे
0: जी
1: उम्र में, मगर इंडस्ट्री में पांव छूने का इतना रीत नहीं है, वो शास्त्रीय संगीत में है
0: जी,
1: उधर तो बस हाय हेलो हाय दादा नमस्कार प्रणाम करने का चलन कम है, मगर काका को मैंने अपने आंख से देखा किशोर दा का पांव छूते हुए,
0: गजब,
1: कि दादा आज आपने जो गाया मिलन से भी कठिन जुदाई तुम्हारी, हमें और जीने की चाहत ना होती अगर तुम ना होते
0: जी, जी।
1: तो दादा ने जिस गाने को भी छुआ उसको अमर कर दिया। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, जिस प्रोग्राम मैंने पिछले एपिसोड में बताया कि मैंने कह दिया था कि मैं ऑर्केस्ट्रा पार्टी में बजाता नहीं, मगर बजाने में गया, तो चिंगारी जब गा रहे थे तो ऐसे सुर लगाए कि उसके अंत में एक पीस आता है, देखिए।

0: ये रन मैं भूल ही गया।
1: जी, क्या बात है, बहुत सुंदर।
0: और दादा भी दादा, किशोर कुमार, किशोर कुमार, उनके जैसा व्यक्तित्व। बहुत दिन से इंडस्ट्री सोच रहा है कि उनके ऊपर फिल्म बनाई जाए, मगर उनका रोल करेगा कौन?
1: ऐसा जिंदा दिल इंसान,
0: ऐसा जिंदा दिल, ऐसा कॉमेडियन, ऐसा एक्सेंट्रिक
1: बिल्कुल।
0: और ऐसा अनप्रिडिक्टेबल, जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कभी क्या करेगा। जो डाकिया डाक लाया को साइकिल में बैठ के गाया उन्होंने,
1: हरफन मौला तभी तो उनको कहा
0: उनको
1: जाता था ना।
0: स्टूडियो में साइकिल लाना पड़ा, बोले साइकिल में जाऊंगा तभी, नहीं तो नहीं गाऊंगा।
1: जी, गजब,
0: गजब के आदमी थे।
1: बिल्कुल। तो ये तो किशोरदा की बातें हो गई, और देव साहब से भी जुड़ी कुछ बातें।
0: देव साहब से मुझे मिलवाया था बप्पी दा ने, वैसे बप्पी लाड़ी ने, मगर एक फिल्म में मैं पहली बार जो मिला उनसे, वो आनंद आनंद, सुनील आनंद, जो बाद में चल नहीं पाए, तो लॉन्च किया था उसको। और बीती जाए जाए जाए जिंदगानी, ये गाना था किशोर दा का,
1: जी
0: और अभिजीत का डुएट था। और अभिजीत को बहुत आशीर्वाद दे रहे थे किशोर दा,
1: जी जी
0: जैसे बड़ा गुरु होता है।
1: बिल्कुल।
0: तो वहां भी देव साहब के, मैं बहुत खुश हूं इस बच्चे की बांसुरी सुनकर, जिंदगी। तो वो हर म्यूजिशियन के पास जाके देव साहब तारीफ करते थे। और उसके बाद देश परदेश, राजू, हम लोग राजू भाई कहते हैं राजेश
1: जी
0: रोशन
1: जी जी
0: को, उनका म्यूजिक था देश परदेश में,
1: जी
0: तो वहां भी मुझे पहचान गए, अरे तू कैसा है, क्या हाल है। तो उनके अंदर जो रोमांसिंग विथ लाइफ, उन्होंने जो किताब लिखी है, वो सचमुच पढ़ने लायक किताब है,
1: जी
0: रोमांसिंग विथ लाइफ, देवानंद।
1: जी
0: तो देवताओं का आनंद उनके अंदर
1: भीतर,
0: था।
1: तभी तो सदाबहार हीरो कहे जाते हैं
0: हाँ,
1: आज भी
0: देव साहब
1: लोग।
0: जैसा
1: हाँ,
0: कोई नहीं होगा।
1: उस फिल्म में आपकी बांसुरी है ना,
0: मेरी
1: फिल्म
0: बांसुरी बैकग्राउंड में है,
1: हाँ, तो उसका कुछ टुकड़ा हमारे श्रोताओं को सुनाएंगे,
0: नहीं
1: याद है
0: वो
1: तो?
0: इम्प्रोवाइज्ड था, पूरा
1: अच्छा।
0: पूरा इम्प्रोवाइज्ड। टीना मुनीम को उसमें लॉन्च किया था।
1: जी।
0: और हाँ, मुझे याद है उसमें एक सीन में देव साहब रोमांस कर रहे हैं, क्योंकि वो उनका उन्होंने उम्र को तो कभी माना ही नहीं, और इसीलिए उन्होंने ये भी कहा था कि मेरा मरने के बाद कोई फोटो ना खींचे, उनके मरने के बाद का कोई फोटो कहीं नहीं है, लंदन में गुजरे।
1: जी,
0: हाँ, और चुपचाप
1: चले
0: बोले थे
1: गए।
0: कि मेरा अंत्येष्टि कर देना चुपचाप, कोई भीड़ भाड़ नहीं चाहिए, भगवान के आदमी थे। तो उसमें बजाना था तो चंचल प्रकृति का बजाना था, जैसे
1: जी
0: हम लोग फिल्म में बजाते हैं तो कैसे होता है कि इतना सा पीस भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
1: बिल्कुल।

0: इसको ट्रिल बोलते हैं
1: जी जी
0: और
1: अच्छा।
0: फ्लटरिंग ये है ये फ्लटरिंग है और डारा डारा डारा डारा डारा डारा डारा डारा डारा डारा डारा तो हम लोग का तुकु तुकु तुकु तुकु तुकु तुकु तुकु तुकु तुकु कल पेश एक बार जरा तुक तुक सुना दीजिए तुक तुक में गॉड गिफ्टेड है मेरा शिष्य एक सेकंड उसको सुनिए
1: जी
0: क्या क्लैरिटी है देखिए
1: गजब अद्भुत है अद्भुत है अद्भुत है
0: जीते रहो कल्पेश जैसे वो बोलता है कि मैं भाग्यवान हूं ऐसे गुरु मिले मैं कहता हूं मैं भाग्यवान हूं कि मुझे ऐसा शिष्य मिला
1: क्या बात है
0: जो इतना सुरीला
1: तो ये चंचल प्रकृति की तान थी बांसुरी की
0: जी जो देश परदेश में मैंने बजाया
1: जी
0: तो जब ट्रिल बजाया तो बोले कि उनका वही अंदाज क्या बात है क्या बात है
1: जी
0: बहुत अच्छे ट्रिल तो बड़ा अच्छा एक एक शब्द उनको मालूम था कि इसको ट्रिल कहते हैं कितना म्यूजिक में वो डीप थे
1: जी जी
0: आपको तो मालूम ही है रफी साहब ने कितना रिटेक किया था गाइड के गाने के लिए
1: जी जी
0: उसमें
1: जी।
0: दुख नहीं आ रहा था
1: हाँ फिर वो रोए थे
0: फिर
1: बैठकर रोने पर फिर वो इमोशन तो, आया था जी
0: मैं चाहूंगा तो, कि तो, हमारी ऑडियंस को आज बेताब का ये शब्बीर कुमार का गाना पर्वतों से आज मैं टकरा गया ये हमारे ऑडियंस को सुना दीजिए।

0: शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका। श्रोताओं, संगीत सरिता कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की सातवीं कड़ी। आमंत्रित कलाकार हैं सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित रोनू मजुमदार। आपसे बातचीत की है ममता सिंह ने। बांसुरी संगत कल्पेश सांचला की और तबला संगति अजीत पाठक की। श्रोताओं, इस श्रृंखला के लिए तकनीकी सहयोगी किरण बंग, संपादन सहयोगी झरना सोलंकी और विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हम बस थोड़ी ही देर में हाजिर होंगे।
2: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं, असरदार।
3: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं, असरदार।
4: प्रत्येक बुधवार सुबह 9:15 पर सुनिए कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ। प्रायोजक हैं लेजर चिकित्सा में अग्रणी नाम आनंद आई हॉस्पिटल जयपुर।
5: 9772097720।
6: प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे सुनिए जयमाला। प्रायोजक हैं देव दर्शन ओवरसीज।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

लीजिए श्रोताओं, कार्यक्रम भूले बिसरे गीत लेकर हम हाजिर हैं। आप सभी का हम स्वागत करते हैं तहे दिल से। आज मैं हूं आपके साथ पूजा नारानिया। आप सभी विविध भारती सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आइए आपको कार्यक्रम का पहला गीत सुनवाते हैं और आपको बताते हैं कि आज संगीतकार अनिल बिस्वास का जन्मदिन है, तो उन्हीं को याद करते हुए उनके गीत हमने आज इस कार्यक्रम में शामिल किए हैं। पहला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं छोटी छोटी बातें, इस फिल्म से। लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ें हैं, शैलेंद्र के बोल, अनिल बिस्वास का संगीत।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम भूले बिसरे गीत विविध भारती से। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अंगुली माला, इस फिल्म का गीत मीना कपूर और साथियों के स्वर में। भरत व्यास ने इस गीत को लिखा है और धुन बनाई है अनिल बिस्वास ने।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत में अगला गीत फिल्म फरीब से आपको सुनवा रहे हैं। मजू सुल्तानपुरी ने इस गीत के बोल लिखे हैं, अनिल बिस्वास ने संगीत से सजाया है और आवाजें हैं लता मंगेशकर और किशोर कुमार की।

इस छोटे से अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत में स्वागत है। अब आपको सुनवाते हैं किस्मत फिल्म का गीत। पारुल घोष की आवाज में कवि प्रदीप का लिखा गीत है, संगीत है अनिल बिस्वास का।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीज़ों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
3: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली कलियां।
2: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत भूले बिसरे गीत।
4: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
2: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज़।

0: सुनहरे गानों का अंदाज आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: अब आपको सुनवाते हैं हमदर्द फिल्म का गीत, मन्ना डे और लता मंगेशकर की आवाजों में। गीतकार प्रेम धवन और संगीतकार अनिल विश्वास।

ये आवाज़ थी पारुल घोष की। हमारी बात इस फिल्म का गीत था। पंडित नरेंद्र शर्मा ने इस गीत को लिखा था और अनिल विश्वास का संगीत था।

0: मुकेश का गाया ये गीत और इसी गीत के साथ कार्यक्रम भूले बिसरे गीत अब यहीं संपन्न होता है। आज संगीतकार अनिल बिस्वास का जन्मदिन था, उन्हें याद करते हुए हमने आज कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में उन्हीं के संगीतबद्ध किए गीत आपको सुनवाए।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम। हम है राही प्यार के बस थोड़ी ही देर में।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

कार्यक्रम हम है राही प्यार की, आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ पूजा नारायणिया। एक बार फिर से स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार और आपको सुनवाते हैं इस कार्यक्रम का पहला गीत, दिल दिया दर्द लिया। इस फिल्म से आशा भोसले और रफ़ी मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ें हैं। शकील बदायूनी ने लिखा है ये गीत और नौशाद का संगीत।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर। जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
2: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हैं राही प्यार की। अब आपको सुनवाते हैं नौशाद के संगीत से सजा, शकील बदायूनी के शब्दों से सजा ये गीत, मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजों में राम और श्याम फिल्म से।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हम ही राही प्यार की इस कार्यक्रम में अब वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम हेरा ही प्यार के। आइए आपको सुनवाते हैं गंगा जमुना फिल्म का ये गीत, शकील बदायूनी के शब्द, नौशाद का ही संगीत, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफी और साथियों के स्वर।

0: छोड़।
1: गुड मॉर्निंग।
0: छोड़ हाथ से।
1: गुड मॉर्निंग 1 2 3 4।
0: अरे 1 2 3 4 वाला हाथ
1: छोड़। 1 2 3 4।
0: मैं कैसे हूँ?
1: 4। अरे 1 2 3 4। 1 2 3 4।
0: तुमके थप्पड़ रखे।
1: आवर थे आवर।
2: आवर का आवर।
1: आवर का आवर।
0: अरे इधर आवर थे आवर।
2: आप बड़ा आया अंग्रेजी बोलने वाला।
1: कॉपी। Guess what? Water hand, right hand, बंदूक band, ting पटा।

0: Japan. Hammered in Japan, the people in Japan. Ye fine, fine suta, ye long, long puta, ye pipe wala hookah, ye suta, puta, puta, suta, hookah, buka, very, very good, I like you, Mary Jaan.
1: गोपी फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे. लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर की आवाजों में राजेंद्र कृष्ण के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत था. अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मधुमती फिल्म से लता मंगेशकर और मुकेश के स्वरों में. शैलेंद्र के बोल हैं, सलील चौधरी का संगीत.

नया दौर इस फिल्म का गीत आपको इस कार्यक्रम के आखिर में सुनवाने जा रहे हैं आशा भोसले और मोहम्मद रफी के स्वरों में साहिल लुधियानवी की रचना ओपी नैयर का संगीत।

आशा भोसले और मोहम्मद रफ़ी का गाया ये गीत नया दौर फिल्म से आप सुन रहे थे और ये था कार्यक्रम हम है राही प्यार की का आखिरी गीत। इसी के साथ ये कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है।

0: ये विविध भारती का जयपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे। समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: कैच द रेन, बारिश के पानी की एक एक बूंद को हमें बचाना है, तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं, रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति मिलने की उम्मीद। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों का पाकिस्तान को 48 घंटे का अल्टीमेटम। मांगे पूरी नहीं होने पर 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की दी चेतावनी। भारत ने अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण सहित कुल 20 पदक जीते। और फुटबॉल में स्पेन और बेल्जियम फीफा विश्व कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान भी करेंगे।
4: प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रम की शुरुआत सुबह 10:30 बजे औपचारिक स्वागत समारोह से होगी। इसके बाद अतिथि पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में भी कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां श्री मोदी प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ भारत इंडोनेशिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान करने के लिए चर्चा करने के लिए उत्सुक हैं। इस साझेदारी की स्थापना उनकी 2018 की यात्रा के दौरान हुई थी। संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
3: इंडोनेशिया में भारत के राजदूत संदीप चक्रवर्ती ने कहा है कि प्रधानमंत्री की यात्रा से रक्षा, व्यापार, ऊर्जा, खाद्य सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े कई समझौतों का मार्ग प्रशस्त होने की उम्मीद है। एक निजी समाचार चैनल से बातचीत में श्री चक्रवर्ती ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस यात्रा से द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूती मिलेगी।
5: India and Indonesia are very close and strategic partners.
6: भारत और इंडोनेशिया बेहद करीबी और रणनीतिक साझेदार हैं। निकोबार द्वीप समूह में स्थित भारत का सबसे दक्षिणी छोर इंडोनेशिया के आचे से मात्र 160 किलोमीटर दूर है। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो की बेहद सफल यात्रा के बाद हमारे संबंध और भी मजबूत हो रहे हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा इसे और भी मजबूती देगी।
3: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन के शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर 4 खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। विदेश मंत्री ने शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शुभकामनाएं दी। डॉक्टर जयशंकर ने बहरीन में प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। डॉक्टर जयशंकर कुवैत और ओमान भी जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सहकारिता मंत्रालय ने पिछले 5 वर्षों में सहकारिता क्षेत्र से जुड़े लगभग 30 करोड़ लोगों के जीवन में नई ऊर्जा का संचार किया है। नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2021 में स्थापित इस मंत्रालय ने सहकारिता तंत्र को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी आधारित और प्रतिस्पर्धी बनाया है। श्री शाह ने कहा कि सहकारिता विभाग ने प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति की है।
7: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने का काम किया है। सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है। भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का निर्माण, डिजिटल सेवाएं, बैंकिंग, मोबिलिटी, लॉजिस्टिक और हरित ऊर्जा, ये सबको एक माला में पिरोने का काम ये 5 साल में किया है।
3: मंत्रालय की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए श्री शाह ने कहा कि 30 क्षेत्रों में फैली 85 लाख से अधिक सहकारी समितियों और 32 करोड़ सदस्यों को सम्मिलित करने वाला एक एकीकृत डिजिटल डेटाबेस बनाया गया है। सहकारिता मंत्री ने कहा कि सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स की भूमिका का विस्तार किया है। इससे वे साझा सेवा केंद्रों के माध्यम से 300 से अधिक सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
7: आज पूरे देश के पैक्स एक ही बायलॉज के तहत काम कर रहे हैं। मॉडल बायलॉज को स्वीकार कर लिया, 300 गतिविधियों को 55,000 पैक्स के माध्यम से हम CSC की सेवाएं दे रहे हैं।

0: खुदरा आउटलेट किया है और 300 पैक्स गैस के वितरण में लग गए हैं और लगभग 150 पैक्स जल आपूर्ति योजना का मेंटेनेंस का भी काम कर रहे हैं।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1455 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर पीओके में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर संयुक्त अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम देते हुए चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। कमेटी ने एक औपचारिक घोषणा में कहा कि उनका मौजूदा धरना प्रदर्शन तब तक अनिश्चित काल तक जारी रहेगा जब तक कि उनकी सभी मांगे पूरी नहीं की जाती। कमेटी ने पीओके के निवासियों और कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों से 9 जुलाई को होने वाले विरोध प्रदर्शन में भाग लेने का आह्वान किया है। भारतीय नौसेना शनिवार को विशाखापट्टनम में अपने छठे स्वदेशी प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट महेंद्रगिरी F-38 का जलावतरण करेगी। एक रिपोर्ट।
2: रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस स्टील्थ फ्रिगेट को भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा आंतरिक रूप से डिजाइन किया गया है। इस जहाज का नाम पूर्वी घाट की भव्य महेंद्रगिरी पर्वत श्रृंखला के नाम पर रखा गया है। मंत्रालय ने कहा कि यह जहाज लचीलेपन, शक्ति और अटूट संकल्प का प्रतीक है। महेंद्रगिरी जहाज अब एक विशिष्ट विरासत बनने और भारत के समुद्री इतिहास में एक और गौरवशाली अध्याय जोड़ने के लिए तैयार है। यह जहाज आधुनिक संयुक्त डीजल या गैस प्रणोदन प्रणाली से संचालित है। यह इसे समुद्री अभियानों के पूरे स्पेक्ट्रम में असाधारण मजबूती के साथ उच्च गति संचालन करने में सक्षम बनाता है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: जनजातीय कार्य मंत्रालय आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को सुदृढ़ बनाने पर 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन करेगा। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। एक रिपोर्ट।
3: इस कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी भाग लेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद

0: संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। यह मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं और पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों, सांस्कृतिक संसाधन केंद्रों और जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: जम्मू कश्मीर सरकार ने जानलेवा बीमारियों से जूझ रहे आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को राहत देने के लिए निर्वाचन क्षेत्र विकास निधि CDF योजना के दिशा निर्देशों में संशोधन किया है। नई व्यवस्था के अंतर्गत प्रत्येक विधायक अपने CDF से 20 लाख रुपए तक की राशि उपलब्ध करा सकेगा। ये सहायता गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों और अन्य अधिसूचित आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के मरीजों को दी जाएंगी। और अब खेल खबरें। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक जीते हैं। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, जबकि पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रही। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। भारतीय टीम श्रृंखला में पहली जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। और बात फीफा फुटबॉल विश्व कप की। फुटबॉल में बेल्जियम ने सिएटल में चल रहे फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। बेल्जियम अब शुक्रवार को लॉस एंजल्स स्टेडियम में क्वार्टर फाइनल में स्पेन का सामना करेगा। इससे पहले स्पेन ने कल रात डलास स्टेडियम में राउंड ऑफ 16 मुकाबले में पुर्तगाल को 1-0 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई थी। अटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मैच में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ, मध्य महाराष्ट्र और तटीय कर्नाटक में आज मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले दो दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों और कर्नाटक के भीतरी हिस्सों में भी मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, केरलम, माहे, ओडिशा, राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में भी अगले 3 से 4 दिनों तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
2: धन्यवाद विशाल। अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में ट्रस्ट के महासचिव और सदस्य के इस्तीफे आज के सभी अखबारों की पहली बड़ी खबर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, चंपत राय और अनिल मिश्र को कामकाज से विश्राम, इस्तीफे मंजूर। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, राम ट्रस्ट कृष्ण भरोसे, पूर्व IFS अधिकारी कृष्ण मोहन बनाए गए अंतरिम महासचिव। दैनिक जागरण ने SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट के हवाले से लिखा है, ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र दोषी, चंपत राय का नाम गायब। घुसपैठियों को चुन चुन कर निकालेंगे, भ्रष्टाचारियों से वसूलेंगे पाई पाई, गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान अमर उजाला में है। कोलकाता में एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा, घुसपैठियों की पहचान कर वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहलगाम आतंकी हमले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने हाफिज सईद को बनाया आरोपी। देशबंधु के अनुसार पूरक आरोप पत्र में पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्करे तैयबा के सरगना पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने और आतंकी साजिश रचने का आरोप। नीट PG परीक्षा के पैटर्न में फेरबदल की खबर हिंदुस्तान में है। 30 अगस्त को कंप्यूटर बेस्ड मोड में आयोजित होगी परीक्षा, अब 200 की जगह 180 सवाल पूछे जाएंगे। बार बार यातायात नियमों के उल्लंघन पर निलंबित होगा ड्राइविंग लाइसेंस। दैनिक जागरण के अनुसार बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए सड़क परिवहन मंत्रालय की मोटर वाहन कानून में बदलाव की तैयारी।
1: धन्यवाद सरफिरोजी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ बातचीत करेंगे। व्यापक रणनीतिक साझेदारी

श्रोताओं नमस्कार। आज त्रिवेणी में बातें होंगी नाम पर। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। समय के साथ लोगों के नाम, चेहरे और बाहरी पहचान धुंधली पड़ जाती है। आज जो व्यक्ति प्रसिद्ध है, हो सकता है आने वाली पीढ़ियां उनका नाम भी ना जाने, लेकिन उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्य, उनके विचार और उनकी मधुर वाणी लोगों के मन में लंबे समय तक जीवित रहते हैं। मनुष्य अपने जीवन में नाम, यश और प्रसिद्धि पाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। वो चाहते हैं कि लोग उन्हें पहचाने, उनकी प्रशंसा करें, लेकिन समय की धूल बड़े बड़े नामों को भी ढक देती है। कई ऐसे लोग हुए जिनके नाम भले ही कम लोग जानते हों, लेकिन उनके कार्य आज भी समाज को प्रेरणा देते हैं। सुंदर चेहरा और बाहरी आकर्षण स्थायी नहीं होते। उम्र के साथ चेहरा बदल जाता है, लेकिन व्यक्ति का चरित्र, उसका व्यवहार और उसकी अच्छाई लोगों के हृदय में अमिट छाप छोड़ जाती है। इसलिए हमें अपने व्यक्तित्व को सुंदर बनाने पर अधिक ध्यान देना नहीं चाहिए। केवल बाहरी रूप को संवारने पर हमें ध्यान देना

जब कोई व्यक्ति बार बार किसी का नाम लेता है तो वो नाम उसके लिए मात्र एक संबोधन नहीं रह जाता, बल्कि उसकी भावनाओं, स्मृतियों और अनुभूतियों का केंद्र बन जाता है। सांसारिक जीवन में भी किसी प्रिय व्यक्ति का नाम मन में बार बार आना स्वाभाविक है। जब कोई व्यक्ति हमारे हृदय के बहुत निकट होता है तो उसका नाम हमारी सोच, हमारी बातों और हमारी यादों में बार बार उभरता है। ये प्रेम और आत्मीयता का प्रतीक हो सकता है। हालांकि जीवन का संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है, ताकि किसी एक व्यक्ति या भावना में इतना ना डूब जाए कि अपने कर्तव्यों और उद्देश्यों को भूल जाए। वास्तव में किसी का नाम जपते रहना उस व्यक्ति के प्रति सम्मान, स्नेह, श्रद्धा या प्रेम का संकेत हो सकता है।

हर माता पिता का सपना होता है कि उनकी संतान जीवन में कुछ ऐसा करे जिससे उनका सर गर्व से ऊंचा हो जाए। जब कोई बच्चा मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, तब लोग उसके साथ साथ उसके परिवार की भी प्रशंसा करते हैं। नाम रोशन करना केवल बड़े पद या धन प्राप्त करने से नहीं होता है। एक अच्छा इंसान बनकर, दूसरों की सहायता करके, सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलकर भी व्यक्ति अपने परिवार और समाज का नाम उज्जवल कर सकता है। इतिहास में अनेक महान व्यक्तियों ने अपने कर्मों से अपने माता पिता और देश का नाम रोशन किया है।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: श्रोताओं, ये है देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती। थोड़ी ही देर में कार्यक्रम चित्रलोक लेकर हम हाजिर होंगे।

0: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
1: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
2: प्रत्येक बुधवार सुबह 9:15 पर सुनिए कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ। प्रायोजक हैं लेजर चिकित्सा में अग्रणी नाम आनंद आई हॉस्पिटल जयपुर।
3: 9772097720।
4: तुमने भरोसा दिलाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बाट।
5: पर भैया ये जीवन नागजी के कांटे बाट नहीं है,
4: तुम्ही ने तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
5: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
6: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं, जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बाट के लिए 131-132 आतिश मार्केट।
7: जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे ट्रेडमार्क जस्टिस देख कर ही खरीदें।
8: प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे सुनिए जयमाला, प्रायोजक हैं देव दर्शन ओवरसीज।
9: श्रोताओं लीजिए, हम हाजिर हैं कार्यक्रम चित्रलोक लेकर आप सभी श्रोताओं का। इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करती हूँ मैं पूजा नारानिया। कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार आप सभी की मंगल कामनाओं के साथ। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम चित्रलोक और सुनवाते हैं पहला गीत फिल्म दिल से। इस फिल्म से ये गीत है लता मंगेशकर, एमजी श्रीकुमार की आवाजें, गुलजार के बोल, एआर रहमान का संगीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम सुन रहे हैं आप चित्रलोक विविध भारती से। आज है 1 जुलाई 2026 से 7 जुलाई 2026 वन महोत्सव का सप्ताह का आज अंतिम दिन है, लेकिन प्रकृति की सेवा का संकल्प आज से और भी मजबूत होना चाहिए। आइए हम सभी मिलकर एक पौधा लगाएं, उसकी नियमित देखभाल करें, एक क्या उससे ज़्यादा भी लगा सकते हैं, लगाना ही चाहिए, और अपने परिवार व आसपास के लोगों को भी पेड़ लगाने के लिए हमें प्रेरित करना चाहिए। पेड़ हमें शुद्ध हवा, ठंडी छाया, फल, औषधियाँ और जीवन देते हैं। इसीलिए अनावश्यक पेड़ों की कटाई को रोकना चाहिए, जल की बचत करना चाहिए, प्लास्टिक का कम उपयोग करना चाहिए और अपने आसपास की हरियाली को सुरक्षित रखने का संकल्प करना चाहिए। लिया आपने ये संकल्प? याद रखिए, आज लगाया गया एक छोटा सा पौधा आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल उपहार बन सकता है। आइए वन महोत्सव सप्ताह के समापन पर प्रकृति संरक्षण को अपनी रोजमर्रा की आदत बनाएं और धरती को और अधिक हरा भरा बनाने में अपना योगदान दें। और अब आपको सुनवाते हैं ये गीत श्रेया घोषाल और उदय मजूमदार की आवाजों में, गुरु फिल्म से, गुलजार के बोल ए आर रहमान का ही संगीत।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
3: नसीब इंसान का।
2: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें।
2: श्रोताओं, अब वक्त है एक छोटी सी अंतराल का।
3: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
4: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
3: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
4: सच?
3: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
4: समझ गया।

श्रोताओं, इस अंतराल के बाद आप सभी का एक बार फिर से कार्यक्रम चित्रलोक में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा नारायणिया। आइए अब आपको सुनवाते हैं बेवफा। इस फिल्म का गीत कुमार सानू, अलका याग्निक और सपना मुखर्जी की आवाजों में, समीर का लिखा गीत, नदीम श्रवण का संगीत।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
3: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
4: सुनिधि चौहान और सोनू निगम की युगल स्वरों में अगला गीत। नितिन रायकवाड़ ने इस गीत को लिखा है, संदीप चौटा ने संगीत दिया है, फिल्म का नाम है मस्त।

0: भागती दौड़ती जिंदगी में अपनी सेहत से हर कोई जूझ रहा है। पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवरी डिजीज की समस्या के बारे में लोग आज भी बहुत कम सजग हैं। क्या है पीसीओडी, जानिए गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर आशा लता देवलीकर से।
1: जब पेशेंट आता है एकदम से तो उसको लैप्रोस्कोपी, आईवीएफ या आईयूआई एडवाइस हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम नेचुरल वे से करते हैं। पहले उसका डाइट थोड़ा ठीक ठाक करेंगे, एक्सरसाइज ठीक ठाक करेंगे और उसको प्रेगनेंसी के लिए, कंसीव के लिए वो जो मेडिसिन है जिसे पुराने जमाने में हम क्लोमिफेन देते थे, अभी लैट्रोस देते हैं, लेट्रोजॉल और मल्टी विटामिन, विटामिन D3, ओमेगा 3 और क्या कम है दिख जाता है पेशेंट में, कुछ डिफेंसियस सीएनसी है, बी12 हो, ये सब देकर।
0: सुनिए 6 जुलाई सेहतनामा शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनिए,
3: कहिए,
0: सुनिए एक खुशखबरी,
3: कहिए ना,
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखिया फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
4: आपने सुना चित्ररोग कार्यक्रम, ये विविध भारती का जयपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजने वाले हैं, थोड़ी ही देर में आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर से रिले करेंगे।
5: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-2025 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। राज्य पुलिस के विशेष यातायात अभियान के तहत पहले चार दिनों में 78,000 से अधिक वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। और प्रदेश में सक्रिय मानसून के कारण विभिन्न स्थानों पर बारिश का दौर जारी। उदयपुर, कोटा, जोधपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। इस वार्ता में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की जाएगी। दोनों नेता आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों के आदान प्रदान का साक्षी भी बनेंगे। श्री मोदी इंडोनेशिया के संसद परिसर में कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे दोनों देशों के बीच संसदीय सहयोग के महत्व का उल्लेख करेंगे। वे एक सामुदायिक कार्यक्रम में भी भाग लेंगे, जहां वे प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्यों से बातचीत करेंगे। 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-2025 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजेता विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और छात्रों को पुरस्कार वितरित करेंगे। विद्यार्थियों में संसदीय प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के लिए इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। ये योजना छात्रों को संसद की कार्यप्रणाली और प्रक्रियाओं, चर्चा और बहस की तकनीकों से भी परिचित कराती है और उनमें आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और प्रभावी भाषण कला तथा कौशल विकसित करती है। 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता में देश भर के 51 विश्वविद्यालयों और कॉलेजों ने भाग लिया। देश के जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जाएगी। जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से हो रही इस दो दिन की कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी शामिल होंगे। जनजातीय कार्य मंत्री जुएल ओराम कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का शुभारंभ किया जाएगा। ये मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं, पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों तथा जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में बदलने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। करौली जिले में पांचना बांध से समझौते के अनुसार सिंचाई के लिए नहरों में पानी का प्रवाह कल फिर से शुरू कर दिया गया। इस बीच देर शाम आई तकनीकी खामी के कारण कुछ देर प्रवाह बाधित रहा। हालांकि जल संसाधन विभाग, एसडीआरएफ और विशेषज्ञों की टीमों ने पूरी रात तकनीकी खराबी को दूर कर प्रवाह सुचारू किया। मुख्यमंत्री कार्यालय की ओर से आज सुबह जारी बयान के अनुसार तकनीकी समस्या वाले गेट को आज तड़के खोल दिया गया, जिसके बाद नहरों में जल प्रवाह सामान्य हो गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल नई दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। इस दौरान राजस्थान में निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग और एक्सप्रेसवे परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। दोनों नेताओं के बीच राज्य में सड़क अवसंरचना के विस्तार और भविष्य की राजमार्ग परियोजनाओं से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई। उधर मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने कल नई दिल्ली में केंद्र सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात कर राजस्थान के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने प्रधानमंत्री के सलाहकार तरुण कपूर को राज्य में औद्योगिक निवेश, रोजगार सृजन और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने केंद्रीय व्यय सचिव, राजस्व सचिव और रक्षा सचिव से मुलाकात कर केंद्र प्रायोजित योजनाओं, जीएसटी सुधारों और मेक इन इंडिया से जुड़े विभिन्न विषयों पर भी चर्चा की। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। राज्य पुलिस के विशेष यातायात अभियान के तहत पहले चार दिनों में 78,000 से अधिक वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस यातायात डॉ. बीएल मीणा ने बताया कि 2 से 5 जुलाई तक बिना हेलमेट वाहन चलाने, तेज रफ्तार, अवैध पार्किंग और राष्ट्रीय राजमार्गों पर लेन अनुशासन का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों पर यह कार्रवाई की गई। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए ये विशेष अभियान 16 जुलाई तक पूरे प्रदेश में जारी रहेगा। आगामी पर्यटन सीजन को देखते हुए आमेर में यातायात और पर्यटक सुविधाओं को बेहतर बनाने की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। उप मुख्यमंत्री दीया कुमारी ने कल जयपुर में पर्यटन, पुरातत्व, नगर निगम, यातायात पुलिस और अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में आमेर क्षेत्र में यातायात प्रबंधन, पार्किंग व्यवस्था, पर्यटकों के सुगम आवागमन और आवश्यक नागरिक सुविधाओं को मजबूत करने पर चर्चा की गई। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पर्यटन सीजन शुरू होने से पहले सभी आवश्यक व्यवस्थाएं निर्धारित समय सीमा में पूरी कर ली जाएं। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ काम करें ताकि आमेर आने वाले पर्यटकों को अच्छा अनुभव मिले। नीम का थाना में लगभग 34 करोड़ रुपए की लागत से बनी 100 बिस्तरों वाले अत्याधुनिक राजकीय मातृ और शिशु अस्पताल का राजस्थान सैनिक कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष प्रेम सिंह बाजौर ने लोकार्पण किया। ये अस्पताल प्रधानमंत्री केयर्स फंड से तैयार किया गया है। अस्पताल प्रभारी डॉक्टर गोविंद छापोला ने बताया कि इसमें आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, नवजात शिशु गहन देखभाल इकाई, बच्चों के उपचार के लिए अत्याधुनिक उपकरण और वातानुकूलित सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इससे स्थानीय लोगों को सहूलियत होगी।
1: ये जो महिला अस्पताल बना है नीमका थाना में, ये बहुत ही सुविधाजनक और अच्छा बना है। कम से कम 100 किलोमीटर दूर तक के जो आएंगे उनको बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। अब जयपुर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
2: इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अच्छा स्पेस है, तो इस क्षेत्र के लिए ये संस्था बहुत ही बड़ा वरदान साबित होगी।
0: प्रदेश में सक्रिय मॉनसून के कारण विभिन्न स्थानों पर बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान सबसे अधिक 2 सेंटीमीटर बारिश जोधपुर शहर में दर्ज की गई। दौसा, पाली, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू, चूरू और सवाईमाधोपुर में कई स्थानों पर हल्की तो कई जगह मध्यम बरसात हुई। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में पोखरण में हुई बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। बाड़मेर जिले में कल दोपहर बाद अंधड़ के साथ शुरू हुआ बरसात का दौर देर शाम तक जारी रहा। इस दौरान नोखड़ा इलाके में मूसलाधार बारिश हुई। सेड़वा, धनाऊ और चौहटन सहित कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई।
3: जिले में कल तीसरे पहर तेज आंधी आने से आसमान में धूल का गुब्बार छा गया। देखते ही देखते काली घटाएं घिराई और बरसात का दौर शुरू हो गया। जिला मुख्यालय के अलावा सेड़वा, धनाऊ और चौहटन समेत कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई। नोखड़ा इलाके के गाँवों में जमकर बादल बरसे। मानसून की पहली बरसात से किसानों में खुशी की लहर है। इस बीच किसान खरीफ की फसलों की बुवाई में लग गए हैं। आज घने बादल छाए हुए हैं और मौसम खुशगवार बना हुआ है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: मौसम विभाग के अनुसार 2-3 दिनों तक उदयपुर और कोटा संभाग के साथ ही पूर्वी राजस्थान के आसपास के क्षेत्रों में कहीं कहीं अति भारी बरसात की संभावना है। वहीं जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ भागों में भी मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम वर्षा तथा आज और कल कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। 10 जुलाई से भारी वर्षा की गतिविधियों में कमी आने के आसार हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। 17वीं राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता 2024-2025 का पुरस्कार वितरण समारोह आज नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। राज्य पुलिस के विशेष यातायात अभियान के तहत पहले 4 दिनों में 78,000 से अधिक वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई और प्रदेश में सक्रिय मानसून के कारण विभिन्न स्थानों पर बारिश का दौर जारी। उदयपुर, कोटा, जोधपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
4: हम आकाशवाणी की मनोरंजन सेवा विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 9:10 हुए हैं। प्रस्तुत है FM रेडियो पिंक सिटी कार्यक्रम।

0: नमस्कार, आदाब, खमागड़ियन, गुड गुड मॉर्निंग जयपुर। रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम पर मैं हूँ प्रियदर्शनी। रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम, कुछ तो खास है, कुछ तो बात है, नई आवाज और फिर से वही अल्फाज लेकर हाजिर हूँ मैं। आज है तारीख, जी हाँ, कौन सी तारीख है जल्दी से बता दीजिए मुझे। तो आज है तारीख 7 जुलाई 2026 और दिन वही जो सबके मन को भाए, यानी कि थ्रिल्ड वाला ट्यूसडे।
1: ट्यूसडे को मिलते हैं टास्क नए,
2: ओए खत्म ही नहीं होते,
1: काम और आराम दोनों में दंगल होता है, लेकिन रेडियो पिंक सिटी पर इस दिन सब मंगल ही मंगल होता है।
3: मंगल मंगल मंगल मंगल मंगल मंगल,
1: हफ्ते के दूसरे दिन नॉन स्टॉप दाख धिना दिन। ट्यून करिए रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, कुछ तो खास है। हाँ, कुछ तो बात है,
0: बहुत सारी बातें और बहुत कुछ खास होने वाला है जनाब। इन्फॉर्मेशन के साथ मोटिवेशन और एंटरटेनमेंट का लगेगा फुल ऑन तड़का पूरे 12 बजे तक, तो स्टे कनेक्टेड। जी हाँ, 11 से 12 होगा कुछ खास, जिसमें हम सैर कराएंगे आपको दुनिया की, राइट, और साथ ही साथ 10 से 11 आपके गुनगुनाते लम्हे होगा। और अभी है लवली मॉर्निंग चिट चैट।
4: Lovely morning chit chat only on 100.3 FM Radio Pink City। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
0: तो थोड़ी देर में मिलवाऊंगी आपको हमारे आज खास मेहमान से मोटिवेशनल बूस्ट, सो स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड इनटू रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

0: आज इसी पागलपन को लेके करेंगे हम बहुत सारी बातें, और मैं अब आपको मिलवाने जा रही हूँ हमारे खास मेहमान से। स्टे ट्यून्ड।
1: मातृत्व का एहसास बनाए आपकी जिंदगी को खास, नन्हे कदमों से माँ की गोद तक, हर लम्हा हम रखते हैं आपका ख्याल। बेबी लॉन हॉस्पिटल, हैप्पीनेस, केयर, अफेक्शन एंड डेडिकेशन, माँ और शिशु की देखभाल में समर्पित आपका विश्वसनीय बेबी लॉन हॉस्पिटल, राजा पार्क, जयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9352583833।
0: वो कहते हैं कि जीवन में सफलता केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं, बल्कि उस सफर का नाम है जिसमें संघर्ष, सीख, अनुशासन और निरंतर प्रयास शामिल होते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे ही व्यक्तित्व मौजूद हैं जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में वर्षों का अनुभव अर्जित किया है और हजारों विद्यार्थियों के भविष्य को दिशा दी है। आप सुन रहे हैं रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM और साथ ही साथ हेलो जयपुर 101.2 FM। आज मोटिवेशनल बूस्ट में हमारे साथ में हैं ऐसे शिक्षाविद जिन्हें शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 40 सालों का अच्छा खासा अनुभव है और कई नवाचार करते हुए देश के कई प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों में आप पदासीन रहे। प्रोफेसर डॉक्टर आरएल रैना, वाइस चांसलर, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद।
0: कैसे हैं सर आप?
2: बिल्कुल ठीक।
0: वैसे आपकी स्माइल देख के वाकई में एक सकारात्मकता आ गई हमारे स्टूडियो में।
2: ये तो ऐसा है ना, हम लोग कहते हैं ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर। आप exactly. मुस्कुरा रही है तो ऑब्वियसली हमारे में भी मुस्कुराहट आएगी।
0: लेकिन ये बात भी सही है सर कि कभी कभी सामने वाला जो है वो आपको आईना दिखा देता है ना, तो आपको देखकर मुझे लगा कि हाँ, अगर सकारात्मकता या यूं कहा जाए कि किसी व्यक्तित्व से आपको इम्प्रेस होना है तो ये आपकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए कि आप, जैसे आप स्टूडियो में घुसे तो मैंने देखा क्या स्माइल थी आपकी।
2: ये आपका बड़प्पन है, थैंक यू सो मच।
0: अरे सर, तो कैसे बचपन की शुरुआत रही? आज आप प्रतिष्ठित संस्थान में कुल गुरु के रूप में, और इससे पहले भी कई प्रतिष्ठित संस्थानों में रहे, देश के अलग अलग संस्थानों में आपने अपना पदासीन रहे, कार्यभार संभाला और कई नवाचार किए, तो शुरू कहाँ से हुआ है सफर? क्योंकि बचपन में हर जिस का सपना कुछ खास होता है कि ठीक है मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, या जब हम सामने देखते हैं कि डिफेंस में जाना है, आप शिक्षा के क्षेत्र में आए तो कहाँ से शुरुआत हुई?
2: देखो, इसके रूट्स मैं जाना चाहूँगा मैं, और आपको भी ले जाऊँगा और सारे
0: हमारे सारे लिसनर्स आपके साथ चलेंगे सर,
2: जो भी हैं सुने। मेरा जन्म कश्मीर के, उस समय वो तहसील था पुलवामा, उसी का एक गाँव त्रिच्छल जिसका नाम है, जो पड़ा है महादेव के त्रिशूल के ऊपर, त्रिच्छल उसका नाम है, वहाँ मेरा जन्म हुआ। पैदाइश हुई, बड़े हो गए, पढ़ाई लिखाई की, उस वक्त तक तो कोई क्लैरिटी नहीं थी कि क्या करना है, मगर ये मैं ज़रूर बताऊँगा, एक एवरेज फैमिली में मैं पैदा हुआ था। गांव के हिसाब से तो मैं बहुत बड़े घर में पैदा हुआ था, लेकिन अगर आप ओवरऑल सोसाइटी को देखे तो एक एवरेज फैमिली में पैदा हुआ था। पैदा हुआ था तो काफ़ी सारी स्ट्रगल्स थी पढ़ने के कॉन्टेक्स्ट में, पढ़ पाऊँगा, क्या पढ़ पाऊँगा, कैसे पढ़ पाऊँगा, ये स्ट्रगल्स थी। खैर, जैसे तैसे पढ़ाई शुरू की, प्राइमरी स्कूल वहीं उसी गांव का था त्रिचल। आप जान के मुस्कुराओगे कि जिस स्कूल में मैंने एडमिशन लिया उसमें 5 कक्षाओं तक का दाखिला होता था और एक कमरा, यानी इस कमरे से दुगना होगा या तिगना ज़्यादा से ज़्यादा होगा, एक हॉल था, उसमें हम 5

0: क्लास के बच्चे पढ़ते थे, एक टीचर पढ़ाता था। वाकई में जानने लायक ये है कि कैसे वो एक टीचर 5 क्लासों को पढ़ाता था, किस तरह से वो करता था। वो आज नहीं होता है उस तरह का एंगेजमेंट, इन्वॉल्वमेंट, एक्साइटमेंट बच्चों की कैसे होती थी। उसी से मैं प्रेरित हुआ, यार जब ये ऐसे हो सकता है तो कुछ भी हो सकता है। तो मैंने वहाँ प्राइमरी एजुकेशन पाई, फिर मैं हायर एजुकेशन के लिए, नॉट हायर बट सेकेंडरी लेवल एजुकेशन के लिए, गांव के पास में एक गांव था टहब, तो वहाँ मैंने 6ठी 7वीं 8वीं की। उसके बाद एक सेकेंडरी स्कूल में गया, वहाँ उस समय कहते थे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर, किया गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पुलवामा। फिर SP कॉलेज गया, वहाँ से मैंने BSc किया। उसके बाद करना क्या है क्लैरिटी नहीं थी, जो आपका मूल प्रश्न है। तो मैं अपने गांव में ही गया, एक अच्छा विद्यार्थी था, MSc फिजिक्स कर रहा था, तो उससे मैंने पूछा भाई मुझे क्या करना चाहिए, लोग सब बॉटनी पढ़ रहे हैं, जूलॉजी पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मुझे गाइड करो क्या करना चाहिए। कहता जैसे मैं फिजिक्स में MSc कर रहा हूँ, PhD भी करूँगा, तो अल्टीमेटली एक टीचर या एकेडमिक ही बनूंगा। तो टीचर और एकेडमिक जब उसने कहा तो मेरे मन में आया यार एकेडमिक बनना है। तो तुरंत उन्होंने मुझे गाइड किया कि एक फील्ड ऐसा निकला है उसमें आप प्रयास करो, अगर उसमें एडमिशन होता है BSc के बाद वो जाओ। तो वो फील्ड मुझे ऐसा लगा जैसे कहते हैं ना चुभा मुझे वो फील्ड। तो मैंने लाइब्रेरी साइंस में एडमिशन लिया कश्मीर यूनिवर्सिटी में। संजोग की बात कहिए या हार्डवर्क की बात कहिए या डिसिप्लिन की बात कहिए, जो आपने ओपनिंग रिमार्क्स में ही कहा, वो सब मैंने उसको समझा, कार्यान्वित किया और मैंने वो डिग्री वहाँ कश्मीर यूनिवर्सिटी से पाई। मेहनत किया था तो टॉपर आया यूनिवर्सिटी का। तो मैंने कहा नहीं यार मुझे कुछ है इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट, मुझे कुछ पैशन है इस सब्जेक्ट के प्रति, तो वो किया। फिर मैंने मास्टर्स के लिए चंडीगढ़ गया, तो वहाँ मैंने पढ़ा, अच्छा रैंक रहा, पोजीशन रही सारी क्लासेस में। फिर मैं आया तो जॉब में आया, जॉब क्या था, बहुत स्मॉल लिटिल लोअर कैटेगरी का जॉब था, आप उसको कहते हैं लाइब्रेरी असिस्टेंट। वहाँ से मैंने शुरुआत की और एजुकेशन जो सपना था, जो आपने कहा कैसे आए आप, तो मैंने वहाँ जो शुरुआती दौर देखा, मैंने कहा यार एक ये प्रोफेशन ऐसा है जो हर प्रोफेशन की कुछ न कुछ सेवा कर सकता है। भाई मैं बॉटनी पढ़ता, जूलॉजी पढ़ता तो उस सब्जेक्ट का विद्यार्थी होता है, विशेषज्ञ होता, लेकिन ये जो साइंस है जिसने मुझे सारी यूनिवर्स ऑफ नॉलेज का ज्ञान दिया है, तो मैं इसमें आगे बढ़ूँ, किया PhD, किया वो किया। तो अल्टीमेटली मैं उन छोटी छोटी पोजीशन से ऊपर ऊपर आके IIM लखनऊ में आ गया। IIM लखनऊ आप जानते हैं,
1: क्या बात है?
0: वहां भी मैं लाइब्रेरी में ही जुड़ा था, लेकिन मैंने देखा यार अगर मेरे कलीग्स इतने प्रतिष्ठित संस्था में पहुंचे हैं, मैं देखूं कैसे पहुंचे हैं, क्योंकि मेरा मन लगा कि मुझे यही चीज करना है, एजुकेशन में ही जाना है। ये नहीं कि मैं अपने उस प्रोफेशन से प्यार नहीं करता था, बहुत लगाव था, बहुत प्यार था, और मैंने यही समझा था कि सर्विस चाहे कुछ भी करना है तो सर्विस 100% देनी है, उसी में सक्सेस है। और मैंने उस पोजीशन को भी टॉप पे ले लिया, लाइब्रेरी असिस्टेंट से असिस्टेंट लाइब्रेरियन, डिप्टी लाइब्रेरियन, लाइब्रेरियन बनना भी अपने आप में एक अचीवमेंट है।
1: Exactly,
0: फिर मैं एजुकेशन के उसमें सेक्टर में आ गया, प्रोफेसर बन गया। और पढ़ाने क्या विषय लगा आप, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन ये नहीं इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन नहीं, कैसे बातचीत करते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या लिखते हैं, क्या बोलते हैं, क्या सुनते हैं, कैसे करना चाहिए, ये मैंने जब पूरा अध्ययन इसका किया तो मैं कम्युनिकेशन का टीचर, कम्युनिकेशन का प्रोफेसर उसी IIM इंडियन स्टाफ मैनेजमेंट में, जहाँ मैंने डिप्टी लाइब्रेरियन से शुरू किया था, वहाँ आ गया। तो जब मुझे ऐसे ऐसे लगा नहीं यार आपके अंदर है कुछ तो आप कर सकते हो, मैं वहाँ प्रियदर्शनी जी मैं वहाँ 30 वर्ष रहा और मेरी ग्रोथ उस संस्था की ग्रोथ से पैरेलल गई। जब वो इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश हुआ था मैं भी इसी फील्ड में एस्टैब्लिश हुआ था, फिर उसके बाद जैसे ग्रोथ इंस्टीट्यूट की हुई आज वो वर्ल्ड में जाना जाता है, इंडिया में तो जाना ही जाता
1: exactly,
0: है। मैं अपनी ग्रोथ उसके साथ कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन मेरी भी अच्छी खासी ग्रोथ हो गई और मैंने जो अनुभव लिया एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बिल्ड करने का, डेवलप करने का, एस्टैब्लिश करने का, वो मैंने ज़रे ज़रे से समझ लिया, मेरे रग रग में आ गया। तो मैंने फिर कई अपॉर्चुनिटीज़ मिली, मैं विदेश गया और एक जो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट प्रेस्टिजियस फेलोशिप होती है फुलब्राइट फेलोशिप, तो वो मैंने पाई। और उसके बाद मेरे को पूरा विजन क्लियर हुआ, मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या और उसके लिए क्या अनिवार्य है, वो मैं करता गया। और परमात्मा की कृपा से मैंने 4-6 IIMs को मेंटर किया, मैंने 3-4 universities को मेंटर किया, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को, और एक अच्छी प्रतिष्ठित संस्था थी उसका निर्देशन करने का अब सौभाग्य मिला। वो इंस्टीट्यूट आपको जानकारी होगी, लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। जब मैंने ज्वाइन किया तो क्या स्थिति थी, और जब मैं 4 साल बाद वहाँ से छोड़ा तो देश का एक नामी ग्रामी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट था। उससे भी मैं और इंस्पायर हो गया कि आपके अंदर है वो चीज़ें तो आप कुछ भी कर सकते हो। फिर मैं वापस IIM लखनऊ गया और कई सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिली, कई सारे देश घूमने का, क्योंकि काम किया था तो प्रेफरेंस होती थी, जाइए भाई इस ग्रुप को ले लीजिए, चाहे वो इंडस्ट्री के टाइकून्स थे, इंडस्ट्री लीडर्स थे या एकेडमिक लीडर्स थे, उनको लेके मैं तकरीबन 10-20 कंट्रीज गया। तो ये जो सारा अनुभव मुझे प्राप्त हुआ कि कैसे इंस्टीट्यूशन को ब्रिक बाय ब्रिक एस्टैब्लिश करते हैं, कैसे उस इंस्टीट्यूशन की ग्रोथ में आप ग्रोथ देख सकते हो, कैसे आपका विजन कैसा होना चाहिए, वो सारी क्लैरिटी मुझे आई सीखते सीखते। तो फिर जब मैं ये इंस्टीट्यूट जिसकी बात कर रहा था, लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट, तो मैंने उसको नया रंग दिया, नया रूप दे दिया। फिर एक यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहा, गया तो था मैं 1 साल के लिए, लेकिन उनको भी अच्छा लगा, मुझे भी बहुत रुचि लगी, तो मैं वो 2 terms कंसेक्यूटिवली सक्सेसफुली कंप्लीट किया। फिर वहाँ से मैं वापस जा रहा था तो जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी आई, सर हमारे को कुछ समय दे दीजिए, मुझे भी इंटरेस्ट था इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग, तो इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग कर रहा हूँ, करने का अनुभव है, करने का तजुर्बा है, ये मैं करता आया।
1: वो कहते हैं ना, उड़ने दो इन शोख परिंदों को, तो वाकई में आपके मन में जो परिंदा उड़ रहा है ना, जो मन के भीतर बैठा हुआ है, उसको बस बाहर आना है और उसको उड़ान दे देनी है, तभी वो एक सफलता की सीढ़ी जो है वो आप चढ़ जाएंगे। तो ऐसा ही हुआ हमारे शिक्षाविद कुलगुरु डॉक्टर RL रैना साहब के साथ में, उन्होंने अपने भीतर के उस परिंदे को समझा, जाना और बाहर निकाल के उड़ान भरने दी। आपने अपनी बातचीत में कहा कि कम्युनिकेशन के आप प्रोफेसर बने, आप साइंस स्ट्रीम से थे लेकिन फिर आप कम्युनिकेशन में आए, तो वहाँ उसकी प्रेरणा कहाँ से मिली या कैसे आपने खुद को उस एक अलग, उसके लिए क्योंकि एक अलग ही आयाम है, एक अलग ही वो है जिसको कहा जा सकता है, ये उस समय की बात है जब हमारे पास में पारंपरिक विषय हुआ करते थे कि विज्ञान ले लिया, हिंदी ले लिया, इंग्लिश ले लिया, मैथ्स ले लिया, साइंस एंड मैथ्स, ये उसमें आपने कम्युनिकेशन स्किल को खुद की डेवलप करते हुए यकीनन फिर आप उसके प्रोफेसर बने, तो ये प्रेरणा कहाँ से कि आपको थोड़ा सा बदलाव लाना है?
0: बहुत सुंदर प्रश्न पूछा और मुझे अवसर दिया इसका जवाब देने के लिए। पहली बार मुझे ऐसा क्वेश्चन किसी ने पूछा है, क्यों भाई लोग तो डॉक्टर बनते जा रहे थे, लोग तो फिजिक्स पढ़ते हैं, लोग तो केमिस्ट्री पढ़ते, आप कम्युनिकेशन? देखो, जब मैंने कहा मैं IIM लखनऊ में आया तो मैं एक डिप्टी लाइब्रेरियन के पद पर आया था, दूर दूर का इसका रिश्ता कुछ था नहीं, लेकिन मैं वहाँ की एकेडमिक बॉडी जो फैकल्टी काउंसिल है उसमें बैठता था, मेरा रोल था, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो उधर मुझे 1-2 मीटिंग्स में ऐसा लगा, यार हमारे बच्चे जब विदेश जाते हैं या कंट्री में जाते हैं, उनके तो नट्स एंड बोल्ट्स डिसिप्लिन के, चाहे वो मार्केटिंग है, फाइनेंस है, बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन जब हम उनसे पूछते हैं कि आपकी ग्रोथ क्यों नहीं उतनी है जितनी और कलीग्स की होती थी, तो चाहे वो देश में होता था या विदेश में, अक्सर तो विदेशों से ही ऐसी प्रॉब्लम आती थी, वो कहते थे कि हमारी सर सब चीज़ ठीक है लेकिन कम्युनिकेशन हमारा, हम फेल हो रहे हैं, हम कम्युनिकेशन में फेल हो रहे हैं। तो ये एक इंडिकेटर था, नहीं भाई हमें इस प्रॉब्लम को तो एड्रेस करना है। और जैसे आपने कहा, कम्युनिकेशन का एक सेशन किसी कोर्स में होता था, HR के कोर्स में 2 सेशन होते थे, लेकिन फिर हमने ठान लिया उस इंस्टीट्यूट में, नहीं भाई हमें कम से कम एक कोर्स तो देना ही चाहिए जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ 4 चीजें उनको सिखाएं कि पढ़ना क्या है, लिखना क्या है, सुनना क्या है और बोलना क्या है, कब कैसे क्यों, ये सब चीजें उनको हम समझा दें तो फर्क आएगा। तो जब हमने ऐसे शुरुआत की कि नहीं भाई एक दो सेशन और कोर्सेज में पढ़ाने से काम नहीं होगा, आपको जरूर इस कोर्स को एक अच्छा ट्रीटमेंट देना चाहिए जो और कोर्सेज को दिया जाता है, मार्केटिंग को, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को, ह्यूमन रिसोर्स को, फाइनेंस को, इकोनॉमिक्स को, इस तरह का ट्रीटमेंट उतना उस लेवल का नहीं मगर देना है। तो फिर हमने एक आधे क्रेडिट का कोर्स आईआईएम लखनऊ में शुरू किया, हो रहा था, फिर हम भी उसमें घुस गए। और यकीन करिए जब मैं पहली बार क्लास में घुसा कम्युनिकेशन पढ़ाने के लिए, वो ऐसा अनुभव है आप हंसोगे, सब व्यूअर्स भी, सब सुनने वाले भी हंसेंगे। जब मैं गया तो पहला क्लास था मेरा, तो मैं गया, मेरी आदत है मैं पूछता हूँ बच्चों से, भाई क्या आप एक्सपेक्ट करते हो इस कोर्स से सीखोगे, बार बार पूछा, बार बार पूछा, कोई जवाब नहीं दे रहा। अंदर से मैं कांप रहा हूँ कि क्या पूछेंगे, उसका अगर आंसर मुझे नहीं आएगा तो मैं क्या बोलूँगा। तो खैर जब सब हो गया तो मैंने कहा भाई ये मेरी कोर्स आउटलाइन है, कोर्स आउटलाइन होता है रूल्स ऑफ द गेम, मैं क्या पढ़ाऊंगा, कैसे पढ़ाऊंगा। तो वो डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले एक लास्ट में एक बेंच पे एक स्टूडेंट बैठी थी, उसने कहा सर सर एक सेकंड मेरा एक प्रश्न है। तो सब लोग उसकी तरफ देखे, भाई अभी तक तो इतना ही पूछ रहा था, अभी तक नहीं बोल रही थी, अब बोल रही। तो उसने क्वेश्चन पूछा, मेरा क्वेश्चन ये है सर, आप बताइए आप मुझे कम्युनिकेशन में क्या सिखाएंगे जो मुझे नहीं आता है
1: जी,
0: डायरेक्ट क्वेश्चन। हाँ। तो वही द्रौपदी वाली दशा मेरी हो गई मगर मैंने कहा ठीक है क्वेश्चन तो सही पूछा है, ठीक है। तो सब लोग उसकी तरफ देखे, अरे ये क्या क्वेश्चन पूछती है, इतने सर को पूछती है। कहता सर नहीं नहीं नहीं सर, मेरा पर्पस है ये क्वेश्चन पूछने का, आप तो यहाँ से कैट पेपर सेट करते हैं ना। मैंने कहा हाँ बेटा इस साल नहीं किया है क्योंकि मेरी बच्ची भी बैठ रही थी कैट में, तो इस साल नहीं, हम लोग कैट फॉर्मेशन में होते हैं।
1: जी जी जी जी।
0: कहता सर ठीक है इस साल नहीं क्योंकि आपके बच्चे बैठ रहे थे, ठीक है समझ, लेकिन सर बताइए कितना समय लगता है आपको वो कैट पेपर सेट करने के लिए। मैंने कहा भाई उसमें टाइम लगता है। क्यों सर? भाई हमें देखना है 1.5 लाख 2 लाख बच्चे बैठते हैं, उनकी लेवल देखनी होती है, कितने टफ होंगे कितने ईजी होंगे, बहुत टाइम लगता है मैम। बेटा भाई ने बोला, तो उसने कहा सर फिर भी, मैंने कहा भाई कई बार 1 महीना भी लगता है, 2 महीना भी लगता है, डिपेंड करता है किस सब्जेक्ट का क्या है। कहता सर आपको तो इतना टाइम लगता है ना। मैंने कहा ठीक बात है। हाँ उसने भी कहा ठीक बात है। तो सर वो जो कैट पेपर जब हमारे पास आता है हम तो मिनटों में उसको क्रैक करते हैं, तो आप बताइए हमें क्या चीज नहीं आती है जो आप हमें सिखाएंगे। मैंने कहा ठीक है ये बात ठीक है। और वही कोर्स आउटलाइन, मैंने कहा ठीक है आपके प्रश्न मैंने समझ लिए, बिल्कुल रेलेवेंट है, आप ये कोर्स आउटलाइन देखिए। कोर्स आउटलाइन देखा तो वो उठी बच्ची, अभी लीवर्स में है, बहुत सीनियर एग्जीक्यूटिव है, तो वो बच्ची उठी और रोना था उसके आंखों में। तो उसने क्या बताया मुझे, सर मैं समझी थी आप मुझे ग्रामर सिखाएंगे, पंक्चुएशन मार्क्स सिखाएंगे, सेंटेंस स्ट्रक्चर सिखाएंगे, लेकिन ये जो कोर्स आपने डिजाइन डेवलप किया है ये तो मेरी लाइफ स्किल आप सिखा रहे हैं, मुझे जीवन जीने का तरीका बता रहे हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं, ना इससे ना ग्रामर है ना कंपोजिशन है, आप तो सिर्फ ये सिखा रहे हैं कि अगर पढ़ोगे क्या पढ़ोगे, कैसे पढ़ोगे, कब पढ़ोगे, अगर लिखोगे क्या लिखोगे, कब लिखोगे, कैसे लिखोगे, सुनना है कैसे सुनना है, क्यों सुनना है, बोलना है क्या बोलना है, कहाँ बोलना है, कैसे बोलना है, ये तो जीवन जीने की कला है।
1: कला है जी।
0: तो हम सर इसको करेंगे और इसी तरह से करेंगे। और वो कोर्स आउटलाइन रही थी 15 सेशंस की थी। जब 15 सेशन खत्म हुआ तो वो कहने लगी ये सर ये कोर्स कैसे अभी खत्म हुआ तो ये चीज होती है। तो कम्युनिकेशन ने मुझे इंटरेस्ट इतना दे दिया कि इसमें बहुत कुछ है जो हम विद्यार्थियों के लिए कर सकते हैं, उनका भविष्य संवारने के कर सकते हैं। और फिर मैंने बहुत डीप स्टडीज की इसमें, अभी तो मेरे पास इसके ऊपर 10-20 बुक्स लिखी है,
1: 250 पेपर आपके पब्लिश हुए हैं जो आपकी आई हैं। तो लिसनर्स आप सुन रहे हैं रेडियो पिंक 100.3 FM एंड हेलो जयपुर 101.2 FM। मेरे साथ में आज हैं प्रोफेसर डॉक्टर आर एल रैना साहब, शिक्षाविद हैं आप, कुलगुरु हैं, और मोटिवेशनल बूस्ट में आज चल रहे हैं बहुत ही शानदार सी, अच्छी सी और इंटरेस्टिंग बातें। मोटिवेशनल बातें या यूं कहा जाए। थोड़ी देर में वापस हम हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद में।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: मातृत्व का एहसास बनाए आपकी जिंदगी को खास। नन्ही कदमों से माँ की गोद तक हर लम्हा हम रखते हैं आपका ख्याल। बेबी लॉन हॉस्पिटल, हैप्पीनेस, केयर, अफेक्शन एंड डेडिकेशन, माँ और शिशु की देखभाल में समर्पित आपका विश्वसनीय
1: बेबी लॉन हॉस्पिटल, राजा पार्क, जयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9352583833।
2: रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम। मैं हूं प्रियदर्शनी और मेरे साथ में है प्रोफेसर डॉक्टर आरएल रैना साहब, शिक्षाविद हैं, अब कुल गुरु हैं।
3: आप सुन रहे हैं मोटिवेशनल बूस्ट ओनली ऑन रेडियो पिंक सिटी 100.3। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
2: तो बहुत सारी बातें चल रही हैं हमारे कुलगुरु साहब से, प्रोफेसर डॉक्टर आरएल रैना साहब। सर, एनईपी की बात करें, अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इसमें बहुत सारे बदलाव आए हैं जो कि शिक्षा के हित के लिए हैं। क्या आप एक विशेषता मानते हैं जो आपको लगता है कि शिक्षा में नया बदलाव एनईपी से आने वाला है या आ रहा है या आएगा भविष्य में, और जिससे हमारे जो विद्यार्थी हैं वो लाभान्वित होंगे, उनका जो भविष्य है उसमें बदलाव आएगा?
4: देखो, एजुकेशन पॉलिसीज इस देश में कई वर्षों से आ रही है
2: जी,
4: ये कोई नई बात नहीं है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की आप बात कर रहे हैं
2: जी।
4: पॉलिसीज बनती है, आती है, हर बार आती है, ठीक है, लेकिन ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है, ये डिफरेंट है। ये डिफरेंट क्यों है और मुझे क्यों अच्छी लगती है? क्योंकि इसका जो मूल मंत्र है वो केवल दो हैं, कि ये स्टूडेंट सेंट्रिसिटी पे बल देता है और इसका ड्राइवर जो है फैकल्टी पे बल देता है। ये पॉलिसी स्टूडेंट सेंट्रिक है और फैकल्टी ड्रिवन है। इसका मतलब क्या है कि जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ है, वो अगर ऐसा पाठ्यक्रम बनाएं जो स्टूडेंट सेंट्रिक हो
2: जी,
4: उनको जो भी पैशन है वो परस्यू करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो वही एजुकेशन प्रणाली ठीक रहती है। और ये जो करिकुलम जिसकी मैंने बात की, ये कौन बनाएगा, कौन सजाएगा, किसको इसकी समझ है, सूझबूझ है, ये नहीं अकेले का नहीं, बट उसके साथ और मिलके अगर बनाते हैं तो वो पॉलिसी इम्प्लीमेंट होने में बहुत अच्छा रोल अदा करती है। मूल मंत्र इसके ये हैं, नंबर वन। नंबर टू, इस पॉलिसी में और पॉलिसियों की अपेक्षा इस पे इम्प्लीमेंटेशन पे बल है। भाई, पॉलिसी हर कोई अच्छी होती है, ये मैं नहीं कहूँगा कि पुरानी पॉलिसीज ठीक नहीं थी, वो पॉलिसीज ठीक थी, लेकिन वो ज़्यादातर शेल्फ पे ही रही, वो प्रैक्टिकली फील्ड में नहीं आई। इस पे शुरू के दिन से ही, 2020 कोविड पीक पे था, रिलीज हुई, उसी दिन से इस पे जोर था कि हाउ टू टेक इट फॉरवर्ड, कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें। आपको जान के खुशी होगी कि मैंने उस कोविड पीरियड में भी कोविड का फायदा लेते हुए कई सारे सेमिनार्स, वर्कशॉप्स, कॉन्फ्रेंसेस की वीसीज के लिए, हेड्स ऑफ इंस्टीट्यूशंस के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, रजिस्ट्रार्स के लिए, भाई क्वेश्चन पॉलिसी का नहीं, पॉलिसी तो है और ये इतनी पॉलिसी है, ऑल इंक्लूसिव है, क्योंकि मेरा पर्सनल इंटरेक्शन हुआ था जो इस पॉलिसी का आर्किटेक्ट था, जिसको आप जानती हैं, डॉक्टर कस्तूरी रंगन था, उससे मेरा इंटरेक्शन हुआ था। वो आए थे जयपुर, हमने बुलाया था, न्योता दिया था, आए थे जब ये फॉर्मेशन स्टेज पे थी, तो मेरे कई प्रश्न थे। उन्होंने कहा, भाई ये पॉलिसी तकरीबन 10,000 लोगों की राय के बेस पे बनी है, ये एयर कंडीशन ऑफिसेज में नहीं बनी है। कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटी में गए, स्कूल में गए, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में गए, उनसे पूछा भाई कैसी पॉलिसी होनी चाहिए, क्या फीचर्स होने चाहिए। तो ये पॉलिसी ऑल इंक्लूसिव है, इसमें सबका योगदान है। और फिर और क्वेश्चंस पूछे मैंने, मैं बाद में बताऊंगा क्या क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया था। तो ये पॉलिसी जब उन्हीं लोगों से आई है, जो लोग इसको कार्यान्वित करेंगे तो ये पॉलिसी इम्प्लीमेंट, तब मैंने वो जो आपको बता रहा था, कोविड में मैंने कई सारे वर्कशॉप के, उसमें सिर्फ मेरा और एक ही मुद्दा होता था कि इम्प्लीमेंटेशन। सब लोग कहते सर पॉलिसी अच्छी है कैसे, मैंने कहा इम्प्लीमेंटेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी जिस दिन एक टीचर समझेगा, जिस दिन उसका रीडर समझेगा, डीन समझेगा, डायरेक्टर समझेगा, वाइस चांसलर समझेगा, एज टू व्हाट इज इन इट फॉर मी, मेरे लिए क्या है जो मैं अगर करूं तो पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाएगी। ये कहोगे कि गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करेगा, करेगा, उनको करना है, वो स्कीम्स दे देंगे, प्लान्स दे देंगे, लेकिन करना तो हम ही को है। तो विषय जब एड्रेस हुआ हर जगह पे, हर एजुकेशन लीडर पे, तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन आ गई। अभी आप देखोगे गोल था कि हम एजुकेशन तो देते हैं लेकिन सारे विद्यार्थी 80% लोग अनएम्प्लॉयड रहते हैं, यही था ना। तो इस पॉलिसी का मतलब यही ऑब्जेक्टिव है कि ये एजुकेशन जो है ये एजुकेशन आउटकम बेस्ड है।
2: एग्जैक्टली, जो अभी तक डिग्री पर हम बेस्ड थे या यूं कहा जाए कि डिग्री इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, अब उसकी जगह ले ली है या होनी चाहिए जो जगह पहले से भी
4: डिग्री स्किल्स ने, इनोवेशन ने अपनी जगह पे अपना वैल्यू है।
2: नहीं नहीं, डिग्री सिर्फ एक डिग्री हुआ करती
4: थी, करेक्ट
2: है ना। उस समय जो अभी हमने कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की, यानी इनोवेशन नहीं था, स्किल्स नहीं थी और एम्प्लॉयमेंट की बात करें
4: और सारे बिंदुओं पे ये बल देती है
2: जी
4: कि अगर हमें रोकना है ड्रॉपआउट्स, ड्रॉपआउट्स ज्यादा कहाँ होते थे, 10+ आ गए तो बिखर जाते थे क्योंकि उनको अपने मन का करने को नहीं मिलता था, उधर पेरेंट्स का प्रेशर, उधर सोसाइटी का प्रेशर, ये प्रेशर, उनको किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट था उसको करने का अपॉर्चुनिटी नहीं, अपॉर्चुनिटी थी लेकिन उसको लेने नहीं दिया जाता था या किसी भी विषय में। तो ये पॉलिसी कहती है परस्यू योर पैशन, जो भी आपके अंदर पैशन है उसको परस्यू करो, और वो अपॉर्चुनिटीज दे दी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस ने। तो ये इसकी खूबी है कि ताकि जो क्रॉप निकले, जो बच्चे निकले, वो सब्जेक्ट में कॉम्पिटेंट तो होंगे लेकिन इन स्किल सेट्स और कॉम्पिटेंसीज से भी इक्विप्ड होंगे। आपको जान के बहुत खुशी है होगी कि जिस भी संस्था में मुझे अवसर और अपॉर्चुनिटी मिली तो मैंने ऐसे सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस बनाने का प्रयास किया जिन सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस की वजह से ये स्किल्स और कॉम्पिटेंसीज इन बच्चों में आनी अनिवार्य बना दी, होनी चाहिए कम्युनिकेशन आपने का।
2: आपसे मेरा जो अगला सवाल था वो यही था कि ठीक है इम्प्लीमेंटेशन भी हो गया, लेकिन उच्च शिक्षा या हायर एजुकेशन की बात करें, विश्वविद्यालयों की बात करें जहां आज आप कुलगुरु भी हैं, ऐसे में मल्टी डिसिप्लिनरी आर्ट या यूं कहा जाए कि लर्निंग, इस पर कितना जोर दिया जा रहा है और किस तरह से इसकी क्रियान्विति हो रही है?
4: जोर दिया जा रहा है, सब लोगों ने समझ लिया है, इवन बेस्ट ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूशंस सोच रहे हैं, जैसे IIMs, देवर प्लेसेस ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, वो भी अब सोच रहे हैं नहीं यार सिर्फ मार्केटिंग पढ़ाने से काम नहीं होगा, हाँ फाइनेंस पढ़ाने से काम नहीं होगा, इनको और भी चीज़ें समझनी चाहिए, इनको हिस्ट्री भी समझना चाहिए, ये तारीख के कॉन्टेक्स्ट में नहीं कि बाबर कब आया था, अकबर कब, ना पर्सपेक्टिव डेवलप करनी चाहिए। तो उनको और एरियाज भी अब पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है
2: जी।
4: या जैसे हमारी यूनिवर्सिटी जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी एक मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी है, एक मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी है। यहाँ क्या फीचर है? यहाँ एक फीचर है कि अगर कोई स्टूडेंट किसी भी स्ट्रीम का है, उसको थोड़ा बहुत जानना है AI, मशीन लर्निंग, जो ये न्यू एज टेक्नोलॉजीज है, वो पॉसिबल है क्योंकि मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर है हमारी यूनिवर्सिटी का, मल्टी फैकल्टी यूनिवर्सिटी है। इसी तरह कोई स्टूडेंट किसी भी और सब्जेक्ट का है, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट है, एजुकेशन का स्टूडेंट है, उसको ये चीज़ सीखना है। ऐसे कई सारे सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस हैं हमारी यूनिवर्सिटी में विद्यमान, जो अपने कोर्सेज के द्वारा, सेमिनार्स के द्वारा, वर्कशॉप्स के द्वारा, कॉन्फ्रेंसेस के द्वारा ये स्किल सेट्स और कॉम्पिटेंसीज उनमें दे रहे हैं, अनिवार्य रूप से दे रहे हैं, ताकि ये बच्चा कम्युनिकेशन का ही नहीं, क्रिटिकल थिंकर हो, प्रॉब्लम सॉल्वर हो, डिसीजन मेकर हो, टीम बिल्डर हो, उसको ये न्यू एज टेक्नोलॉजीज भी आती हो, एक्सपर्ट नहीं बट उसको अवेयर तो होना चाहिए AI क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, या यही आपने कहा इनोवेशन की बात, एक हमारा सेंटर है इनोवेशन इनक्यूबेशन एंटरप्रेन्योरशिप का, वहाँ वो फैसिलिटी है किसी बच्चे को, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम का हो, इंजीनियरिंग का हो, टेक्नोलॉजी का हो, मैनेजमेंट का हो, फार्मेसी का हो, नर्सिंग का हो, एग्रीकल्चर, उधर उसको फैसिलिटी

0: है, अगर उसके मन में कोई आइडिया है उसको आगे ले जाने का, वो फैसिलिटी है। ये पहले इतना इस लेवल का नहीं था
1: exactly.
0: क्योंकि देश ही जग गया है, देश ही खुद इसके ऊपर बल दे रहा है। इनोवेशन होना चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप होना चाहिए, जॉब सीकर्स ही नहीं प्रोड्यूस करने हैं, जॉब प्रोवाइडर्स भी प्रोड्यूस करने हैं। तो उसका एक इकोसिस्टम पूरे देश में है। उस इकोसिस्टम का यूनिवर्सिटीज, जो हाई थिंकिंग यूनिवर्सिटीज है, प्रोग्रेसिव यूनिवर्सिटीज है, ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, उन्होंने उनको ग्रहण किया है। और आप आज देखोगे हर अच्छी यूनिवर्सिटी में ऐसे सेंटर्स ऑफ इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, इनक्यूबेशन है, जहाँ बच्चों को जो भी आइडिया है वो डूबेगा नहीं, वो आगे जाएगा। कई सारे आइडियाज़ होते हैं, नहीं होते हैं वर्थ, लेकिन कुछ आइडियाज़ निकलते हैं और ट्रांसफॉर्मेशन होती है। ये फैसिलिटी है, हमारी यूनिवर्सिटी इस सेंटर को बहुत अच्छे से चला रही है। काफ़ी सारे बच्चों के आइडियाज़ प्रोडक्ट शेप में या सर्विस शेप में आ भी रहे हैं, कई कई बार फंडिंग भी होती है। ये तो प्रोविजन है और हर यूनिवर्सिटी कर रही है। हमने, हमारे चांसलर महोदय ने इसमें बहुत पहल दिखाई, तो हमको कहा ये सेंटर्स, चाहे वो एंटरप्रेन्योरशिप का है या कम्युनिकेशन का है या पब्लिक स्पीकिंग का है, वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ है।
1: जी, अभी आपने एआई की बात की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बात की, नए दौर की बात करें, नई नई तकनीकें आ गई हैं, बच्चा जो रटाफिकेशन या पारंपरिक शिक्षा पद्धति है उससे आगे आ रहा है, जो अभी हम बात भी कर रहे हैं। एआई हम आजकल देखते हैं हर जगह छाया हुआ है, हर जगह। इसको, इस तकनीक को हम चुनौती के रूप में लें या एक अवसर के रूप में लें, और ये कितना लाभप्रद रहेगा हमारे स्टूडेंट्स के लिए?
0: ये एक इनोवेशन आई है,
1: क्योंकि माफ कीजिएगा मैं बीच में इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन कई जगह मैंने देखा है कि जहां पर बच्चा पहले अपना दिमाग या अपने विचार लगाता था, जहां कल्पनाशीलता के रंग भरता था, अब वो कुछ नहीं करता है। कभी कभी कुछ मैंने ऐसे स्टूडेंट्स को देखा है कि चैट जीपीटी निकाला या इस तरह की कोई भी ऐप निकाली और वहाँ से जो भी प्रोजेक्ट बनाना है, जो भी आइडिया है, उसको प्रॉम्प्ट किया और वो निकल कर आ जाता है। तो ये मैं जानना चाह रही हूँ कि क्या ये उसके लिए फ्रूटफुल रहेगा भविष्य के लिए, या कहीं ना कहीं हम अपने विचार, कल्पनाशीलता या वो इनोवेशन जो उसके अंदर पनप रहा है, पनप सकता है, वो कहीं दब रहा है?
0: नहीं, देखिए हर टेक्नोलॉजी के अपने अपने प्लसेस होते हैं, माइनसेस होते हैं
1: जी।
0: ये तो हमें समझना है। लेकिन एक कॉन्शियस माइंड, एक पर्सन जो अपना अपने आप को शेप देना चाहता है करियर प्रोग्रेशन की, चाहे वो स्टूडेंट ही क्यों ना हो या फैकल्टी क्यों ना हो या कॉमन मैन क्यों ना हो, ज़रूर उसको समझना चाहिए इसके प्रॉज एंड कॉन्स, प्लसेस और माइनसेस। हम अगर सिर्फ और सिर्फ प्रॉज ही देखेंगे, कॉन्सिक्वेंसेस नहीं देखेंगे, तो सोसाइटी, ह्यूमैनिटी सफ़र करेगी। इसीलिए एक जागरूक माइंड वही होता है जो हर टेक्नोलॉजी को या हर किसी ऐसी अपॉर्चुनिटी को उसके प्लसेस माइनसेस देखता है। बहुत फैसिलिटेट इसने किया है एआई के बगैर, मतलब मुझे नहीं लगता गुजारा है अगर देश को या युवा को आगे जाना है। लेकिन बहुत डबल एज्ड स्वर्ड है ये, अगर वो प्रॉज एंड कॉन्स नहीं समझेगा तो मुश्किल हो सकती है। इसीलिए हम लोग अपने पाठ्यक्रम में भी, जैसे हम पढ़ाते हैं, एआई के सारे पहलू बच्चे के सामने रखते हैं। टीचर अपने आप भी, जैसे उसको वो भी यूज़ करता है, अगर उसको अपना क्लास बनाना है तो वो सब टूल्स एआई के यूज़ करेगा, बेस्ट से बेस्ट, उसकी मेहनत कम होगी। लेकिन उसको भी बताते हैं कि यूज़ इट, डोंट ओवर यूज इट, डोंट अंडर यूज इट, डोंट मिस यूज इट, डोंट अब्यूज इट, यूज इट ऑल द टाइम, द फोकस इज ऑन यूजिंग इट। इफ वी, अगर हम यूज करेंगे इसको एडवेंटेजियसली तो कॉन्सिक्वेंसेस इतने नहीं है। हमें ये अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, चैलेंज है, लेकिन एआई के बगैर गुजारा नहीं है। हमें इसको एम्ब्रेस करना चाहिए और केयरफुल रहना चाहिए कि क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये जरूर है।
1: बिल्कुल, अभी बात चल रही है, सोशल मीडिया की बात चल रही है कि ओवर यूज नहीं होना चाहिए, यूज़ होना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया पे अभी हम देखें तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई हैं। युवा बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे हमें देखने को मिलता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। ऐसे में कहीं ना कहीं उनमें कंपैरिजन, उनमें एंजाइटी, उनमें स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है। ऐसे में विश्वविद्यालय, टीचर्स या जो भी इस तरह के इंस्टीट्यूशन से हैं जो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं या उनके साथ में उनका सामंजस्य रहता है, उनकी क्या भूमिका हो सकती है और विश्वविद्यालय इसमें किस तरह से भूमिका निभा रहा है?
0: देखो, इन सब चीज़ों का अगर कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटी हो, अगर इसको वो समझते हैं, जो आपने प्रॉब्लम बताई, ये प्रॉब्लम है, और जितनी भी अवेयरनेस क्रिएट करेंगे इंस्टीट्यूशन थ्रू ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज्म्स, मतलब वो कॉन्शियस अपने सिस्टम में डालेंगे, हमें इसकी अवेयरनेस बच्चों में डालनी है, वो सारा 80% हमारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। बच्चे अवेयर नहीं होते हैं, वो करते हैं, जाते हैं उसमें, घुसते हैं घुसते घुसते और फिर डूब ही जाते हैं, जैसे ड्रग्स, ये ऐसा एडिक्शन हो जाता है। हाँ, हमारा रोल ये है एजुकेशन प्रोवाइडर्स का, इसकी बार बार रिपीटेडली वर्कशॉप सेशंस के द्वारा अवेयरनेस बच्चों में लाए, विद्यार्थियों में लाए, वो खुद समझ लें नहीं, टू मच ऑफ यूज ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स इज वेरी बैड। अगर वो उस तरह से समझेंगे तो कोई इशू नहीं है, कोई समस्या नहीं।
1: करियर को लेकर बात करें, आजकल के युवाओं को लेके, अभी हमने वैसे भी स्टार्टअप को लेके बात की, एम्प्लॉयमेंट को लेके बात की, लेकिन फिर भी आज कहीं ना कहीं वो एज भी शायद ऐसी होती है कि आपकी बॉडी में भी कई चेंजेस हो रहे होते हैं और आप कहीं ना कहीं अपने करियर को लेकर भी कॉन्शियस होते हैं, थोड़ा पीयर प्रेशर भी होता है। करियर को लेकर जो भ्रमित हैं आजकल के युवा, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे, किस तरह से अपनी दिशा तय करें?
0: देखो, हमारी यूनिवर्सिटी में और भी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होगा, करियर काउंसलिंग, करियर प्लानिंग, करियर प्रोग्रेशन सेल्स यूनिट्स होते हैं। हमने ये यूनिवर्सिटी के रूप में ये एक मिशन मोड में लिया हुआ है कि बच्चा जिस दिन से सोचता है हमारे साथ जुड़ने का, जिस दिन से हमारे साथ जुड़ने का सोचता है, यानी अभी हमारे यहाँ एडमिट नहीं हुआ लेकिन उसने सोचा, उस दिन से लेके जब तक हमारे साथ वो ग्रेजुएट नहीं होता है और ग्रेजुएशन होने के बाद भी हमारा एलुमनी रहता है, हमेशा हम उसको करियर काउंसलिंग देते रहते हैं, करियर अपॉर्चुनिटीज बता रहते रहते हैं, करियर प्रॉस्पेक्ट्स बता रहते रहते हैं। हाँ, आते हैं 10+2 के बच्चे, क्लियरिटी नहीं होती है, तो हमारा फर्स्ट इंटरफेस उनसे यही होता है कि भाई उनको देखें, उनको समझें, उनके स्किल सेट्स और कॉम्पिटेंसीज और नॉलेज लेवल को असेस करें, फिर जितनी भी पॉसिबल गाइडेंस हो सकती है अलॉन्ग विद देयर पेरेंट्स, वी ट्राई, मतलब हम लोग ट्राई करते हैं उनको एक अच्छा रास्ता बताएं, क्योंकि लोगों को पता नहीं है, लोगों को 4-5 विषय पता होते हैं, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, लॉयर बनना है, या ये बनना है, लेकिन हम बोलते हैं कि अरे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है, अबंडेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सिर्फ आप देखो आपका इंटरेस्ट किस में है। हम कोशिश करते हैं इनके अंदर का वो जो इंटरेस्ट है, इनके अंदर की जो पैशन है, उसको हम पनपने दें, तो वो हम शुरू से करते हैं और काफ़ी हद तक हम सक्सेसफुल भी रहे हैं, उनको कोई एम्बिग्यूटी नहीं रहती। इवन जब वो आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बीटेक में एडमिशन लेते हैं, कहते हैं सर हम बीटेक इस एरिया से करेंगे, हम कंप्यूटर साइंस में करेंगे या एआई में करेंगे, एमटेक या और जैसे कोर्सेज है इंजीनियरिंग के, मैकेनिकल, सिविल, ठीक है आओ भाई पहला साल करो, पहले साल के अनुभव के आधार पे कहते सर हमारा रुचि इसमें है, इसमें है, इसमें है, तो हम उनको उधर जाने का मार्गदर्शन करते हैं, तो उनका करियर उसी तरह से जुड़ जाता है।
1: और बहुत अच्छी बातें चल रही हैं, बहुत सारी बातें अभी मेरे अंदर भी कौंध रही हैं, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारी जिज्ञासा हैं, लेकिन क्या कह रहे हैं हमारे जो घड़ियाल बाबू हैं, वो इशारा कर रहे हैं कि अब हमें हमारी जो बातचीत है यहीं पर इसको विराम देना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आगे फिर से मुलाकात होगी, हमारे लिसनर्स फिर से आपको सुनेंगे। जाते जाते अंत में आपसे बस एक मैसेज चाहते हैं कि हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारे जो युवा हैं, जो बच्चे हैं जो इस फील्ड में अब जो अपनी हायर एजुकेशन लेंगे, जो करियर अपना बनाने के लिए अग्रसर है, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: मैं यही कहूंगा, जो भी वो करना चाहेंगे, जिसके प्रति उनका रुचि है, हम टीचर्स को, पेरेंट्स को, सबको यही फर्ज बनता है उनको उस पैशन को परस्यू करने की इजाजत दें, और जब वो उसमें जाएं तो हमेशा एक इनक्विजिटिव माइंड से जाएं, क्यों, कैसे, कब, कहां ये मुझे ले जा रहा है। अगर वो उस प्रयास को अपने जीवन का अभिन्न हिस्सा बनाएंगे, वो ज़रूर सक्सेसफुल होंगे, वो ज़रूर ग्रोथ की तरफ जाएंगे, ना हम उनके ऊपर दबाव बनाएंगे। और कंपैरिजन का ज़माना नहीं है, टू थिंग्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड, शुड नॉट बी कंपेयर्ड, यू आपके अंदर अपनी खूबी है, उसको पनपने दें।
1: ऑलराइट, तो बहुत सारी बातें आप

0: साथ में हुई। हमारे साथ में प्रोफेसर आर एल रैना साहब, शिक्षाविद कुलगुरु, और कहते हैं कि अपनी हौसलों में उड़ान को भरिए, पैशन को परस्यू करने की इजाज़त दे दीजिए, प्रयास करिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। आप सुन रहे थे मोटिवेशनल बूस्ट और साथ में प्रोफेसर आर एल रैना साहब।
1: मातृत्व का एहसास बनाए आपकी जिंदगी को खास, नन्हे कदमों से माँ की गोद तक, हर लम्हा हम रखते हैं आपका ख्याल। बेबी लॉन हॉस्पिटल, हैप्पीनेस, केयर, अफेक्शन एंड डेडिकेशन, माँ और शिशु की देखभाल में समर्पित आपका विश्वसनीय बेबी लॉन हॉस्पिटल, राजा पार्क, जयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9352583833।

0: कुछ कहता है जयपुर, क्या कहता है जयपुर।
1: मैं जल महल हूँ, मान सागर झील के बीचों बीच, जैसे कोई सुनहरा ख्वाब।

0: ने एक तरफ अरावली की वादियां और दूसरी तरफ हंसता खिलखिलाता आपका अपना जयपुर शहर। दो मंजिल की मेरी इमारत का अक्स जब पानी पर पड़ता है ना, तो मेरी खूबसूरती के आगे पेरिस भी फीका नजर आता है। सवाई जयसिंह जी द्वितीय ने कल्पना की और सवाई प्रताप सिंह जी ने मुझे पानी पर आपके लिए उतारा। शायद ही कोई होगा जिसने जयपुर में आकर मुझको नहीं निहारा। मेरे चमेली बाग की खुशबू हो या मेरे बुर्ज मेहराब और छतरियां, दूर गगन पर उड़ते परिंदे हो या मीठे पानी में तैरती ये मछलियां, सब कुछ अनूठा अद्भुत और निराला है। मुझे जयपुर ने बड़े जतन से संभाला है। मिलोगे मुझसे तो जानोगे, लहरों के तरन्नुम पर गाई मीठी गजल हूं मैं। मान सागर का मान हूं मैं, जयपुर का जल महल हूं मैं।
1: FM रेडियो पिंक सिटी, कुछ तो खास है कुछ तो बात है।
2: रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, कुछ तो खास है कुछ तो बात है। 10:07 हो चुके हैं और आज है थ्रिल्ड ट्यूसडे।
0: ट्यूसडे को मिलते हैं टास्क नए,
3: खत्म ही नहीं होते।
0: काम और आराम दोनों में दंगल होता है, लेकिन रेडियो पिंक सिटी पर इस दिन सब मंगल ही मंगल होता है।
4: मंगल मंगल मंगल मंगल मंगल मंगल।
0: हफ्ते के दूसरे दिन नॉन स्टॉप दाख धिना दिन। ट्यून करिए रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, कुछ तो खास है हाँ कुछ तो बात है।
2: तो ट्यूसडे को होता है बड़ा ही खास दिन और 10:07:48 हो चुके हैं और ये जो वक्त है वो होता है गुनगुनाने का। जी हाँ, गुनगुनाते लम्हे प्रोग्राम। बॉलीवुड इंडस्ट्री में संगीत की दुनिया के यानी ऐसे सितारे हैं जिन्हें गुनगुनाएंगे आप और प्ले करूंगी मैं। तो आज हम जिनके गाने गुनगुनाने वाले हैं वो हैं जिन्हें हाल ही में भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला, पद्म भूषण, यानी कि अलका याग्निक जी। हाँ, तो आज हम इन्हीं के गाने गुनगुनाएंगे। तो बताइए कौन कौन से गाने हैं अलका याग्निक के जो बड़े सुपर हिट रहे। गुनगुनाइए आप, हमारे नंबर है 2200 800, यानी कि 2200 800। रिपीट कर रही हूँ नंबर, 2200 800। इस नंबर पे आपको लगाना है कॉल और अलका याग्निक जी के जो गाने हैं, जो भी आप चाहते हैं सुनना या सुनवाना, उनको आपको गुनगुनाना है और बताना है, ताकि जयपुर राइट्स भी उन गानों को सुन पाए या गुनगुना पाए। समझ गए ना? जी हाँ, प्रोग्राम गुनगुनाते लम्हे रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM चल रहा है। आपको करने हैं हमारे नंबर डायल और अलका याग्निक से कि जितने भी गाने हैं उनको आपको गुनगुनाना है। स्टे ट्यून्ड इनटू रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, कुछ तो खास है कुछ तो बात है। प्रियदर्शनी आपके साथ है।

0: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
1: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
0: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
1: सच?
0: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
1: समझ गया।
2: तुमने भरोसा दिलाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बांट।
3: पर भैया, ये जीवन नागजी के कांटे बांट नहीं है।
2: तुमने तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
3: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
4: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं। जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बांट के लिए 131-132 आतिश मार्केट। जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे ट्रेडमार्क जस्टिस देख कर ही खरीदें।
5: उठ के देखिए सुबह का नजारा, हवा भी है ठंडी, मौसम भी है प्यारा। सो गया चांद और छुप गया हर एक तारा। कबूल हो आपको सलामे सुबह हमारा।

0: मुझे भी ना आपसे मिलना, बातें करना बहुत अच्छा लगता है।
1: आप हैं आरजे प्रियदर्शिनी के साथ, प्रियदर्शिनी के साथ ओनली ऑन 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
0: रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, कुछ तो खास है, कुछ तो बात है। प्रोग्राम चल रहा है गुनगुनाते लम्हे, जिसमें आज अलका याग्निक जी के जो गाने हैं वही गुनगुना रहे हैं हमारे लिसनर्स, और वही गाने प्ले कर रही हूँ मैं। अभी आपने जो गाना सुना फ्रॉम द मूवी तेरे नाम, तुमसे मिलना, मुझे इसीलिए मैंने कहा आपसे मिलना मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जिसने मिलने की ख्वाहिश जताई, जिसने गुनगुनाया, वो थे राजवीर खेतान साहब चोमू पुलिया से। इन्होंने ये गाना गुनगुनाया और हमने इस गाने को आपके लिए प्ले किया। नेक्स्ट जो ये गाना आप सुनने वाले हैं, चांद छुपा बादल में, ये शशि सांखला जी ने गुनगुनाया है झालाना से, और बहुत ही खूबसूरत तरीके से इन्होंने ये गाना गुनगुनाया। बहुत ही मेरा मन हो रहा था इनको ऑन एयर लूँ, लेकिन इन्होंने खुद ने ही मना कर दिया कि नहीं, मैं पब्लिकली गाना नहीं गाता हूँ और मैं नर्वस हो जाता हूँ। मैंने कहा जी कोई बात नहीं, ठीक है। एनीवेज, अलका याग्निक जी की बात चल रही है, अभी हाल ही में इनको पद्म भूषण

0: है जो अपने आप में एक बड़ी एक अचीवमेंट है और सर्वोच्च तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। ये एक प्रसिद्ध प्लेबैक सिंगर रही हैं जिन्होंने 4 दशकों तक अपनी गायकी के लिए पूरे बॉलीवुड में ये प्रख्यात रही हैं और सबसे ज़्यादा गाने रिकॉर्ड करने वाली 5वीं प्लेबैक सिंगर रही हैं। ये फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर के लिए भी इन्हें कई बार नामांकित किया गया और ऐसे ही 7 बार इन्हें पुरस्कार भी दिया गया है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 2 राष्ट्रीय पुरस्कार भी इनको दिए गए हैं और BBC के लिए इन्होंने गाने गाए हैं, कुछ कुछ होता है, टिप टिप बरसा पानी, परदेसी परदेसी, छम्मा छम्मा, बहुत सारे गाने हैं जो इन्होंने गाए जो काफ़ी हिट रहे हैं। तो आज अलका याग्निक के गानों को लेकर ही हम गुनगुनाते लम्हे में गाने गुनगुना रहे हैं। रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM सुन रहे हैं आप मेरे यानी कि प्रियदर्शनी के साथ में, और अभी उदित नारायण और साथ में अलका याग्निक, इनकी आवाज में सुनते हैं ये गाना
1: चांद छुपा।
0: यस, 10:22 रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM।

प्यार में हो या रेलवे टिकट की कतार में, गुनगुनाना हमारी आदत है। किचन में करछी चलाए या ऑफिस में कंप्यूटर, गुनगुनाना हमारी आदत है। बच्चों के साथ खेलें या बुजुर्गों को सैर पर ले जाएं, गुनगुनाना हमारी आदत है। मैदान से खलिहान तक, सुबह से शाम तक, गुनगुनाना हमारी आदत है। क्योंकि रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM जयपुर की सुरीली आदत, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: एक नई खुशी।
1: JDLI है भूखंडों की ई नीलामी,
2: जिसमें आनंद विहार, अभिनव विहार, यश विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मुझ विहार, हरित विहार, यमुना विहार, अनुपम विहार, आनंद लोक, बीलवा, बूरथल, वसंत कुंज, गोल्डन रेजिडेंसी, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, सरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, अनिरुद्ध एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, मनोहरपुरा, रामचंद्रपुरा, SMS हॉस्पिटल अंडर पास, ट्रांसपोर्ट नगर, गोविंदपुरा, करधनी, आदिनाथ सरोवर, डेमिकला, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
1: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी JDA द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: आप हैं आरजे प्रियदर्शिनी के साथ, प्रियदर्शिनी के साथ ओनली ऑन 100.3 एफएम। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
2: रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम, कुछ तो खास है, कुछ तो बात है। 10:37 हो चुके हैं, मंगलवार का दिन है, थ्रिल्ड वाला ट्यूसडे, और प्रोग्राम चल रहा है गुनगुनाते लम्हे, जिसमें आप तमाम गाने सुन रहे हैं आज अलका याग्निक के, क्योंकि उन्हीं के गाने आज हम प्ले कर रहे हैं और उन्हीं के गाने जो हैं वो हमारे जो लिसनर्स हैं वो गुनगुना रहे हैं। आपने जो गाना सुना था शायर है, ये जो गाना सुना था फ्रॉम द मूवी साजन, नहीं सॉरी, देखा है पहली बार, हाँ जी देखा है पहली बार, ये अलका याग्निक की आवाज़ में था और ये फरमाइश की थी शाहरुख खान विद्याधर नगर से। और अभी जो नेक्स्ट गाना आप सुनने वाले हैं वो चाइना गेट से है, राजी शाह ने इस गाने को गुनगुनाया है, छम्मा छम्मा ये वाला गाना है, अभी आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में। अलका याग्निक की बात करें तो 20 मार्च 1966 में ये कोलकाता में जन्मी थी, हालांकि ये गुजराती परिवार से थी, लेकिन इनका जन्म जो हुआ था वो कोलकाता में हुआ था। इनकी जो माँ थी शोभा याग्निक, वो भी एक सिंगर थी, और कमाल की बात ये है कि जब ये 6 साल की थी, बस उसी उम्र से इन्होंने कोलकाता रेडियो स्टेशन पर गाना शुरू कर दिया था। 10 साल की जब हुई तब ये मुंबई आ गई और वहीं से अपने सिंगिंग फील्ड में या गायन के क्षेत्र में तरक्की की राह पर ये अग्रसर होती गई। ज़्यादातर गाने अगर अलका जी की बात करें तो बॉलीवुड के लिए इन्होंने गाए हैं, 700 फिल्मों के लिए गाने गा चुकी हैं ये, और कुमार सानू और उदित नारायण के साथ में इनकी जो जोड़ी रही वो दर्शकों ने या श्रोताओं ने काफ़ी पसंद की। तो गुनगुनाते लम्हे में आज अलका याग्निक जी की बात चल रही है और हमारे जो लिसनर्स हैं वो इन्हीं के गानों को गुनगुना रहे हैं। अगर आप भी कोई गाना गुनगुनाना चाहते हैं अलका याग्निक जी का, तो लगा दीजिए हमारे नंबर जो है 2200 800, यानी कि 2200 800।

0: 100.3 FM, कुछ तो खास है, कुछ तो बात है। 10:51 हो चुके हैं। प्रियदर्शनी आपके साथ में है। थ्रिल्ड वाला ट्यूसडे और प्रोग्राम चल रहा है गुनगुनाते लम्हे। अभी आपने जो गाना सुना, ये गाना, इसकी, इस गाने की अपनी एक कहानी है, वो भी बताऊंगी। लेकिन पहले ये गाना किसने गाया, यानी कि किसने गुनगुनाया, कौन से लिसनर ने, वो मैं बता देती हूँ। चांदपोल से शाहिनी बेगम, ये गाना इन्होंने गाया और बहुत ही खूबसूरत तरीके से गाया। और नेक्स्ट गाना कौन सा है वो भी मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल इस गाने के बारे में आपको बताती हूँ। ये जो गाना है, ये आज भी सबसे ज़्यादा यूट्यूब पर ढूंढे जाने वाला गाना, या यूँ कहा जाए कि बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको ढूंढा है। 245 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ मिल चुके हैं इस गाने को, और आज भी उतना ही पॉपुलर है। जब इस गाने को इतने साल हो चुके हैं, 29-30 से भी ज़्यादा साल इस गाने को हो चुके हैं। और इस गाने के जो लिरिक्स हैं, वो समीर अंजान ने लिखे थे, जतिन ललित ने इसको कंपोज़ किया था। और कुछ कुछ होता है अपने आप में काफ़ी टॉप गाना रहा अलका याग्निक के लिए, साथ में उदित नारायण जी थे। और अलका याग्निक जो हैं, वो मतलब यादगार और सदाबहार गानों को गाने के लिए जानी जाती हैं। 90s के दशक की बात करें तो हर गाना उन्हीं की आवाज़ से सस्ता था, और आज भी लोगों की प्लेलिस्ट अधूरी रहती है अगर अलका याग्निक के गाने उनकी प्लेलिस्ट में नहीं हों। 10:53 हो गए हैं। प्रियदर्शनी आपके साथ में है। एक ब्रेक लेते हैं और उसके बाद वो गाना।
1: अरे मोहन भाई, काफी बिजी लग रहे हो।
2: मैं सोच रहा हूँ कि बिजनेस शुरू करूँ। एक एजेंट ने कहा कि मुद्रा लोन जल्दी सैंक्शन करवा देगा, बस प्रोसेसिंग फीस और लीगल फीस देनी होगी। पेमेंट लिंक भी भेजा है।
1: अरे मोहन भाई, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कोई एजेंट नहीं होता है। धोखेबाज नकली वेबसाइट, सैंक्शन लेटर्स और दस्तखत से लोगों को फंसाते हैं।
2: सच?
1: सीधा बैंक या वित्त संस्था में जाओ, या सरकारी वेबसाइट से लोन अप्लाई करो। सतर्क रहें और ऑनलाइन ठगों से बचें।
2: समझ गया।
0: 10:53 और रानू कश्यप ने गुनगुनाया है इस गाने को, और ये गाना है तेजाब फिल्म से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 याद है ना? माधुरी दीक्षित ने इस गाने पर अभिनय किया था। स्टे ट्यून्ड।

0: का इंतजार।
1: कौन है वो?
0: वो जिससे मैं करती हूँ प्यार और जिससे करती हूँ मिन्नतें बार बार।
1: कैसे?

0: रहिए गुलाबी नगर का गुलाबी चैनल 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी।
1: दिल की बात ले आइए जुबान पर, कह दीजिए हमसे रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM।
2: ट्यूसडे को मिलते हैं टास्क नए,
3: ओए खत्म ही नहीं होते।
2: काम और आराम दोनों में दंगल होता है, लेकिन रेडियो पिंक सिटी पर इस दिन सब मंगल ही मंगल होता है।
4: मंगल मंगल मंगल मंगल मंगल मंगल।
2: हफ्ते के दूसरे दिन नॉन स्टॉप दाख धिना दिन। ट्यून करिए रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। कुछ तो खास है, हाँ कुछ तो बात है।
1: रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, कुछ तो खास है, कुछ तो बात है। 11:02 हो चुके हैं। प्रियदर्शनी आपके साथ में है, थ्रिल्ड ट्यूसडे मन रहा है आज। और ये वाला जो टाइम होता है, ये कहता है चल दिल कहीं ले चल, यानी कि ग्लोबल जर्नी विद रेडियो पिंक सिटी, जहां मैं आपको लेकर चलूंगी आज भारत और दुनिया के किसी ऐसे कोने में जहां सिर्फ नज़ारे नहीं बल्कि इतिहास, संस्कृति और जीवन की धड़कनें भी बसती हैं। जी हाँ, अब ज़रा कल्पना कीजिए कि सुबह आप उठें और सुबह की पहली किरणें धौलाधार पर्वत माला की बर्फ से ढकी चोटियों पर पड़ रही है। देवदार के ऊंचे ऊंचे वृक्ष हवा के साथ झूम रहे हैं। दूर किसी बौद्ध मठ से घंटियों की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है। ठंडी हवा आपके चेहरे को ऐसे छू रही है जैसे प्रकृति खुद आपका स्वागत कर रही है। और पहाड़ों से बहता बर्फीला पानी, उसको देखकर आपको सुकून मिल रहा हो। जी हाँ, ऐसी ही जगह आज आपको लेकर जाने वाली हूँ। मैं बात कर रही हूँ हिमाचल प्रदेश के मुकुट धर्मशाला की। तो आज घूमेंगे धर्मशाला, और वैसे भी थोड़े दिनों बाद धर्मशाला में घूमने का वक्त जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म इन द सेंस कि बरसात शुरू हो जाएगी ना, है ना। तो चलिए अभी घूम ही लेते हैं। आज 11:03 हो गए हैं, मंगलवार का ये दिन है, और बहुत सारी बातें आप लोगों से करनी है आज के दिन की। तो बने रहिए, सुनते रहिए रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

0: कुछ अलग एहसास होता है उन छोटी छोटी बातों का जो जिंदगी को खूबसूरत बनाती है, जैसे मम्मी की प्यार भरी डांट।
1: राहुल, अरे देखो तुम्हारे हाथ गंदे हैं, राहुल धो के खाना खाओ।
0: पापा का कहना,
2: बेटा आई लव यू एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू।
0: बहन का नाना करते हुए भी फाइनली अपनी वो स्पेशल वाली चॉकलेट शेयर कर लेना।
3: क्या यार, इमोशनल अत्याचार मत करो, लो रे खाओ, ठूसो।
0: भाई का गुस्से से देखना मगर फिर बाइक की चाबी पकड़ा देना।
4: अम्मू मत बना, ये ले बाइक की चाबी, जा जी ले अपनी जिंदगी।
0: दोस्त का कंधा और सीक्रेट्स रखने का वादा।
5: एक बात बताओ यार, किसी से कहेगी तो नहीं ना? पक्का पक्का ना?
0: यानी जिंदगी हसीन है जब अपने संग है। ऐसा ही एक साथी 100.3 FM रेडियो पिंक सिटी।
6: कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

0: आपके दिल की बात सुनने को हर पल तैयार। रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM।
1: 11:11 हो चुके हैं, लीजिए 11:12 हो चुके हैं। रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM थ्रिल्ड ट्यूसडे, प्रियदर्शनी आपके साथ, प्रोग्राम ग्लोबल जर्नी विद रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। और आज हम धर्मशाला में हैं। जी हाँ, धर्म का आश्रय धर्मशाला। कभी ये ब्रिटिश अधिकारियों का बहुत ही फेवरेट हिल स्टेशन हुआ करता था, लेकिन आज ये आपका, हमारा, सभी का, यानी कि शांति आध्यात्म का अपना एक केंद्र बन चुका है। तिब्बती संस्कृति का केंद्र है और इसी रूप में पूरी दुनिया में ये मशहूर हो गया है और तमाम टूरिस्ट पर्यटक यहाँ आते हैं, हर साल हर मौसम में आते हैं। हालांकि जो ये जुलाई के बाद वाला जो मौसम है, बरसात का जो मौसम है, ऐसे में वहाँ पे स्कूल्स ही ऑफ हो जाते हैं, तो ऐसे में जो पर्यटन है वो धीमे हो जाता है। ऐसे में जाने का बहुत ज़्यादा सेंस नहीं, लेकिन फिर भी वहाँ पर लोग आते हैं। जो वहाँ पर बाकी एडवेंचर्स हैं, पैराग्लाइडिंग है, पैरासेलिंग है, वो नहीं हो पाता है, लेकिन फिर भी लोग जाते हैं सिर्फ उस सुकून के लिए, उस आध्यात्म के लिए। 1960 में परम पावन 1960 में जो दलाई लामा साहब हैं, उनके यहाँ आने के बाद धर्मशाला ने एक नई पहचान बनाई और आज लिटिल ल्हासा के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन धर्मशाला सिर्फ एक शहर नहीं है, ये दो हिस्सों में है। एक तो लोअर धर्मशाला, और जहाँ पर आपको लोकल मार्केट मिलेगा, लोकल एक चहल पहल सी होती है, यानी स्थानीय जीवन की बात करें तो। वहीं अपर जो धर्मशाला है वो कहलाता है मैक्लॉडगंज। अक्सर हम कहते हैं मैक्लॉडगंज जाना है, असल में वो धर्मशाला का ही एक हिस्सा है, यानी कि अपर धर्मशाला, ऊंचा और नीचा। क्योंकि पहाड़ी एरिया है तो वहाँ पर जो निचला हिस्सा है उसको धर्मशाला मेन लोकल माना जाता है, और ऊपरी जो हिस्सा है उसको मैक्लॉडगंज के नाम से जाना जाता है। और ये जो मैक्लॉडगंज है, यहाँ आपको तिब्बती संस्कृति,

0: है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। मौसम आपको हर समय ऐसा लगेगा कि यार अभी तो धूप निकल रही थी और अचानक से बारिश, तो ऐसा ही मौसम रहता है वहाँ पर आपका, धूप है, कभी बादल है, कभी हल्की बारिश है, और कभी आपको वो धुंध देखने को मिलेगी जहाँ से देवदार के जो बड़े बड़े पेड़ हैं वो ऐसे लगते हैं कि यार क्या वाकई में एक फिल्म का शूट चल रहा हो जैसे। और इसी को देख के शायद किसी शायर ने कहा है कि पहाड़ों की खामोशी में भी एक आवाज़ होती है, पहाड़ों की खामोशी में भी एक आवाज़ होती है, जो सुन ले उसे वही असली मुसाफिर होता है। तो मुसाफिर तो भैया ऐसा है कि अपना बैग पैक करता है, कैमरा तैयार करता है और दिल में बहुत सारी उमंग भरता है और निकल पड़ता है एक मंजिल की तरफ। और आज की हमारी जो मंजिल है वो है धर्मशाला, और ज़िंदगी जो है वो एक सफ़र है और इस सफ़र में हर कोई चलता रहता है, राइट। तो अभी किशोरदा की आवाज़ में सुन लेते हैं ये गाना, ज़िंदगी एक सफ़र है।
1: जिंदगी एक सफर।

0: आज हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से।
1: वो कौन सी प्यारी सी डोर है जो बांधे है आपको और हमको। आपका अपना रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।

0: चारी पवन।
1: 11:25 इस हवा के साथ में, सनसनाती सी हवा के साथ में और उस प्यारी सी मधुर सी आवाज़ के साथ में अलका याग्निक जी की अभी आपने आवाज़ सुनी। अब देखिए, थोड़ी देर पहले ही हम उनके गाने गुनगुना भी रहे थे। रेडियो पिंक सिटी 1.3 एफएम सुन रहे हैं आप मेरे यानी कि प्रियदर्शनी के साथ में। 11:25 हो चुके हैं, थ्रिल्ड ट्यूजडे, और इसमें हम घूम रहे हैं धर्मशाला। धर्मशाला के मैक्लॉडगंज में आपको लेकर चलती हूँ। वहाँ जैसे ही आप एंट्री करेंगे लगेगा कि यार किसी और ही दुनिया में आ गए हैं। वाकई में पहाड़ों के साथ होते हुए भी वहाँ पे आपको जो संस्कृति दिखाई देगी ना, सड़क के दोनों रंग बिरंगे जो प्रेयर फ्लैग्स हैं, छोटे छोटे कैफ़े हैं, तिब्बती क्राफ्ट्स हैं, या यूँ कहा जाए कि हैंडमेड क्राफ्ट्स हैं, उनकी जो दुकानें हैं, और साथ ही साथ मुस्कुराते हुए आपको भिक्षुगण वो भी मिल जाएंगे, तो जो दिल है वो गार्डन गार्डन हो जाता है। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे दलाई लामा जी का घर भी है। 1959 में, जैसा कि सबको पता है कि वो तिब्बत से निर्वासित होकर भारत में आए थे, और 1960 में मैक्लॉडगंज में उन्होंने अपना एक स्थान बनाया, और बस तभी से ये जो जगह है वो पूरी दुनिया के बौद्ध अनुयायियों के लिए एक आस्था का केंद्र बन गया। सबसे महत्वपूर्ण जो जगह है यहाँ की जो मानी जाती है वो है तुसंगलाक खाग कॉम्प्लेक्स। जी हाँ, थोड़ा सा नाम कॉम्प्लेक्स सा है, लेकिन वाकई में ये जगह बहुत खूबसूरत है, और ये दलाई लामा मंदिर परिसर भी इसको कहा जाता है। तसुंगला खांग ये जगह का नाम है, और इसके भीतर, इस मंदिर के भीतर भगवान बुद्ध की एक आपको बहुत बड़ी एक प्रतिमा दिखाई देगी। जैसे आप एंट्री करेंगे इस मठ में, शांत वातावरण, और अगर उस समय प्रार्थना चल रही है तो समझिए कि आह क्या सुकून मिलता है ऐसा ही। और मतलब वो जो विजन है या वो जो फील आता है उसको शायद फील किया जा सकता है, लेकिन उसको शब्दों में बांधना बड़ा कठिन होता है यार। लेकिन जब आप घूमने जाएंगे पर्यटक के तौर पे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्यान खींचती है, मानसिक शांति, और इस तरह से यानी आपके जो लाइफ में भागम भाग है ना कि यार सुबह से लेकर रात तक चल पाओ, बस ये जगह आपको सुकून देती है। तो मैक्लॉडगंज की जो गलियाँ हैं यहाँ पर आपको जब निकलेंगे तो आ हा हा क्या खुशबू, मेरे तो आज भी जहन में है वो खुशबू, मोमोज की खुशबू। भाई तिब्बतियों का एक गढ़ है तो यहाँ पे मोमोज की खुशबू होना तो लाजमी है। जो कैफ़े में आपको खुशबू दिखती है वो गर्मा गर्म थुकपा, वहाँ की बटर टी, सिद्धू, इनका जो स्वाद है ना वो आपकी यात्रा को, आपके इस जर्नी को और भी खूबसूरत और यादगार बना देता है। यहाँ दुकानों से आप बहुत सारी चीज़ें ख़रीद सकते हैं, जैसे कि आपकी विंचेन है यानी कि तिब्बती घंटियाँ हैं, और हैंडमेड थक्का पेंटिंग है, ऊनी शॉल, यानी बहुत सारे आइटम हैं यहाँ पे। और बस सहन में अपना मैक्लॉडगंज को या धर्मशाला से घूमने के बाद जब आप आते हैं तो बस जहन में एक बात आती है। बात कुछ यूँ है, किसी शायर ने बहुत खूबसूरती से इनको लाइनों में ढाला है, और वो यूँ है, कुछ शहर देखे नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं, मैक्लॉडगंज उन्हीं शहरों में से एक है। तो बस यहाँ से थोड़ी दूरी पर हमारा अगला पड़ाव है, जहाँ मंदिर है, आस्था है, इतिहास भी है, और खूबसूरत झरना भी। तो बातें जारी रहेंगे, आप बने रहिए रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम पर, और रंगते रहिए मेरे रंग में, क्योंकि आज हम हैं धर्मशाला। और अभी एसपी बाल सुब्रमण्यम की आवाज़ में ये गाना बिल्कुल आपको मेरे रंग में रंग देगा, फ्रॉम द मूवी मैंने प्यार किया।

0: रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, कुछ तो खास है, कुछ तो बात है।
1: रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, कुछ तो खास है, कुछ तो बात है। 11:41 और 32 सेकंड हो चुके हैं। थ्रिल्ड वाला ट्यूजडे प्रियदर्शनी के साथ में प्रोग्राम चल रहा है, ग्लोबल जर्नी विद रेडियो पिंक सिटी। और आज इसमें हम धर्मशाला में घूम रहे हैं। धर्मशाला, जहाँ भी हम मैक्लोडगंज की गलियों में घूमे, वहाँ मठ हमने देखा और वहाँ का जो लोकल मार्केट, लोकल फूड, उसको एंजॉय किया। अब भाग सुनाग जो झरना है वहाँ चल रहे हैं, शिव मंदिर है, और साथ ही साथ सुनेंगे उस संगीत को जो पहाड़ों के पीछे से आता है।

0: जी हाँ, पहाड़ों के पीछे से समुद्र तल से लगभग 1770 मीटर की ऊंचाई पर ये जो मंदिर है ना, शिव मंदिर, ये है। और इसके पीछे एक कहानी है, लोक कथा। और कहा जाता है कि जो राजा भगसू थे और नाग देवता, इनके बीच में युद्ध हुआ। बाद में राजा ने अपनी भूल स्वीकार की और नाग देवता ने उन्हें क्षमा कर दिया, और तभी से इसका नाम पड़ा भगसू नाग, यानी भगसू राजा का नाम और नाग जो नाग देवता। मंदिर के सामने आपको एक नेचुरल जो पौंड है, या वाटर पौंड है, या प्राकृतिक जलकुंड है, वो मिलेगा, जहाँ पे जो श्रद्धालु हैं वो स्नान भी करते हैं। मंदिर के जो घंटियों की आवाज़ें हैं, ध्वनि है, देवदार के जो वृक्ष हैं, पहाड़ों से आती जो ठंडी हवा और जो संगीत है ना, वो शांति देता है। लेकिन असली रोमांच अभी बाकी है। वो रोमांच है, मंदिर से लगभग 20 मिनट की हल्की चढ़ाई के बाद हम पहुंचते हैं भगसू वाटरफॉल। ऊंचाई से गिरता है ये जो झरना है, वाह! और क्या पानी, या पानी का रंग देखेंगे ना तो आपको लगेगा कि जो हम ड्रॉ करते हैं कैनवास पर या ड्राइंग, वो है। और जो हम आवाज़ उसकी जो है, वो आपके कानों को ना इतना ज़्यादा एक स्वच्छता प्रदान करेगी ना कि कह नहीं सकते। आसपास छोटे छोटे कैफ़े हैं, पहाड़ों पर बैठ के जब आप कॉफ़ी पीते हैं, वहाँ की जब आप नूडल्स खाते हैं, तो ओह, ऐसा लगता है कि वाह, बस यहीं बस जाए, यहीं रच जाए। और बरसात के मौसम में तो ये झरना और भी भव्य हो जाता है। हालांकि उस समय यहाँ पे जाना अलाउ नहीं होता है, लेकिन उस समय जो पानी की गर्जना होती है, जो पक्षियों की चहचहाट आवाज़ें होती हैं, वो सब एक संगीत की रचना कर देते हैं। अगर आप फोटोग्राफर हैं या फोटोग्राफी के शौकीन हैं, तो ये जो जगह है ना, वो किसी स्वर्ग से कम नहीं। और सिर्फ शांति चाहते हैं तो बैठ जाइए किसी भी चट्टान पर जाके, और बस सामने से बहते उस पानी को देखते रहिए। और भी अच्छा होगा कि अगर आप पानी से बहते हुए पास वाले चट्टान पर बैठे, उसमें पैर डाल लीजिए, वो जो बर्फानी जल है ना, वो जो पानी है, वो आपके पैरों को जो ठंडक देता है, थोड़ी देर बाद आपका मन करता है ओह ये क्या, सच में पैर बहुत ठंडे से हो जाते हैं, हाथ लगाओ तो ऐसा लगता है इतना ठंडा पानी, ऐसा वो झरना है। तो नदियाँ जो हैं वो हमें सिखाती हैं चलते रहना, झरने क्या सिखाते हैं, मुस्कुराते रहना, और पहाड़ बताते हैं कि मंजिल जाए जितनी ऊंची हो, हौसले उससे बड़े ही होने चाहिए। तो चलिए थोड़ी देर में आपको ले चलूँगी नड्डी व्यू पॉइंट की तरफ, जहाँ से आप देख पाएंगे उस पहाड़ को, धौलाधर पहाड़ का जो बिल्कुल हाइट है, जो टॉप है, वहाँ देख उसको देख पाएंगे, वहाँ से बहता हुआ जो झरना है उसको देख पाएंगे, और वो ट्रैक भी दिखाया जाता है वहाँ से। तो चलिए बने रहिए, सुनते रहिए रेडियो पिंक सिटी 100.3 FM, और चल रही है आज हमारी गाड़ी धर्मशाला की तरफ, और प्रोग्राम चल रहा है ग्लोबल जर्नी विद रेडियो पिंक सिटी, मेरे यानी कि प्रियदर्शनी के साथ में। बने रहिए, सुनते रहिए। यहाँ पर लेंगे कमर्शियल ब्रेक, और ब्रेक के बाद मोहित चौहान की आवाज़।
1: तुमने भरोसा दिलाया, मैं खरीद लाया जीवन नागजी एंड कंपनी के कांटे बाट।
2: पर भैया ये जीवन नागजी के कांटे बाट नहीं है।
1: तुम्ही ने तो कहा था आतिश मार्केट से ही खरीद कर लाना।
2: ये भी तो कहा था कि सिर्फ 132 नंबर की दुकान से ही लाना।
3: मिलते जुलते नामों से धोखा ना खाएं, जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के असली कांटे बाट के लिए 131-132 आतिश मार्केट।
4: जीवन नागजी एंड कंपनी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के कांटे ट्रेडमार्क जस्टिस देख कर ही खरीदें।

0: एक नई खुशी। जेडीए लाए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
1: जिसमें आनंद विहार, अपना विहार, यश विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मुझ विहार, हरित विहार, यमुना विहार, अनुपम विहार, आनंद लोक, बीलवा, बूरथल, वसंत कुंज, गोल्डन रेजिडेंसी, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, सरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, अनिरुद्ध एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, मनोहरपुरा, रामचंद्रपुरा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडरपास, ट्रांसपोर्ट नगर, गोविंदपुरा, करधनी, आदिनाथ सरोवर, डेमिकला, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
0: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।
2: साज हो, बात हो, गीतों की बारात हो,

सजा हर दिन, और रेडियो वही अपना। कुछ तो खास है, कुछ तो बात है। जी हाँ, ये है रेडियो पिंक सिटी। सुनते रहिए, सुनाते रहिए 100.3 FM पर।

0: रेडियो पेंगसरी 1.3 एफएम तुमसे ही, वाकई में अगर आप इस जगह चले जाएंगे तो इस जगह से ही कहेंगे कि मुझे तुमसे प्यार हो गया। नड्डी व्यू पॉइंट की तरफ अब हम चल रहे हैं। आज रेडियो पिंक सिटी के साथ हम घूम रहे हैं धर्मशाला, ग्लोबल जर्नी विद रेडियो पिंक सिटी, और इसमें मैक्लोडगंज से हम निकल गए हैं और मैक्लोडगंज से अब निकल के हम पहुंच रहे हैं नड्डी व्यू पॉइंट, जो कि 4-5 किलोमीटर की दूरी पर है बस मैक्लोडगंज से। और ये नड्डी गाँव है बेसिकली, और जहाँ पहुँच कर वाकई में समय ना ठहर जाता है, आपको ध्यान नहीं रहता है कि आपको यहाँ से निकलना है और दूसरी जगह जाना है। ऐसी जगह है, सामने धौलाधार पर्वतमाला की आपको चोटियाँ दिखेंगी बर्फ़ से ढकी हुई, नीचे आपको कांगड़ा घाटी दिखाई देगी और सबसे ऊपर नीला आसमान। अगर आप यहाँ का सनराइज सनसेट देखेंगे तो बस आपको लगेगा कि यहीं तो रहना है, यहीं तो जीना है, यही तो जीवन है, क्या भागदौड़ की ज़िंदगी में रखा है। कहते हैं कि अगर मौसम साफ हो तो धौलाधार की चोटियाँ इतनी करीब दिखाई देती हैं कि लगता है बस यूँ हाथ बढ़ाइए और आप छू लेंगे। और यहाँ से थोड़ी ही सी दूर जब जाएंगे आप तो आपको यहाँ दिखेगी डल लेक। डल लेक पे हालांकि अभी काम चल रहा है लेकिन इसकी खूबसूरती अपने आप में बड़ी कमाल है। अभी वो खूबसूरती देखने को नहीं मिलेगी क्योंकि डल लेक का काम चल रहा है, और जैसे ही ये वापस तैयार हो जाएगी आप इसकी खूबसूरती को निहार पाएंगे। आपने धर्मशाला देख लिया, और अगर ट्रायुंड नहीं गए जी हाँ तो बस समझिए कि ये जो सफ़र है वो अधूरा है। ट्रायुंड एक तरह से ट्रैक है जो 9 किलोमीटर लंबा है, मैक्लोडगंज से शुरू होता है और हिमाचल के सबसे ज़्यादा फेवरेट या सबसे ज़्यादा फेमस ट्रैक्स में से गिना जाता है। आप जब ट्रैक पे जाएंगे, हाँ लेकिन उसके लिए आपके जो घुटने हैं, आपके जो पैर हैं वो दमदार होने चाहिए। तो रास्ते पर आपको देवदार, ओक और कई तरह के पेड़ दिखाई देंगे, छोटे कैफ़े मिल जाएंगे, वहाँ आप चाय का लुत्फ़ उठा सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। फाइनली यहाँ घूमने के लिए अभी पूरा नहीं हुआ है क्योंकि समय हो गया है, तो बस बताऊँगी आपको कि यहाँ पर HPCA क्रिकेट स्टेडियम है, वो भी आप देखिएगा, बड़ा खूबसूरत है, दुनिया के सबसे खूबसूरत क्रिकेट स्टेडियमों में से आता है। सेंट जॉन है यहाँ पर चर्च जो है, और ये 1852 में बना था, इसकी अपनी एक कहानी है। ऐसे ही मंदिर है जो शक्तिपीठ में आता है, दुर्गा माता कुणाल पत्थरी मंदिर है ये, इसकी अपनी एक कहानी है। तो बहुत कुछ है घूमने को यहाँ पर, जहाँ धर्मशाला या मैक्लोडगंज की बात करें आप जाएंगे तो आपको लगेगा यार यहाँ पे तो 3 दिन भी कम पड़ गए हैं, लेकिन बहुत खूबसूरत है। जाइए, इन्जॉय करिए, घूमिए। और रेडियो पिंक 100.3 एफएम पर अभी जो चल रहा था वो रेडियो पिंक ग्लोबल जर्नी विद रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम। तो जब भी आप इस तरह से जाएं तो बस हाँ अपना सामान ऐसा लेकर जाएं कि उसमें रेनकोट भी हो, उसमें आपके बूट्स भी अच्छे से हों ताकि पहाड़ आप चढ़ सकें, साथ ही साथ कुछ स्नैक्स भी हों आपके छोटे से बैग्स में। तो जाइए, इन्जॉय करिए धर्मशाला, फिलहाल इन्जॉय करिए सोनू निगम की आवाज़ में ये वाला गाना फ्रॉम द मूवी रिफ्यूजी।
1: ये नदियाँ जिस पर झुककर तुम पानी पिया करते हो, मैं इसके पानी से अपने प्यासे होंठों को भिगो लूँगी, समझूंगी तुम्हारे होंठों को छू लिया।

वाकई में सरहद जो है वो इंसानों के लिए है, लेकिन जो धर्मशाला कहता है सरहद से बाहर जाने की बात करता है। फिलहाल एक सरहद बन गई है हमारे पास में कि हमें यहीं पर आपको बाय-बाय टेक केयर कहना होगा। तो चलिए, समय हो गया है मेरे जाने का, फिर मिलेंगे यहीं पर रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम पर। तब तक के लिए मुझे यानी प्रियदर्शनी को दे दीजिए इजाज़त। टेक केयर एंड बाय-बाय, और सुनते रहिएगा रेडियो पिंक सिटी 100.3 एफएम।

0: आपने सुना एफएम रेडियो पिंक सिटी कार्यक्रम। यह आकाशवाणी है और आप विविध भारती का जयपुर केंद्र सुन रहे हैं। एफएम बैंड 102.3 मेगाहर्ट्ज पर दिन के 12 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियंतो के साथ शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के एक नए चरण में प्रवेश कर रही है। जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियंतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा आदान प्रदान, आपदा प्रबंधन सहयोग और औद्योगिक सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
2: आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए मिलकर काम करेंगे। दो करीबी मैरिटाइम देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम

0: इंडिपेंडेंट देश होने के नाते हमने ब्लू इकोनॉमी, पोर्ट डेवलपमेंट और मैरिटाइम ट्रेड में आपसी सहयोग बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
1: श्री मोदी ने कहा कि ये साझेदारी विकास, सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, संस्कृति और शिक्षा सहित कई क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। भविष्य के द्विपक्षीय संबंधों पर उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया

से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की दो दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने बताया है कि केरलम के कोच्चि में कल से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे। विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नीति विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने बहरीन में शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। डॉक्टर जयशंकर चार खाड़ी देशों की अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कतर से बहरीन पहुंचे। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत के चमड़ा और जूते उद्योग का निर्यात लगभग 4.5 अरब डॉलर है। 38 विकसित देशों द्वारा मुक्त व्यापार समझौतों के माध्यम से अपने बाजार खोले जाने के कारण इसमें विकास की अपार संभावनाएं हैं। इन देशों में ब्रिटेन, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य देश शामिल हैं। नई दिल्ली में आयोजित चमड़ा निर्यात परिषद राष्ट्रीय निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार 2024-25 समारोह में श्री गोयल ने ये बात कही। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 307 अंक बढ़कर 78,592 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 83 अंक बढ़कर 24,514 पर पहुंच गया।

0: दुल्हन के। यादों की महफिल कार्यक्रम के बाकी गाने एक अंतराल के बाद।
1: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
2: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
3: प्रत्येक बुधवार सुबह 9:15 पर सुनिए कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ। प्रायोजक हैं लेजर चिकित्सा में अग्रणी नाम आनंद आई हॉस्पिटल जयपुर।
4: 9772097720।
5: प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे सुनिए जयमाला। प्रायोजक हैं देव दर्शन ओवरसीज।

अंतराल के बाद हम उपस्थित हैं कार्यक्रम के बाकी गानों को लेकर। संगीतकार अनिल बिस्वास को याद करते हुए उनके संगीतबद्ध किए हुए गाने हम सुन रहे हैं आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। अगला गाना मन्ना डे की आवाज़, नरेंद्र शर्मा का लिखा हुआ गाना, फिल्म वर्षा ऋतु।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।

राही फिल्म का ये गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में प्रेम धवन के बोल। अब आपको सुनवाते हैं परदेसी फिल्म का गाना मीना कपूर और साथियों का गाया हुआ। संगीत है अनिल बिस्वास का।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: मुकेश की आवाज में अब आपको सुनवाते हैं पहली नजर, इस फिल्म का गाना। डॉक्टर सफदर आह का लिखा हुआ गाना, संगीत है अनिल बिस्वास का।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में प्रेम धवन का लिखा हुआ गाना, फिल्म का नाम लाजवाब।

यादों की महफिल कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में लाडली फिल्म का गाना। गीत के बोल बहजाद लखनवी

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अमीर बाई कर्नाटकी और अरुण कुमार की आवाजों में कवि प्रदीप का लिखा हुआ गाना फिल्म किस्मत।

बादल तू नजर न लगा, तू नजर न लगा, ओ बादल तू नजर न लगा मेरा बोल।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

यादों की महफिल इस कार्यक्रम में आइए अब सुना जाए तलत महमूद की आवाज में जासूस फिल्म का गाना बोल हैं इंदिवर के।

यादों की महफिल कार्यक्रम में संगीतकार अनिल बिस्वास के संगीतबद्ध किए हुए गाने आज आपको सुनवाए जा रहे हैं। अगला जो गीत है ये बेकसूर फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़ में एहसान रिजवी के बोल हैं।

0: आप सुन रहे थे राष्ट्रीय सेवा विविध भारती के कार्यक्रम। हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.3 MHz पर। श्रोताओं, दिन का एक बजने को है। कुछ ही पलों में आप हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे, जिन्हें हम आकाशवाणी जयपुर अजमेर से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबावो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। वार्ता के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं ने आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान भी किया। इसके बाद प्रधानमंत्री श्री मोदी ने दोनों देशों की संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि दोनों देश हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
0: देश की जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत बनाने के उद्देश्य से आज से ओडिशा के भुवनेश्वर में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से आयोजित इस दो दिन की कार्यशाला में लगभग 200 प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर जनजातीय कार्य मंत्रालय और वाराणसी के संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। कार्यक्रम के दौरान ट्राइब एक्स नामक एक डिजिटल शिक्षण मंच का भी शुभारंभ किया जाएगा। ये मंच जनजातीय कला, संस्कृति, भाषाओं, पारंपरिक ज्ञान और कौशल विकास को समर्पित होगा। कार्यशाला का उद्देश्य देश भर में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों के कामकाज की समीक्षा करना और उन्हें जीवंत ज्ञान संस्थानों तथा जनजातीय विकास के लिए नीतिगत सहायता केंद्रों में बदलने के लिए एक व्यापक कार्यसूची विकसित करना है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में देश भर में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि ये योजनाएं देश में आधुनिक और बेहतर परिवहन व्यवस्था बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। श्री गडकरी ने कहा कि इनसे रोजगार और व्यापार के नए अवसर बढ़ेंगे, सभी क्षेत्रों का संतुलित विकास होगा और देश की माल परिवहन व्यवस्था अधिक मजबूत होगी। जयपुर के श्यामनगर थाना क्षेत्र में आज सुबह 200 फीट बाईपास पर तेज रफ्तार ट्रक के फुटपाथ पर चढ़ने से वहां खड़े 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे में 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। एजेंसी के अनुसार तेज रफ्तार ट्रक पहले सड़क किनारे लगी लोहे की रेलिंग तोड़ते हुए फुटपाथ पर चढ़ गया और वहां खड़े लोगों को चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही श्यामनगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया। गंभीर रूप से घायल दोनों लोगों को तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है। हादसे के बाद कुछ देर तक यातायात प्रभावित रहा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। प्रदेश में सक्रिय मानसून के कारण अधिकांश जिलों में बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तो कहीं भारी बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुसार सबसे ज्यादा 9 सेंटीमीटर बारिश जालौर के जसवंतपुरा में दर्ज की गई। जोधपुर के डांगियावास क्षेत्र में तेज बारिश के बाद हाईवे पर पानी भर गया, जबकि जालौर के भादराजुन क्षेत्र में पहाड़ियों से झरने बहने लगे। मौसम विभाग के अनुसार पाली जिले के देसूरी में 8 सेंटीमीटर, जोधपुर के झवर में 5 सेंटीमीटर बारिश हुई। सीकर, झुंझुनू, प्रतापगढ़ और राजसमंद में भी 2 इंच तक बारिश हुई, जबकि दौसा, सिरोही, बांसवाड़ा, उदयपुर, अलवर सहित कई जिलों में हल्की से मध्यम बरसात दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आज 7 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि जैसलमेर को छोड़कर शेष सभी जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: हम विविध भारती के जयपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 100.3 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे राष्ट्रीय सेवा विविध भारती के कार्यक्रम जहाँ चल रहा है कार्यक्रम सुरीला सफर।

0: tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay tay
1: आँख मिल जाई है सजनिया से तो नाचन लगी है।

गीत भी खूबसूरत, संगीत भी खूबसूरत और फिल्म में अदाकारी भी बड़ी खूबसूरत, नृत्य तो देखने लायक। ऐसा लगता है कि कोई एक नौजवान मस्त मौला होकर के नृत्य कर रहा है। कुछ हमारे साथियों ने बातें लिखी है कि नैन लड़ जाई है, देहाती शैली की लोक नृत्य, धोती पकड़ कभी दाहिने तो कभी बाएं, सुंदर अभिनय है दिलीप कुमार का। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि नैन लड़ जाई है तो मनवा में खटक होई बे, गाने में दिलीप कुमार ने बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के बिल्कुल एक गांव के लड़के की तरह जो सहज और ऊर्जावान डांस किया, उसने दर्शकों का दिल जीत लिया। उनके बोलने का अंदाज, आंखों की भाषा और गंभीर आवाज़ ने गंगा के किरदार को बेहद जीवंत बना दिया। एक साथी लिख रहे हैं कि ये जो फिल्म है नैन लड़ जाई है, इस गाने गंगा जमुना फिल्म का गाना है, ये फिल्म का नाम है और भारत की दो प्रमुख नदियों के नाम भी है। और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि इस गाने में जो दिलीप कुमार जी ने नृत्य किया वो नृत्य यादगार है। चलिए धन्यवाद आपको। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं, आन फिल्म का गाना आपको सुनवाएंगे। एक बार फिर आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की है, शकील बदायूनी के बोल, संगीत नौशाद का। इसमें दिलीप कुमार के साथ अभिनेत्री कौन है ये आपको बताना है।

आन फिल्म का गाना आपने सुना। इस फिल्म में दिलीप कुमार के साथ जो अभिनेत्री हैं वो हैं नादिरा। इससे पहले जो गंगा जमुना फिल्म का गाना हमने सुना उसके बारे में हमारे एक साथी की ये बात है कि गंगा जमुना में उन्होंने पूर्वी उत्तर प्रदेश की लोक भाषा और लहजे को इतनी सहजता से निभाया कि पात्र बिल्कुल वास्तविक प्रतीत हुआ। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि वो कलाकार जिसे परिचय की कोई आवश्यकता नहीं, वो दिलीप कुमार के अलावा और कौन हो सकता है। वे हिंदी सिनेमा की बुनियाद थे, नींव थे। उनकी फिल्मों में मधुरता, उल्लास और उमंग का बेहतरीन संगम देखने को मिलता है। आज भी उनकी जब टीवी पर कोई फिल्म आ रही होती है तो हम सारे काम धाम छोड़कर बस उनके मोहपाश में बंध जाते हैं। वो उनकी उड़ती जुल्फें, हल्की सी मुस्कुराहट कयामत ढाने के लिए काफ़ी है। तो आपकी इस बात के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और अब अगला गाना सुनवा रहे हैं कोहिनूर फिल्म का। ये गाना लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में, शकील बदायूनी के बोल, संगीत नौशाद का।

कोहिनूर फिल्म का गाना दिलीप कुमार और मीना कुमारी पर फिल्माया गया। कह सकते हैं कि जब संगीत की बात हो तो कुछ ऐसे गीत होते हैं जो सच में संगीत के कोहिनूर कहलाते हैं। आज गाने तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन आप ये जिक्र कर सकते हैं किसी भी गाने के बारे में या किसी भी सीन जो आपने देखा हो, दिलीप कुमार की फिल्म देखी हो, उनका कोई अभिनय किसी फिल्म में जो आपको पसंद आया हो, कोई दृश्य जो आपको पसंद आया हो, तो उसके बारे में आप जिक्र कर सकते हैं कि इस गीत में हमें ये चीज़ पसंद आई या ये जो सीन था इसमें हमें ये बात पसंद आई या इनके अभिनय में हमें ये बात बहुत ख़ास लगी। इन बातों का आप जिक्र कर सकते हैं। एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि हिंदी सिनेमा का इतिहास जब भी महान अभिनेताओं का जिक्र करेगा तो दिलीप कुमार का नाम सबसे पहले सम्मान के साथ लिया जाएगा। अपने सहज, गहरे और भावपूर्ण अभिनय से उन्होंने हर किरदार में ऐसी जान फूंकी कि पर्दे पर अभिनय नहीं बल्कि जीवन दिखाई देता था। यही कारण है कि

अब आपको सुनवाते हैं नया दौर फिल्म का गाना, मोहम्मद रफ़ी और बलबीर की आवाज़ों में। साहिल लुधियानवी के बोल हैं, संगीत किसका है ये आप हमें बताइए। और जो बात हमने आपसे कही कि किसी गाने का जिक्र आप कर सकते हैं, किसी दृश्य का जिक्र आप कर सकते हैं जो आपको बहुत मार्मिक लगा हो, बहुत जिसमें हास्य आपने अनुभव किया हो, या जो आपको बहुत पसंद आया हो, या उसकी क्या खासियत आपको लगी है, इसका जिक्र आप कर सकते हैं।

ओपी नैयर के संगीत से सजा नया दौर फिल्म का ये गाना एक जोश भर देने वाला गाना है। अगर हम कभी सो भी रहे हों और ये गाना अगर कानों में पड़े तो हम उठकर खड़े हो जाते हैं और सुनने को मजबूर हो जाते हैं, और अगर देखने को मिल जाए तो जो एक्टिंग के साथ गाने को सुनने का मज़ा और भी दोगुना हो जाता है और मन एकदम प्रफुल्लित होकर के जोश से भर जाता है। तो ऐसे ये गीत हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि मेरी नज़र यदि दिलीप कुमार के अभिनय की बात हो तो उनकी सबसे चर्चित फिल्मों में से एक है मुग़ल-ए-आज़म। इस फिल्म में उन्होंने शहजादा सलीम की भूमिका निभाई थी और यही भूमिका उनके अभिनय कौशल का एक उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है। एक साथी लिख रहे हैं कि मधुमति का सुहाना सफ़र और ये मौसम हंसी, ये गाने की एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि मनोज कुमार की क्रांति फिल्म में दिलीप कुमार जी ने बहुत अच्छा रोल निभाया था और ये यादगार रहा। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि 1960 की सदाबहार फिल्म कोहिनूर का गीत दो सितारों का ज़मीं पर, ये कालजई रोमांटिक गीत है, संगीतकार नौशाद और शकील बदायूनी और आवाज़ मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की। संगम को सुनकर आज भी प्यार और उमंग का एहसास होता है। एक साथी हमारी ये बात लिख रहे हैं कि दिलीप कुमार भारतीय फिल्मों के ऐसे अभिनेता जिन्होंने अपने अभिनय से फिल्म इंडस्ट्री की परिभाषा ही बदल दी। सुपरस्टार

कैसे बनते हैं ये दिलीप कुमार जी ही अपने अभिनय से उन्होंने बताया। फिल्मों में गंभीर भूमिकाओं के अलावा दिलीप कुमार जी ने कई फिल्मों में कॉमेडी रोल भी किए और दर्शकों को उन्होंने बहुत हंसाया भी। चलिए अब मधुमती फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना। संगीत किसका है आप बताइए।

मधुमति फिल्म का गाना, संगीत सलील चौधरी का। हमारे साथी लिख रहे हैं कि राम और श्याम फिल्म में उनके एक्टिंग के सभी शेड्स देखने को मिलते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि दिलीप कुमार और संजीव कुमार की एक फिल्म संघर्ष मैंने देखी है, उसमें एक गाना है कोई पैरों में घुंघरू बंधवा दे तो फिर मेरी चाल देख ले, उसमें दिलीप कुमार का डांस बहुत ही अच्छा लगा और फिल्म भी हमें बहुत अच्छी लगी। एक साथी लिखते हैं कि फिल्म शक्ति में अमिताभ बच्चन के पिता का रोल दिलीप कुमार जी ने बखूबी निभाया है, एक सशक्त पुलिस इंस्पेक्टर का। और एक साथी ये लिख रहे हैं कि नया दौर में तांगे की दौड़ वाला दृश्य केवल जीत हार का नहीं बल्कि उस विश्वास का प्रतीक है कि हौसला और मेहनत परिस्थितियों से बड़ी ताकत होते हैं। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि मुगले आजम फिल्म का प्रसिद्ध गीत जब प्यार किया तो डरना क्या राजस्थान के जयपुर शहर में स्थित आमेर किले के शीश महल में फिल्माया गया था। हम जब भी आमेर जाते हैं तो इस गाने की याद हमें आती है। और एक साथी हमारे लिख रहे हैं कि मुझे दिलीप कुमार की क्रांति, विधाता और सौदागर पिक्चर बहुत अच्छी लगी। आइकॉनिक फिल्म सौदागर में दोस्त भी के ऊपर है और क्रांति पिक्चर देख के ऊपर है, ऐसा कुछ थोड़ा सा आप अगर स्पष्टता से लिखें तो अच्छा होगा। एक साथी लिख रहे हैं कि अभी कुछ दिन पूर्व मैंने दिलीप कुमार जी की फिल्म यहूदी देखी। फिल्म में उनका अभिनय वाकई बेहतरीन था, उनकी रोमन वेशभूषा और भारी भरकम उर्दू संवादों की अदायगी लाजवाब थी। सबसे ख़ास बात यह थी कि उन्होंने अपनी आँखों और चेहरे के हाव भाव से प्यार, तड़प और लाचारी के दर्द को जिस तरह बयां किया वो सीधे दिल को छू जाता है। इसे देख कर ही महसूस होता है कि क्यों उन्हें आज भी सर्वश्रेष्ठ उनका अभिनय कहा जाता है। चलिए अब हम अगला गीत सुनवाते हैं, बैराग फिल्म का गाना, मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले की आवाज़ें, आनंद बख्शी के बोल, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। दिलीप कुमार के साथ अभिनेत्री कौन है ये आप बताइए।

इश्क करता हूँ आशिक मेरा नाम है, ऐश करना मेरी

बैराग फिल्म का गाना आपने सुना। हमारे साथियों ने लिखा है कि इस गाने में अभिनेत्री है लीना चंदावरकर और अन्य अभिनेत्री है सायरा बानो। एक साथी लिख रहे हैं कि मैंने बचपन में हमारे पड़ोस में ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न पर पहली हिंदी फिल्म देखी थी, वो दिलीप कुमार की थी और वो फिल्म थी गोपी, जो इन्हें बहुत पसंद आई। और एक हमारे साथी ये बात लिख रहे हैं कि दिलीप कुमार जी ने अलग अलग प्रकार के अभिनय जैसे देशभक्त, प्रेमी, जेलर, कुल 57 फिल्मों में उन्होंने काम किया है। और एक साथी लिख रहे हैं कि सौदागर में राजकुमार और दिलीप कुमार के आमने सामने के कई दृश्य, उनकी आवाज़, संवाद आज भी याद किए जाते हैं, जैसे कि दुश्मनी जब तक निभाओ शान से निभाओ, लेकिन अगर दोस्ती करो तो उसे भी दिल से निभाओ। ये बात इन्होंने लिखी। एक साथी लिख रहे हैं कि वे आँखों से अभिनय किया करते थे, इसका सबसे अच्छा उदाहरण राम और श्याम का दिया जा सकता है। प्राण साहब के हाथ में हंटर होता है और विरोध में दिलीप साहब का सिर्फ चेहरे का क्लोजअप दिखाया जाता है, वहाँ सिर्फ उनकी आंखें बोल रही है, आंखों से गुस्सा, बदला और चिढ़ का अनोखा अभिनय वहाँ देखने को मिलता। यूं ही नहीं उन्हें बादशाह कहा जाता है अभिनय का। चलिए अब हम आपको संघर्ष फिल्म का गाना सुनवाते हैं। आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की, शकील बदायूनी के बोल, संगीत नौशाद का।

एक साथी ने लिखा है कि फिल्म संघर्ष का ये जो गीत है, दिलरुबा मैंने तेरे प्यार में क्या क्या नहीं किया और जब दिल से दिल टकराता, ये दोनों गाने अपनी नायिका को जुनून की हद तक प्यार करना, मुझे नायक का ये किरदार बहुत पसंद आया था। एक साथी लिख रहे हैं कि बैराग का यह गीत, जिसके संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी, इसमें दिलीप कुमार जी ने पहली बार तिहरी भूमिका निभाई थी, मेरी लिस्ट का ये पाँचवा गीत था जो आपने शामिल कर लिया है। और एक साथी लिख रहे हैं कि वो नायाब कलाकार हैं, हम सब के चहेते दिलीप कुमार साहब, यूं तो उनकी हर फिल्में और हर सीन याद रह जाता है मुझे। एक सीन का जिक्र करना चाहूंगा, मुंबई में रात के सन्नाटे में सड़क पर वे अपनी धर्म पत्नी, जो इसमें जो कलाकार हैं वो वहीदा रहमान हैं, उनके साथ जा रहे होते हैं। अचानक वहीदा जी के पेट में दर्द होने लगता है और वह तड़पने लगती हैं। उस समय दिलीप साहब मदद के लिए गुहार लगाते हैं और इक्का दुक्का कार वाले उनकी परवाह के बिना निकल जाते हैं। अरे कोई मदद करो, मर रही है बेचारी, बदहवास होकर वे सड़क पर मदद मांगते हैं, लेकिन व्यस्त शहर के लोग उनकी ओर ध्यान नहीं देते और अंत में वहीदा जी वहीं पर दम तोड़ देती। ये सीन आज भी मुझे याद आता है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दिलीप साहब को मैं सलाम करता हूँ। चलिए, धन्यवाद आपका। लीडर फिल्म का गाना आइए अब सुनते हैं।

लीडर फिल्म का ये गाना था। एक साथी लिखते हैं कि कर्मा फिल्म में जब दिलीप साहब देशद्रोही बने अनुपम खेर को थप्पड़ मारते हैं, वो दृश्य इतना प्रभावित करता है कि मैं थिएटर में कुर्सी छोड़कर उठ खड़ा हो गया था। एक साथी लिख रहे हैं कि वैसे तो उनका हर किरदार लाजवाब होता था, लेकिन फिल्म देवदास का किरदार मुझे बेहद पसंद है। दिलीप साहब के बाद कोई देवदास न बन सका, क्योंकि उन्होंने वो किरदार निभाया नहीं था बल्कि जिया था। किरदार तो बहुत अभिनेता निभा लेते हैं, लेकिन किरदार को जी लेना उनसे सीखना चाहिए। एक साथी ये लिख रहे हैं कि हिंदी सिनेमा का इतिहास लिखे और दिलीप कुमार का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्हें ट्रेजेडी किंग कहा गया, पर यह उपाधि उनके अभिनय को एक फ्रेम में बांध नहीं पाती। उनका अभिनय दर्द तक सीमित नहीं था, वो हर किरदार में इंसान की पूरी जिंदगी जी लेते थे। वो संवाद से पहले आँखों से बात करते थे, चीखना चिल्लाना नहीं, गाल पर एक आंसू और टूटी हुई सांस, यही उनका ट्रेजिक फॉर्मूला था। संक्षेप में कहें तो दिलीप कुमार ने हमें सिखाया कि असली अभिनय शोर में नहीं सन्नाटे में होता है। एक निगाह, एक रुकी हुई सांस और सहज अंदाज में बोला गया संवाद, बस इतने में वो उस किरदार की पूरी जिंदगी पर्दे पर जी जाते थे। धन्यवाद आपका। चलिए आज़ाद फिल्म का गाना आपको सुनवाते हैं। लता मंगेशकर के साथ एक और जो आवाज़ है वो किसकी है वो बताइए हमें, और दिलीप कुमार के साथ अभिनेत्री कौन है ये भी बताइए।

आज़ाद फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर के साथ, जो आवाज़ है वो चितलकर यानी कि सी रामचंद्र की है और अभिनेत्री हैं मीना कुमारी। एक साथी लिख रहे हैं कि हिंदी सिनेमा के एक ऐसे युग पुरुष जिन्होंने पर्दे पर आम इंसान के संघर्ष और स्वाभिमान को जीवंत किया। उनका बुलंद व्यक्तित्व और चुंबकीय अभिनय दर्शकों को सम्मोहन में बांध लेता था। उन्होंने एंग्री यंग मैन बनकर समाज की विसंगतियों पर प्रहार किया तो अपनी भावुक भूमिकाओं से हर आँख नम भी की। संवाद अदायगी के वो बेताज बादशाह जिनकी मखमली आवाज़ आज भी दिलों को छूती है। चलिए अगला गाना दिल दिया दर्द लिया, इस फिल्म का ये गाना है और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़, शकील बदायूनी के बोल, नौशाद का संगीत, दिलीप कुमार के साथ जो अभिनेत्री हैं वो है वहीदा रहमान।

सचमुच गीत में सागर की गहराइयाँ नज़र भी आती है और कानों में वो महसूस भी करवाती है। चलिए, एक हमारे साथी की बात की, फिल्म अमर, महबूब खान दिलीप कुमार ने एक ऐसे नैतिक रूप से भ्रष्ट नायक का किरदार निभाया है, दर्शकों को हैरान और असहज कर देता है। उनका ये अभिनय बहुत साहसी था, क्योंकि उस दौर के सिनेमा में हीरो को हमेशा आदर्श पुरुष महान माना जाता था। फिल्म का नायक पढ़ा लिखा संभ्रांत परिवार का गलत कर बैठता है, जिससे उसकी चरित्र की का नैतिक पतन होता है। उस पश्चाताप को बेहद गहराई और संवेदनशीलता के साथ पर्दे पर उतारा है। उस समय एक नायक को खलनायक के रूप में पर्दे पर उतारना हिंदी फिल्म का एक दुर्लभ प्रयोग था। दिलीप कुमार जैसे

सुपरस्टार ने एक नकारात्मक कृत्य करने वाले व्यक्ति की भूमिका चुनी। अपनी सूक्ष्म भाव भंगिमाओं से अमर के नायक ने दर्शकों को मजबूर किया कि वे उस चरित्र के पछतावे और अंतर्मन के संघर्ष को समझ सके। धन्यवाद। अगला गाना यहूदी फिल्म से, मुकेश की आवाज़।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं। ये गीत शायद हम आपको पूरा ना सुनवा पाए, लेकिन गीत की झलक तो आपको सुनवा ही सकते हैं। आदमी फिल्म का गाना, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, शकील बदायूनी के बोल, संगीत नौशाद का।

0: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
1: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
2: प्रत्येक बुधवार सुबह 9:15 पर सुनिए कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ। प्रायोजक हैं लेजर चिकित्सा में अग्रणी नाम आनंद आई हॉस्पिटल जयपुर।
3: 9772097720।
4: प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे सुनिए जयमाला। प्रायोजक हैं देव दर्शन ओवरसीज़।

राहें चाहे पुरानी हो जाए, लेकिन दिलीप कुमार जैसे जो कलाकार होते हैं उन्हें हम आवाज़ कैसे न दें, ये तो संभव ही नहीं है। हर युग में, हर पीढ़ी में ऐसे कलाकारों को याद किया जाता रहेगा। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरी यानी मंजू द्विवेदी के साथ। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।

श्रोताओं नमस्कार। आज त्रिवेणी में बातें होंगी नाम पर। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। समय के साथ लोगों के नाम, चेहरे और बाहरी पहचान धुंधली पड़ जाती है। आज जो व्यक्ति प्रसिद्ध है, हो सकता है आने वाली पीढ़ियां उनका नाम भी ना जाने, लेकिन उनके द्वारा किए गए अच्छे कार्य, उनके विचार और उनकी मधुर वाणी लोगों के मन में लंबे समय तक जीवित रहते हैं। मनुष्य अपने जीवन में नाम, यश और प्रसिद्धि पाने के लिए बहुत प्रयास करते हैं। वो चाहते हैं कि लोग उन्हें पहचाने, उनकी प्रशंसा करें, लेकिन समय की धूल बड़े बड़े नामों को भी ढक देती है। कई ऐसे लोग हुए जिनके नाम भले ही कम लोग जानते हों, लेकिन उनके कार्य आज भी समाज को प्रेरणा देते हैं। सुंदर चेहरा और बाहरी आकर्षण स्थायी नहीं होते। उम्र के साथ चेहरा बदल जाता है, लेकिन व्यक्ति का चरित्र, उसका व्यवहार और उसकी अच्छाई लोगों के हृदय में अमिट छाप छोड़ जाती है। इसलिए हमें अपने व्यक्तित्व को सुंदर बनाने पर अधिक ध्यान देना नहीं चाहिए। केवल बाहरी रूप को संवारने पर हमें ध्यान देना नहीं।

जब कोई व्यक्ति बार बार किसी का नाम लेता है तो वो नाम उसके लिए मात्र एक संबोधन नहीं रह जाता, बल्कि उसकी भावनाओं, स्मृतियों और अनुभूतियों का केंद्र बन जाता है। सांसारिक जीवन में भी किसी प्रिय व्यक्ति का नाम मन में बार बार आना स्वाभाविक है। जब कोई व्यक्ति हमारे हृदय के बहुत निकट होता है तो उसका नाम हमारी सोच, हमारी बातों और हमारी यादों में बार बार उभरता है। ये प्रेम और आत्मीयता का प्रतीक हो सकता है। हालांकि जीवन का संतुलन बनाए रखना भी आवश्यक है, ताकि किसी एक व्यक्ति या भावना में इतना ना डूब जाए कि अपने कर्तव्यों और उद्देश्यों को भूल जाए। वास्तव में किसी का नाम जपते रहना उस व्यक्ति के प्रति सम्मान, स्नेह, श्रद्धा या प्रेम का संकेत हो सकता है।

हर माता पिता का सपना होता है कि उनकी संतान जीवन में कुछ ऐसा करे जिससे उनका सर गर्व से ऊंचा हो जाए। जब कोई बच्चा मेहनत, ईमानदारी और लगन के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है, तब लोग उसके साथ साथ उसके परिवार की भी प्रशंसा करते हैं। नाम रोशन करना केवल बड़े पद या धन प्राप्त करने से नहीं होता है। एक अच्छा इंसान बनकर, दूसरों की सहायता करके, सत्य और नैतिकता के मार्ग पर चलकर भी व्यक्ति अपने परिवार और समाज का नाम उज्जवल कर सकता है। इतिहास में अनेक महान व्यक्तियों ने अपने कर्मों से अपने माता पिता और देश का नाम रोशन किया है।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्ण ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डोरन कप टूर्नामेंट 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। और दक्षिण पश्चिम मानसून अगले 3 दिन में गुजरात, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। दोनों नेताओं की उपस्थिति में आपसी हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी प्रगति के नए चरण में प्रवेश कर रही है।
1: 2018 में बनी हमारी कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप आज एक नई उड़ान ले रही है। हम डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, कल्चर और एजुकेशन हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम बढ़ा रहे हैं। मुझे विश्वास है आज से भारत इंडोनेशिया साझेदारी का एक सुनहरा अध्याय शुरू होगा और इस सुनहरे अध्याय का बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव 21वीं सदी की दुनिया पर होगा, पूरी मानवता पर होगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बढ़ते आपसी विश्वास ने रक्षा, सुरक्षा और समुद्री क्षेत्र में सहयोग को मजबूत किया है और दोनों देश रक्षा, आपदा प्रबंधन तथा औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं।
1: हमारे देशों के बीच बढ़ता विश्वास हमारी रक्षा, सुरक्षा और मैरिटाइम सहयोग को मजबूत कर रहा है। आज हमने डिफेंस एक्सचेंज, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनाई। अब हम दोनों देशों के कोस्ट गार्ड हिंद महासागर में मैरिटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए

0: हमारे संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति है। हमें बहुत खुशी है कि भारत की यूपीआई इंडोनेशिया के पेमेंट सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होने जा रही है। इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ ट्रैवल दोनों को ही बल मिलेगा।
1: श्री मोदी ने कहा कि वे कल योग्यकार्ता में राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ 1000 साल से अधिक पुराने प्रम्बानन मंदिर की संरक्षण परियोजना का शुभारंभ करेंगे। उन्होंने इसे भारत और इंडोनेशिया की साझा सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने घोषणा की कि दोनों देश गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर की इंडोनेशिया की ऐतिहासिक यात्रा की शताब्दी को उत्साह के साथ मनाएंगे। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया।
0: मैं इस गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए प्रेसिडेंट प्राबोवो को उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और आज इंडोनेशिया की यात्रा करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज सुबह मुझे आदर के साथ इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये सम्मान कोटि कोटि भारतवासियों का है, इंडोनेशिया के लोगों की भावनाओं का है।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर बधाई दी है।
2: रक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि ये असाधारण सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व, परिवर्तनकारी राजनीतिज्ञता और आपसी विश्वास, सम्मान और साझा प्रगति पर आधारित वैश्विक साझेदारियों को मजबूत करते हुए भारत के राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने की उनकी अटूट प्रतिबद्धता की एक सशक्त मान्यता है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि ये सम्मान सभी भारतीयों के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि ये सम्मान भारत की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करने और भारत आसियान संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री मोदी के निरंतर प्रयासों का प्रमाण है। शिक्षा मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये देश के लिए गर्व का क्षण है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये प्रतिष्ठित सम्मान भारत इंडोनेशिया साझेदारी को और मजबूत करता है। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात उच्च न्यायालय ने 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोटों के मामले में आज विशेष न्यायालय के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें 38 दोषियों को मौत की सजा और 11 अन्य को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। न्यायमूर्ति एवाई कोगजे और न्यायमूर्ति समीर दवे की खंडपीठ ने निचली अदालत के आदेश के खिलाफ सभी अपीलें खारिज कर दी और मामले में आतंकी संगठन इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को दी गई सजा को बरकरार हुए अपने फैसले को सही ठहराया। 26 जुलाई 2008 को अहमदाबाद में 70 मिनट के भीतर लगातार हुए 21 बम धमाकों में 56 लोग मारे गए थे और 200 अन्य घायल हुए थे। प्रवर्तन निदेशालय ने तृणमूल कांग्रेस के बैंक खातों में संदिग्ध धनराशि के हेरफेर और अनियमित वित्तीय लेनदेन के मामले में आज कोलकाता और उसके आसपास के 5 परिसरों पर छापेमारी की। निदेशालय की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि 150 करोड़ रुपए से अधिक की भारी धनराशि संदिग्ध उद्देश्यों के लिए विमानन और यात्रा कंपनियों के माध्यम से भेजी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में 2026 डोरन कप टूर्नामेंट की ट्रॉफियों का अनावरण किया। राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने उनसे खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करके इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता की प्रतिष्ठा को और बढ़ाने का आग्रह किया।
3: फुटबॉल विश्व के सबसे लोकप्रिय खेल में से एक है। ये खेल उत्कृष्टता, एकता और खेल भावना का एक अनुपम उदाहरण है। फुटबॉल लोगों को एक दूसरे से जोड़ता है। खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है।
1: गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में हरियाली

0: बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत आज 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। श्री शाह ने कहा कि रिज के लगभग 5000 हेक्टेयर क्षेत्र को अब औपचारिक रूप से वन भूमि घोषित कर दिया गया है।
1: 6300 हेक्टेयर हरित रिज दिल्ली का फेफड़ा बनकर दिल्ली के पर्यावरण की सुरक्षा करेगी। 1 करोड़ से अधिक देसी पौधे, 35 लाख से ज्यादा बड़े बड़े वृक्ष के पौधे और 65 लाख अन्य झाड़ियां, बांस और औषधीय रोपे लगाने का काम होगा।
0: सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि 14 किलोमीटर लंबी जोजीला सुरंग, जम्मू श्रीनगर कॉरिडोर पर 36 सुरंगें, केदारनाथ रोपवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी प्रमुख परियोजनाएं कनेक्टिविटी को मजबूत कर रही हैं और देश के विकास को गति दे रही हैं। नई दिल्ली में आयोजित विकसित भारत सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय विकास के लिए ज्ञान, नवाचार और साक्ष्य आधारित नीति निर्माण के केंद्र के रूप में जनजातीय अनुसंधान संस्थानों को मजबूत करने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। भुवनेश्वर में आज 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराम ने जनजातीय विरासत को संरक्षित करने और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी ज्ञान को अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ एकीकृत करने का आह्वान किया।
2: जनजाति समूह का सामूहिक विकास, ये नरेंद्र मोदी सरकार का लक्ष्य है। इसके कारण बहुत सारे बंधन केंद्र और उसके साथ साथ बहुत सारे रिसर्च कार्यक्रम हम कर रहे हैं और उसका क्रम में आज TRI ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इसका देश भर का 29 जगह से आके यहाँ योगदान दिया है और उनका काम आगे बढ़ रहा है। मेरा ख्याल से ये बहुत बढ़िया मैसेज होगा और जनजाति के लिए लाभ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर में बढ़ती राजनीतिक उथल पुथल के बीच जम्मू कश्मीर ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी ने पाकिस्तान सरकार को चेतावनी देते हुए 48 घंटे का समय दिया है। कमेटी ने कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 9 जुलाई को निर्णायक कार्रवाई की जाएगी। हजारों लोग कथित नाकाबंदी को समाप्त करने, संचार सेवाओं की बहाली, भोजन और दवाओं की निर्बाध आपूर्ति, गिरफ्तार नेताओं की रिहाई और 38 सूत्री लिखित समझौते के कार्यान्वयन की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद रोधी अधिनियम के तहत ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी पर प्रतिबंध लगाने के बाद से प्रदर्शन और तेज हो गए हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो करते हैं। ये आकाशवाणी है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 3 दिनों में उत्तरी अरब सागर, गुजरात, हरियाणा, पंजाब तथा राजस्थान में और आगे बढ़ेगा। तटीय कर्नाटक, गुजरात, कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में भी मध्यम से तेज वर्षा की संभावना है। महाराष्ट्र में मौसम विभाग ने कई जिलों, विशेष रूप से पालघर, ठाणे और पुणे तथा नासिक में बारिश के लिए चेतावनी जारी की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: पुणे जिले के घाट क्षेत्र, लोनावला, माहौल, तामिनी और भोर में लगातार तेज बारिश जारी है, जिससे नदियों और नाले उफान पर है। भूस्खलन और अचानक बाढ़ के खतरे को देखते हुए प्रशासन ने पर्यटकों से झरनों और पहाड़ों इलाकों में जाने से बचने की अपील की है। इस बीच मुंबई और पुणे के बीच सड़क संपर्क बहाल कर दिया गया है। नासिक के घाट क्षेत्र, जिनमें इगतपुरी और त्र्यंबकेश्वर शामिल है, में भी अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई है। मुंबई महानगर क्षेत्र में बारिश की तीव्रता में कुछ कमी आई है, हालांकि ठाणे और पालघर जिले के कुछ हिस्सों में अब भी भारी बारिश जारी है। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: उधर गुजरात में भी कई जगहों, खासकर सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्र में लगातार हो रही तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 मुकाबले में बेल्जियम ने अमेरिका को 4-1 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। एटलांटा में आज रात राउंड ऑफ 16 के एक अन्य मुकाबले में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना का सामना मिस्र से होगा। मैच भारतीय समयानुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। घरेलू शेयर बाजार दोपहर के सत्र के दौरान सपाट कारोबार कर रहे थे। सेंसेक्स 46 अंक बढ़कर 78,331 पर, जबकि निफ्टी भी लगभग 10 अंक बढ़कर 24,440 पर पहुंच गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण खनिजों, तकनीकी, कृषि और समुद्री सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में समझौतों ज्ञापनों का आदान प्रदान हुआ। प्रधानमंत्री मोदी को जकार्ता में इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित किया गया। गुजरात उच्च न्यायालय ने वर्ष 2008 के अहमदाबाद सिलसिलेवार बम विस्फोट मामले में 38 दोषियों की मौत और 11 की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का पहला गीत है मियां बीवी राजी। इस फिल्म का गाना सुमन कल्याणपुर की आवाज़ में, शैलेंद्र के बोल, संगीत है एसडी बर्मन का।

0: एक नई खुशी।
1: जेडीएल आया है भूखंडों की ई नीलामी,
2: जिसमें आनंद विहार, अभिनव विहार, यश विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मुझ विहार, हरित विहार, यमुना विहार, अनुपम विहार, आनंद लोक, बीलवा, बूथल, वसंत कुंज, गोल्डन रेजिडेंसी, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, सरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, अनिरुद्ध एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, मनोहरपुरा, रामचंद्रपुरा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडरपास, ट्रांसपोर्ट नगर, गोविंदपुरा, गर्दनी, आदिनाथ सरोवर, डेमिकला, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध हैं।
1: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।

जिस देश में गंगा बहती है, इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज़, शैलेंद्र का लिखा हुआ गाना, संगीत है शंकर जयकिशन का।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं बहुरानी फिल्म का गाना। लता मंगेशकर की आवाज़ है, गीतकार साहिल लुधियानवी, संगीतकार सी रामचंद्र।

मजरू सुल्तानपुरी का लिखा और चित्रगुप्त का संगीतबद्ध किया ये गाना मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, फिल्म का नाम ऊंचे लोग।

0: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
1: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अब आपके लिए लेकर आए हैं सारंगा फिल्म का गाना, लता मंगेशकर और साथियों की आवाजें, भरत व्यास का लिखा हुआ गाना, संगीत है सरदार मलिक का।

लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज़ों में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं राजेंद्र कृष्ण का लिखा हुआ गाना, सलील चौधरी का संगीत, फिल्म का नाम छाया।

लीजिए अब सुनिए नवरंग फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में। इस गीत को लिखा भरत व्यास ने, धुन बनाई सी रामचंद्र ने।

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 11 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं, स्वर्ण सुंदरी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर की आवाज, भरत व्यास के बोल, आदि नारायण राव का संगीत है।

0: अब आज का सदाबहार नगमे प्रोग्राम खत्म होता है। आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। सखी सहेली कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं देवदर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक, कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: की सहेली।
1: सभी सखियों सहेलियों और सखाओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दीपा जी आपको भी हमारा नमस्कार।
2: ममता जी आपको और हमारे सभी सुनने वाली सखियों सहेलियों और श्रोता भाइयों को दीपा माहेश्वरी का हेल्दी नमस्कार।
1: हेल्दी नमस्कार। क्या हाल है भाई? हेल्दी से तो ये बात कहना जरूरी है कि सब लोग हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, सानंद रहें।
2: जी जी। और ऐसा होता है ना ममता जी, किसी एक को भी ये बात सुनकर अगर ऐसा लगता है, थोड़ा भी अगर वो इंस्पायर होते हैं या उनको प्रेरणा मिलती है कि हाँ हमें अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए, तो ये हेल्दी नमस्कार कहना कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप ले लेता है।
1: बिल्कुल सही बात है। अगर एक नहीं बहुत लोगों तक हमारी बातें पहुंचती हैं, करोड़ों श्रोता हमारी बात सुनते हैं और बहुत सारे श्रोता लाभान्वित भी होते हैं। अब देखिए ना, बरसात का मौसम है और बरसात के मौसम में सभी बरखा रानी की बूंदों का आनंद लेते हैं, भीगने का आनंद लेते हैं, छतरियों का आनंद लेते हैं, लेकिन जो उसके खामियां हैं उस पर लोग कम ही ध्यान देते हैं कि बरसात आपके लिए खुशी तो लेकर आती है, फायदे लेकर आती है, लेकिन मुसीबतें भी लेकर आती है। और इन मुसीबतों के साथ, उन मुसीबतों पर किसी का ध्यान नहीं जाता। बहुत सारे लोग, खास तौर से युवा वर्ग, बारिश जब होती है तो बस हाथ में मोबाइल उठाया और रीलें बनाना शुरू और सोशल मीडिया पर पोस्ट करना शुरू हो जाता है।
2: बिल्कुल।
1: और कई बार वो इसके पीछे छिपे खतरे को भूल जाते हैं, जैसे नदी के किनारे गए हैं, समंदर के किनारे गए, पहाड़ों पर
2: या
1: झरनों के पास,
2: डैम के पास चले जाते हैं, फिर एक तेज कहीं पे
1: लहर आती है,
2: लपट आती है, लहर आती है, वो वीडियो बन जाता है, वो रील जो है हर जगह,
1: वो रील मोबाइल सहित पानी में चला जाता है और खुद भी पानी के अंदर चले जाते हैं और घर वाले रोते रह जाते हैं, जिंदगी भर महसूसते रह जाते हैं मन कि भाई हमारी संतान चली गई। तो बारिश का आनंद ले, रील बनाने का आनंद ले, लेकिन उनके पीछे छिपे खतरों पर भी गौर करें। और ये रील बनाने की जो आदत है, रीलों से प्रसिद्धि पाने की जो आदत है, ये कई बार आपको मुश्किल में भी डाल देती है।
2: बिल्कुल, मुश्किल में भी डाल देती है, जान से भी कभी कभी हाथ गंवाना पड़ जाता है। कई लोगों का हमने देखा है, सुना, जाना है, अलग अलग जगहों से पता चला है।
1: लाइक, कमेंट, आपने रील डाली और हमने लाइक किया, अरे तुमने मेरे लाइक नहीं किया।
2: जी, इस तरह के झगड़े भी हो जाते हैं और सारा ध्यान फिर अपना दूसरे सब कामों को छोड़ करके अपने हैंडसेट पे चला जाता है कि इसका लाइक आया या नहीं, फलाने ने उसको सब्सक्राइब किया है या नहीं, किसी ने कुछ कमेंट लिखा है या नहीं, तो सारा ध्यान हमारा बस एकत्रित हो जाता है उस रील से संबंधित कमेंट्स आ रहे हैं या नहीं।
1: कितना चला जाता है दीपा जी, आपने ये नोटिस किया है, बहुत सारे लोगों को हमने देखा है कि पूरे पूरे दिन जब तक वो जागते रहते तब तक मोबाइल में ये देखते रहते हैं या पोस्ट करते रहते हैं, पोस्टें देखते रहते हैं, लाइक कमेंट। तो ये जो ये जुनून है, एक तरह का जुनून है लोगों में और जुनून कई बार बीमारी का रूप ले लेता है। और आज हम इस मुद्दे पर चर्चा भी करेंगे, हमारे श्रोताओं की बहुत सारी टिप्पणियां भी आ रही हैं। तो आज हमने श्रोताओं को ये विषय दिया है, वायरल होने का जुनून, तो उनके क्या अनुभव हैं वो जरा बताएं कि अड़ोस पड़ोस बाल बच्चे जो इसके शिकार हैं।
2: कुछ आए हैं संदेश ममता जी, लेकिन हम चाहते हैं वो और अपने अनुभव या अपने आस, जैसे आपने कहा आस पड़ोस का कहीं देखा है, कुछ जाना है।
1: मैं तो डर गई दीपा जी कि आपने कहा अभी कि आज हमने भी एक पोस्ट की है और लाइक कमेंट देख रही थी भाई यहाँ हम लोग ना उलझ जाएं।
2: नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी बात नहीं है। लोगों ने अपनी राय दी है, अपनी बातें बताई हैं और क्या वो इस चीज को लेकर के उनके विचार हैं ये भी आए हैं। हम चाहते हैं लेकिन कुछ और भी बातें वो
1: देख तो रहे हैं हम भी।
2: जी,
1: लाइक कमेंट देख रहे हैं कि हमारे श्रोताओं की कितनी सारी टिप्पणियां आई है। देखिए ना, इस समय 52 लोगों ने लाइक किया है और 112 कमेंट आ चुके हैं और 2 लोगों ने शेयर किए हैं, लेकिन हम इसके मतलब इसके फेर में नहीं पड़ते।

0: सहायता प्राप्त करने में कठिनाई होती थी
1: जी। और उन्हें ये विश्वास था कि यदि कोई व्यक्ति सही समय पर आर्थिक उन्हें अगर आर्थिक सहयोग मिल जाता है तो केवल अपना जीवन ही नहीं बल्कि और भी कई लोगों का भविष्य भी बदल सकता है। और उनके नेतृत्व में किनारा कैपिटल जो उनकी कंपनी है आधुनिक तकनीक और मानवीय संवेदनाओं का सुंदर समन्वय स्थापित करता है। संस्थाओं ने हजारों छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता देकर उनके सपनों को एक नई उड़ान दी है।
0: तो ये हम सबके लिए प्रेरणा की बात है। फिलहाल यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं छोटा सा
1: जी।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती पर यह है कार्यक्रम सखी सहेली
2: जी। और अपनी कंपनी जो हम बात कर रहे थे हार्दिका शाह के बारे में, उनकी कंपनी के हर विकास कार्यक्रम के माध्यम से वो महिला उद्यमियों को सशक्त बना रही हैं, वो जो कंपनी के सीआरओ सीएसआर कार्यक्रम के माध्यम से महिला सूक्ष्म उद्यमियों को सहयोग देने के लिए बहुत प्रतिबद्ध है। उनका संघर्ष, दूरदर्शिता, समाज के प्रति समर्पण आज के युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे इस विश्वास की एक जीवंत मिसाल हैं कि दृढ़ संकल्प, अथक परिश्रम और सेवा भाव से असंभव भी हम संभव कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है। तो ये अपने जहन में ज़रूर रखें, जब भी किसी काम की शुरुआत करें तो ये जहन में रखें कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं
2: जी।
0: तो काम सफल होता है। अब दीपा जी देखिए ना, हमने कार्यक्रम की शुरुआत में जो गाना सुनवाया था वो सजना बरखा बाहर आई फिल्म परख का, और उस पर एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि गाना इतना अच्छा लग रहा है कि इस गीत को सुनता हूँ तो मुझे वो दिन और समय याद आ जाता है। हुआ यूं कि गांव के तालाब में नहा कर आया था, ये आजकल के बरसात के दिन थे। वहां तालाब पर मैंने पपीहे को भी देखा था और घर आया तो ताऊ जी के रेडियो पर यही गीत बज रहा था तो मुझे वो दिन समय ये गीत याद आ गया। तो देखिए ना, रेडियो से बजते हुए गाने हमें कहां कहां पहुंचा देते हैं।
2: बिल्कुल। और हर एक के जीवन में जो रेडियो का प्रेमी है, कहीं ना कहीं किसी न किसी गीत के साथ कोई याद तो उनकी जुड़ी ही है।
0: तो चलिए फिर बात गाने की है, सुन लेते हैं गाना।
2: चलिए

0: ममता जी, आज का समय कुछ ऐसा हो गया है ना कि प्रसिद्धि पाने की लालसा हर एक के मन में कुछ हावी सी होने लगी।
1: बिल्कुल सही कह रही हैं आप।
0: और कई बार ऐसा भी होता है कि वो सही या गलत का फर्क उस चक्कर में भूल जाते हैं कई लोग, है ना।
1: और आजकल सोशल मीडिया पर लाइक, कमेंट्स और फॉलोअर्स की संख्या अब कई लोगों के लिए आत्मसंतुष्टि का पैमाना बन गई है।
0: जी बिल्कुल।
1: कितने फॉलोअर्स हैं, कितने बढ़े, कितने नए घटे, ये भी देखते रहते हैं। अरे घट गए तो लोग तनाव में आ जाते हैं कि अरे बाप रे अब क्या करें। और दूसरी ओर वायरल पोस्ट लोगों को और अधिक लोकप्रियता की चाह में लगातार नए प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर रही है। कई बार ऐसी बातें सिर्फ प्रसिद्धि पाने के लिए फैला दी जाती हैं जो ठीक नहीं होती हैं, सोशल मीडिया पर वो भी वायरल हो जाती हैं। वायरल से मतलब प्रसिद्धि है,
0: प्रसिद्धी
1: और
0: है, जी।
1: कुछ चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए उसे भी लोग अपनी प्रसिद्धि के तहत वायरल कर देते
0: बिल्कुल।
1: हैं।
0: बिल्कुल। और एक कोई पोस्ट अगर डाली और उस पोस्ट पर अगर उन्हें वो एक अपेक्षित प्रतिक्रिया नहीं मिलती तो निराशा बढ़ने लग जाती है, तनाव बढ़ने लग जाता है। किसी ने अगर जवाब नहीं दिया आपके पोस्ट, आपने कोई पोस्ट डाली और उस पर अगर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो इंसान एकदम लगता है किसी ने कुछ देखा नहीं, हमारे मेरे बारे में कोई जानना नहीं चाहता या मेरे इस लिखी हुई चीज़ को कोई पढ़ना नहीं चाहता, ये क्या हो गया, क्यों हो गया। और दोस्तों को फ़ोन लगा के पूछ भी लेते हैं, ऐसा भी हो जाता है।
1: यहाँ तक हो गया है कि अभी कई लोगों को ये देखा जाता है कि लोग आधी रात को, आप देखिए आधी रात को भी लोग सक्रिय रहते हैं सोशल मीडिया पर, आप ऑनलाइन दिख जाते हैं, हरी बत्ती आपको दिखाई दे जाती है
0: जी, तो और पड़ जाता है।
1: रात को उठ के 2:30 बजे 3 बजे भी देखते हैं कि किसने हमारी पोस्ट को लाइक किया, किसने कमेंट किया और किसने दिल का साइन लगाया।
0: हाँ,
1: वो भी अब एक अलग पैमाना बन गया है कि अरे उसने तो सिर्फ लाइक करके छोड़ दिया, दिल का साइन नहीं लगाया। और अब लाइक करने के बाद जो कमेंट्स करते हैं, कमेंट्स करने वाले ये भी उम्मीद करते हैं कि उनके कमेंट्स को भी लाइक किया जाए, फिर वो ये भी कहते हैं कि हमारे कमेंट्स को लाइक आपने नहीं किया, तो कमेंट्स को भी लाइक करने की एक प्रथा चल पड़ी है। तो इस प्रवृत्ति का सबसे चिंताजनक पहलू ये है कि कई लोग समाज कानून और अपनी सुरक्षा की अनदेखी कर बैठते हैं। सड़क पर स्टंट, सार्वजनिक स्थानों पर अनुचित हरकतें और केवल ध्यान आकर्षित करने के लिए बनाई गई भ्रामक सामग्री डाल देते हैं, पोस्ट कर देते हैं। इससे न केवल व्यक्ति स्वयं जोखिम में पड़ता है बल्कि दूसरों की सुरक्षा भी प्रभावित हो सकती है।
0: कई बार सड़कों पे आप देखते हैं कि युवक युवती बैठे हैं बाइक पर और बहुत तेजी से गाड़ी चला रहे हैं, और हमने ये देखा कि पीछे जो महिला बैठी है वो फोन हाथ में लिए हुए है और आगे बाइक की तरफ से कुछ इस तरह से वो कैमरा का सेटिंग करते हैं फोन का कि वो चलती हुई गाड़ी नजर आए, बाइक नजर आए। तो ये खतरा दूसरों के लिए भी है, खुद के लिए सबसे ज़्यादा है। कब कहाँ बैलेंस बिगड़ सकता है इस बात की बिल्कुल चिंता नहीं होती। उन्हें ऐसा लगता है ये सड़क पर इस तरह के स्टंट करके इस तरह से कुछ अलग ही तरीके से वीडियो डालना, ये शायद हमें और किस पता नहीं किस प्रसिद्धि की किस पीढ़ी तक लेके जा सकता है।
1: तो दीपा जी, ये मुद्दा बहुत बड़ा है, इस पर चर्चा और करेंगे और श्रोताओं की टिप्पणियाँ भी बहुत सारी आ रही हैं। एक गाना सुन लेते हैं,
0: चलिए
1: फिर उसके बाद चर्चा करेंगे।

0: बेचारा दिल क्या करे भाई, लाइक कमेंट देखे तो ना देखे कैसे, बेचारा दिल क्या करे। दिल पर वश नहीं होता है इस मामले में कि लोग कितना भी खुद को समझा लें।
1: देखिए जी बिल्कुल, हम कितना भी समझा लें लेकिन हमारी भी नज़र जब कार्यक्रम रहता है ना, चलता रहा होता है ममता जी, तो हम ये देखते हैं कि और कितने कमेंट्स आए, और कितने कमेंट्स आए, ज़्यादा से ज़्यादा आएंगे तो अच्छे से अच्छे जो कमेंट्स अपने
0: श्रोताओं तक पहुँचा देंगे,
1: पहुँचाए हम।
0: लेकिन यहाँ पर उद्देश्य अलग है ना, लेकिन जो उद्देश्य गलत होता है अपनी प्रसिद्धि पाने का, वो एक अलग मुद्दा है। अब और बातें करेंगे, फिलहाल एक ब्रेक ले लेते हैं।
1: चलिए,
2: कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे देवदर्शन धूप अगरबत्ती, धूप स्टिक, कोन्स एवं हवन सामग्री।

0: विविध भारती से यह कार्यक्रम सखी सहेली और बातें हम कर रहे थे गाने से पहले और इस ब्रेक से पहले कि वायरल होने के जुनून में लोग न जाने क्या क्या करते हैं,
1: कम समय में प्रसिद्धि पाना चाहते हैं और चाहते हैं कि दुनिया भर में हमारा नाम हो जाए।
0: अब यही बात हमारे एक श्रोता ने भी लिखी है, देखिए इन्होंने लिखा है, आजकल वायरल होने की दौड़ में लोग कभी कभी ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ी पहचान कुछ पल की लोकप्रियता नहीं बल्कि अच्छे कर्म और अच्छा चरित्र है। जो चीज कुछ दिनों के लिए वायरल होती है वो समय के साथ भूल भी जाती है, लेकिन इंसान की अच्छाई, संवेदनशीलता और सादगी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहती है।
1: बिल्कुल सही कहा कि मेहनत, सादगी, सच्चाई यही हमेशा आगे तक चलती रहेगी। और एक और संदेश है, ममता जी ये कहते हैं कि आज के सोशल मीडिया के दौर में कई लोगों के लिए वायरल होना ही सफलता का पैमाना ये बन गया है। अधिक लाइक, व्यूज और फॉलोवर्स पाने की चाह में कुछ लोग ऐसे वीडियोज या पोस्ट बना देते हैं जो जोखिम भरे हो सकते हैं। ये जुनून कभी कभी उनकी पढ़ाई, काम, रिश्ते और मानसिक शांति पर भी असर डालते हैं। लोकप्रिय होना बुरा नहीं है, लेकिन उसके लिए जिम्मेदारी, सच्चाई, अच्छे मूल्यों का साथ नहीं छोड़ना चाहिए।
0: बिल्कुल सही बात है। और यहाँ तक हो गया है, ये एक तरह की ऐसी बीमारी बन गई है कि कई बार लोग बड़ी दुखद खबर पोस्ट करते हैं
1: जी।
0: वहाँ लोग जाकर हंसी का इमोजी लगा देते हैं भूल से
1: जी,
0: हड़बड़ी में, और ये देखना भी नहीं चाहते कि वो पोस्ट क्या है। कई बार लोग बिना पढ़े बिना जाने लाइक कर देते हैं कि फलाने की पोस्ट है तो यहाँ पे लाइक कर देते हैं, पता चलता है कि उससे आपकी सहमति नहीं असहमति थी
1: जी।
0: और किसी जो वो बंदा मुसीबत में है तो आप भी मुसीबत में फंस गए क्योंकि आपने उसे लाइक किया था। कई बार सोशल मीडिया पर ये चर्चा भी होती है, कुचर्चा भी होती है, कई विवादास्पद बातें उस पर पोस्ट होती हैं, कई जैसे संगीत के बारे में, साहित्य के बारे में कुछ ऐसी पोस्ट लिखी जाती है जहां आपकी सहमति है ही नहीं, लेकिन आप लाइक करके आगे बढ़ जाते हैं। बाद में पता चलता है कि ये बात तो आपको मुसीबत में डाल देते हैं।
1: और कई बार बड़े अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं, वो भी बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। उन्हें क्या लगता है, इस तरह का हम लिख करके हमारे ऊपर ज्यादा ध्यान लोगों का जाएगा, हम पर ज्यादा आकर्षित होंगे लोग, और इस तरीके से हम कुछ अलग सा लिख दें, अलग सा लिखने में वो समझ ही नहीं पाते कि भाषा हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं।
0: कुछ लोग ये भी करते हैं कि जो बात किसी ने कही नहीं उसे अपने नाम पर पोस्ट करते हैं,
1: हाँ, ये बात
0: कि फलाने ने हमें ऐसा कहा और इतना बुरा भला कहा, मेरी निंदा की और हम तो हमेशा कटघरे में खड़े होते हैं, जबकि किसी ने कोई चर्चा ही नहीं की है। तो ये भी एक तरीका है लाइक कमेंट पाने का, लोग इस्तेमाल करते हैं। हालांकि यहाँ पर कुछ सकारात्मक पहलू भी है, जब सोशल मीडिया का ज़माना नहीं था तो जैसे कुछ अगर हम पढ़ने लिखने की बात करें, साहित्य की बात करें, संगीत की बात करें, तो किताबें जो छपा करती थी, प्रकाशित होती थी, तो अखबार पत्रिकाएं उसका माध्यम थी जानने के लिए
1: जी।
0: और उसके माध्यम से लोग जानते थे और चर्चा होती थी उन किताबों की। लेकिन अब ये आसान हो गया है कि अगर मान लीजिए किसी की चर्चित किताब है और अच्छी उत्कृष्ट किताब है तो आप जल्दी से सोशल मीडिया के माध्यम से, लाइक कमेंट्स के माध्यम से जान लेते हैं कि हाँ ये किताब चर्चित है तो चलो हम भी खरीद लेते हैं, पढ़ लेते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा। तो अगर कहीं पे बुराई है तो अच्छाई भी है, तो हमारे लिए तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छी बातों को अपना करके उसमें आगे बढ़ें और जो नकारात्मक पक्ष है उस तक ना पहुंचे और ना ही लोगों को उसके लिए, उस तरफ जाने के लिए प्रेरित करें। एक और संदेश आया, वो हम यहाँ पढ़ना चाहेंगे। ये कहते हैं, वायरल होने का जुनून जो कि एक वायरस का ही प्रकार है, जैसे वायरल बीमारियां फैलती हैं उसी तरह सोशल मीडिया रूपी शक्तिशाली ये जो वायरस है उसके कई लोग शिकार हो रहे हैं। अपनी खास पहचान बनाने के चक्कर में, उस चक्कर में जब बाहर नहीं निकल सकते तब खुद की गरिमा को काफी नुकसान पहुंचा सकते हैं लोग, इस तरह का इनका ये कहना है।
0: जी बिल्कुल। तो वायरल होने के कुछ नुकसान ज़्यादा हैं और फ़ायदे कम हैं, तो जो फ़ायदे वाला हिस्सा है उसे ग्रहण कर लें, नुकसान वाला, जब वायरल होना आप जुनून बन जाता है, पैशन बन जाता है, वो नुकसानदेह होता है, और क्योंकि वो जुनून एक बीमारी का रूप ले रही है और ये हर वर्ग के लोगों में, ऐसा नहीं कि युवा वर्ग को हम कहते रहते हैं कि अगली पीढ़ी एडिक्शन की शिकार है, लेकिन हमने देखा है कि बड़े बुजुर्ग भी उसमें शामिल हैं। अभी जो हमारे घरों में दादी, नानी और चाची, जिन्हें बिल्कुल मोबाइल का इस्तेमाल नहीं आता था, वो अपने बच्चों से अपने नाती पोतों से सीख कर बाकायदा अपनी रील पोस्ट करते हैं
1: जी।
0: और कुछ लोग अपना डांस
1: तो
0: का
1: लोकप्रिय भी हो रहे हैं
0: डांस का वीडियो
1: जी।
0: ये दिखाते हैं कि हमें देखो, हम इतनी उम्र में डांस करने में सक्षम हैं। और कोई गाना गा के पोस्ट कर रहा है, कोई अपनी कविताएं पढ़ रहा है, कोई कहानी का टुकड़ा, कहानी का हिस्सा पढ़ के पोस्ट कर रहा है, मतलब कोई नई तो रेसिपी बता रहा है और किचन के टिप्स बता रहा है, योगा के बारे में, ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में,
1: बहुत सारे,
0: मतलब मुझे तो लगता है कि दुनिया का कोई हिस्सा बाकी नहीं, कोई ऐसी बात नहीं बाकी, कोई ऐसा विषय नहीं है जो वायरल नहीं है सोशल मीडिया,
1: सोशल मीडिया पर नहीं आया है। और जिसको जिसमें हुनर हासिल है ना, वो उसी कला को चाहता है कि अब दुनिया तक पहुंचा, और उनके लिए सबसे आसान तरीका है सोशल मीडिया का इस्तेमाल।
0: और इसमें नुकसान क्या है कि कई बार जो नुस्खे बताए जाते हैं कि सुबह सुबह उठ के ये बीज खा लो, ये पानी पी लो तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, फिर कई लोग ये बताते हैं कि फला एक्सरसाइज, उंगली, पांचों उंगलियों को उस पर प्रेशर डालो तो आपके सिर दर्द ठीक हो जाता है, ये करो तो पेट दर्द ठीक हो जाता है। इससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, क्योंकि कई बार इस गफलत में आपकी बीमारी बहुत बड़ी बड़ा रूप ले लेती
1: जी,
0: है
1: जी।
0: तो अब हमारी बातें कहीं बहुत बड़ी बहुत दूर तक न जाए, इससे पहले हम यहाँ पर विराम देते हैं अपनी बात को और सुनाते हैं अपनी सखियों और सखाओं को ये गाना, बारिश वाला गाना। जहाँ पर बारिश नहीं हो रही है उनके लिए सुकून देगा ये गाना, इसलिए भी ये गाना।

0: दीपा जी, हर चमकती हुई चीज अनमोल नहीं होती, ये हमारी एक सखी कह रही हैं कि आज सोशल मीडिया पर वायरल होना आसान हो सकता है, लेकिन किसी के दिल में सम्मान की जगह बनाना कहीं ज्यादा बड़ी बात है। इसलिए ऐसा काम कीजिए जिस पर समय भी मुस्कुराए और आने वाली पीढ़ियां भी गर्व करें।
1: क्या बात है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने कि काम ऐसा होना चाहिए जिसकी वजह से सकारात्मकता हर तरफ फैले, है ना?
0: कुछ लोग लिख रहे हैं कि लोग वायरल होने के लिए अश्लील वीडियो भी डालते हैं, ये भी गलत है, बहुत गलत है। और अब देखिए ना, एक और मुद्दा है, वो है मोल भाव करने का। कुछ लोगों की आदत होती है कि किसी भी दुकान में गए तो मोल भाव ज़रूर करते हैं, जैसे कि कुछ फिक्स रेट की दुकानें हैं, कुछ ब्रांडेड चीज़ें जहाँ पर मिलती हैं, जहाँ पर एक पैसा भी नहीं
1: कम किया जाता है
0: कि 99 रुपए है तो वो 1 रुपए भी आपको अदा करना पड़ता है, लेकिन वहाँ भी लोग मोल भाव करते हैं। अरे 1 रुपए भी नहीं कम हो सकता है क्या, अरे 20 रुपए तो कम कर दो। तो ये कुछ लोगों की आदत सी बन जाती है, जहाँ पर ये भावना नहीं होती कि इससे बचत हो जाएगी, वो आदतन मोल भाव करते हैं।
1: उन्हें पता भी नहीं होता है ममता जी, उन्हें लगता है कि नहीं, अगर हमने ये 10 रुपए या 20 रुपए कम नहीं कराए तो ये तो मेरे कुछ खिलाफ सी बात हो गई है। ऐसा कैसे हो सकता है? मान लीजिए कि कोई 50 रुपए में चीज है और अगर मैं 30 में नहीं करके लेकर आई तो कहीं कुछ ऐसा लगता है कि मैंने तो कहीं कुछ कमी कर दी। ऐसे कैसे हो सकता है कि भाव मैंने नहीं किया, ऐसा हो जाता है।
0: और बहुत देर तक वो सोचती रहती है कि हम तो ठग गए, जबकि ऐसा नहीं होता है। एक श्रोता ने लिखा है कि मनोवैज्ञानिक रूप से मोल भाव करने से खरीदार को ये एहसास होता है कि उसे बेवकूफ नहीं बनाया गया है और उसने एक समझदारी भरा फैसला किया है। मोल भाव करना शुरुआत में एक आदत के रूप में शुरू होता है, लेकिन जब आप इसमें माहिर हो जाते हैं तो ये एक कला बन जाती है। ये केवल पैसे बचाने का जरिया नहीं, बल्कि ये मानव स्वभाव और संवाद का एक सुंदर हिस्सा है। मोल भाव करना दोनों पक्षों के बीच एक मानसिक कसरत भी है, ये समझने की कला है कि सामने वाले की सीमा क्या है। कई बार लोग जहाँ पर मोलभाव नहीं करना चाहिए वहाँ भी करते हैं, जैसे सब्जी वाले, सब्जी वालों से अगर उसने कहा कि ये 50 रुपए में आधा किलो या 1 किलो हम सब्जी दे रहे हैं जो भी है, तो वो ज़रूर कहेंगे कि अच्छा 50 रुपए में आधा किलो तो ठीक है, हम 1 किलो लेते हैं, कितने पैसे कम करोगे। तो सब्जी वाले भी आनंद लेते हुए कहते हैं अच्छा ठीक है ले लो, 5 रुपए कम दे देना। तो सब्जी वालों से आप मोलभाव क्यों कर रहे हैं? वो सड़क पर सब्जी बेच रहे हैं, उनको बेच के घर जाना है। मुझे लगता है कि उनसे कम से कम मोलभाव नहीं करना चाहिए।
1: लेकिन सबसे ज्यादा देखने में आता है सब्जी वालों से होती ही है,
0: बिल्कुल
1: ये भाव ताव तो चलता ही। अगर उसने वो गठरी बना के रखी है, मान लीजिए कि वो कह रहे हैं कि ये 15 रुपए की है गठरी, तो वो बोलेंगे नहीं 10 रुपए में दो या 15 की दो गठरी दो। इस तरह की बातें तो अक्सर देखने को मिलती हैं। और एक संदेश ये कह रहा है कि मोल भाव करना आदत है या कला। मोल भाव करना, वैसे इसको करने में कोई बुराई तो नहीं है, मोल भाव करना ही पड़ता है, पर कुछ सामान इस तरह के होते हैं कि उनके मोल भाव करने ही नहीं पड़ते हैं। उनकी हर जगह की रेट फिक्स होती है, पर कुछ वस्तुएं इस तरह की होती हैं कि उनके मूल्य कहीं भी कम या ज़्यादा नहीं होते, इसलिए मोल भाव करना अच्छा रहता है। मैं कभी कभी सब्जी घर के लिए खरीद कर लाता हूँ, 2-3 दुकानों पर भाव पूछने से ही पता चल जाता है, ज़्यादा दुकानों पर मोल भाव करने की मैं आदत नहीं रखता हूँ।
0: हमारी एक सखी ने लिखा है कि मोल भाव करना मेरी तो आदत है, मैं चाहती हूँ कि ये छूट जाए पर जाती ही नहीं। जब भी मार्केट जाती हूँ घर से सोच कर निकलती हूँ कि आज वो भाव मिलेगा उसी में शॉपिंग करूंगी, पर वहाँ जाते ही आदत जोर मारना शुरू कर देता है। भाई ये बड़ी ईमानदारी से इन्होंने अपनी बात लिखी है और हम चाहते हैं कि हमारे सभी श्रोता ऐसी ईमानदारी से बेबाकी से अपनी बात रखें।
1: जी, एक गीत सुन लेते हैं ममता जी, करें
0: सुनते हैं
1: जी।

0: अब दीपा जी, हमारे श्रोता तो मूल भाव पर तुल गए हैं, मूल भाव पे लगे हुए, मतलब मूल भाव किए जा रहे हैं। अब एक श्रोता ने लिखा है कि हम महिलाएं मूल भाव करने के लिए बदनाम होती हैं, मूल भाव करने की आदत भी होती है। सब्जी वाले से जब तक धनिया और हरी मिर्च फ्री में न डलवा ले तब तक चैन नहीं पड़ता है। और भी शॉपिंग में बहुत सारे मूल भाव करती हैं, सच में पता नहीं क्या मिलता है उन्हें कि थोड़ी मिर्ची और डाल दो ना, अच्छा करी पत्ता भी डाल दो। वो फ्री में लेने में क्या मिलता है ये आज तक मुझे भी नहीं समझ में आया। मैंने भी देखा है बहुत सारी महिलाओं को। और एक श्रोता ने लिखा है कि मोल भाव करना आदत या कला, भाव करना कोई बुराई तो नहीं है, मोल भाव करना भी पड़ता है, पर कुछ सामान तो इस तरह के होते हैं कि उनके मोल भाव करने ही नहीं पड़ते, उनकी हर जगह एक ही रेट होती है, पर कुछ वस्तुएं इस तरह की होती हैं कि उनके मूल्य कहीं कम कहीं ज़्यादा होते हैं, इसलिए मोल भाव करना अच्छा रहता है। मैं कभी कभी सब्जी घर के लिए खरीदता हूँ तो दो या तीन दुकानों पर भाव पूछने से पता चल जाता है, ज़्यादा दुकानों पर मोल भाव करने की आदत नहीं रखता हूँ। एक श्रोता ने लिखा है कि बदनाम महिलाएं हैं मोल भाव करने के लिए, लेकिन पुरुष भी कम नहीं हैं मोल भाव के लिए।
1: ये बात तो सही है, आपने बिल्कुल सही कहा।
0: और आप ज़रा बताइए कि ये क्या कर रही हैं, डेढ़ चावल की खिचड़ी पका रही हैं?
1: बिल्कुल, आज डेढ़ चावल की खिचड़ी पका रही
0: है।
1: देखिए, जहाँ पे कहीं पे कुछ एक ग्रुप बैठा हुआ है, बातें कर रहा है, और किसी एक बात पर सब लोग ने हाँ कर दी, और अचानक से कोई एक उसमें से कहता है नहीं, ये इस तरीके से नहीं होगा, कुछ अलग तरीके से होगा। तो जहाँ जब कोई राय अपनी अलग देने लग जाता है या कुछ अलग थलग बात करता है या अपनी कहते ना एक टांग ऊपर रखना चाहता है, तो इस तरह की बात को बहुत सारे हमारे
0: मुर्गे की एक टांग, ये भी एक मुहावरा है। अब एक श्रोता ने लिखा है कि आज पता चला कि डेढ़ चावल की खिचड़ी पकती है, हमने तो बीरबल की खिचड़ी के बारे में सुना था।
1: बिल्कुल, ये भी होती है जहाँ अपना राग अलापना है या अपनी मनमानी करना, ये भी इस मुहावरे का अर्थ होता है, ऐसा हमारे एक श्रोता ने संदेश लिख के भेजा है। अच्छा, एक और संदेश आया कि खिचड़ी एक ऐसा व्यंजन है जो कई लोगों के साथ मिलकर बांटकर खाने या पकाने की परंपरा से जुड़ा है। ऐसे में डेढ़ चावल की खिचड़ी का अर्थ बहुत ही कम मात्रा में भोजन या एक छोटे समूह से है। जब कोई व्यक्ति समूह में शामिल न होकर खुद को अलग थलग कर देता है, तब इस मुहावरे द्वारा उस व्यक्ति को अंकित करते हैं कि भाई ये देखो, ये आ गया डेढ़ चावल की खिचड़ी वाला।
0: अब हमारी एक सखी है जिन्होंने अलग ही खिचड़ी पकाई है। अब सारे श्रोता तो ये कह रहे हैं कि डेढ़ चावल की खिचड़ी, मतलब कि सबकी अलग अलग राय रखना और अपनी अपनी राय ऊपर रखना, मतलब ये। अब हमारी एक सखी है जिन्होंने लिखा है कि डेढ़ चावल की खिचड़ी का मतलब कि किसी बात को एक ने दूसरे के कान में कहा, दूसरे ने तीसरे के, और तीसरे ने चौथे के, हर एक ने एक दूसरे को कहा, ये बात सिर्फ मैं तुमसे बता रही हूँ, तुम किसी से न कहना। मगर जब वो बात एक कान से होते हुए चौथे कान तक जाती है तो बात न होकर कुछ और ही हो जाता है, सीधा मतलब बात का बतंगड़ बन जाता है। कहा तो छोटे से शब्द में या अर्थ में, मगर जिसने सुना उसने दूसरा ही अर्थ लगाया, और जिसको कहकर अपनी बात परोसी वो दूसरे ही अर्थ में कह दी। तो बात तो थी छोटी सी, लेकिन एक से दूसरे तक जाते अर्थ का अनर्थ हो गया, या फिर कह सकते हैं कि बातों की ऐसी जुगाली हुई कि डेढ़ चावल की खिचड़ी बन गई। दरअसल मुहावरे का ये अर्थ भी सही है। कई बार हम ये भी कहते हैं, जब हम छोटे थे तो जब माँ और दादी सुनाती थी नानी की इस तरह के मुहावरे, तो वहाँ पे अर्थ भी बताती थी, तो उसका यही अर्थ होता है कि क्या डेढ़ चावल की खिचड़ी पका रही हो, तो मतलब ये कि बातें जब उलट पलट हो जाती हैं और उसका एक अपना मंतव्य हो जाता है, अपनी राय हो जाती
1: जी,
0: है, तो अर्थ बदल जाता है।
1: और देखिए, यहाँ पर एक और खिचड़ी पक रही है, ये संदेश आया है कि हमेशा मिलजुल कर काम करना सफलता की कुंजी है, लेकिन कुछ लोग हर बात में डेढ़ चावल की खिचड़ी पकाते हैं, वे दूसरों की राय को महत्व नहीं देते हैं और अपनी ही मनमानी करते हैं। ऐसे व्यवहार से टीम में मतभेद पैदा हो जाते हैं और काम भी प्रभावित होता है, इसलिए हमें अपनी बात अवश्य रखनी चाहिए, लेकिन सबकी राय का सम्मान करते हुए मिलकर निर्णय लेना चाहिए, यही समझदारी है और अच्छे व्यक्तित्व की पहचान भी है।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि पता है हमें एक पुरानी बात याद आ गई, तब कुछ लेना होता था तो कुछ सहेलियों या घर की मौसी या चाची साथ होती थी, पर हम एक दूसरे का मुंह देखते थे कि पहले कितना कम करवाएंगे मोल भाव के लिए, इन्होंने लिखा है, और फिर इशारे में बात करके बोलते थे, फिर खुश हो जाते थे कि इतना कम करवाया हो गया, फिर बोल के चले जाते थे कि इतने में दो, फिर मुड़ के देखते, दो नहीं तो हम नहीं लेंगे, फिर मुड़ के देखते थे वो बुला तो नहीं रहा जाओ जाओ, पर अब नहीं करते सब्जी वालों से तो बिल्कुल भी नहीं, फिर फिक्स रेट की शॉप पर भी जाना पसंद करते हैं। ये अक्सर जब पहले दुपट्टे का फैशन था बहुत सारा तरह तरह के डिज़ाइनदार दुपट्टे हुआ करते थे, तो मैंने भी कई बार लड़कियों को देखा है कि दुपट्टे खरीद रही हैं और दुकानदार से

0: रही हैं कि ठीक है इतने में दो नहीं तो जा रहे हैं, और जा रहे हैं पूरी की पूरी झुंड में हैं लड़कियां, और मुड़ मुड़ के देख रही हैं, फिर वो बुला रहा है आइए भाभी जी आइए ले लीजिए लड़कियां औरतें, फिर वापस लौट के आ रहे हैं, फिर 10 रुपए दे दिया एक्स्ट्रा। तो ऐसे
1: ऐसे शहर, कई शहरों में ऐसे कुछ जगह होते हैं ममता जी, जहाँ पर कि आपको भेजते हैं ना, या हम जाते हैं जैसे कोई बड़े शहर में घूमने गए, तो हम किसी जो पहले ही जाकर आ चुका है, हम पूछते हैं कि कहाँ पर बार्गेनिंग होगी और कितनी होगी ये भी बता देना। तो वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं वो बताते हैं, देखो वो अगर तुम्हें 200 रुपये बोले ना, तो तुम 40 या 50 रुपये से शुरू करना, इतनी बार्गेनिंग होती है।
0: तो 100 रुपये में मिल जाएगा,
1: 100 रुपये में मिल जाएगा।
0: आज तो हम सब की हम आप भी खिचड़ी ही पका रहे हैं, कभी मोल भाव कर रहे हैं तो कहीं खिचड़ी पका रहे हैं। अब कहीं हमारे एक श्रोता ने लिखा है, कारे कारे बादरा सचमुच अब तो चला जाए तो अच्छा, सूरत गुजरात में कल से बहुत तेज तूफानी बारिश हो रही है, अभी भी बारिश हो रही है। दरअसल मुंबई में भी बहुत भारी बरसात हो रही है, शहर के देश के तमाम हिस्सों में बारिश हो रही है, लेकिन जहां पर बरसात नहीं हो रही है वहां के लिए क्या है, वो गर्मी से जहां परेशान हाल है, तो उनके लिए गाना ही सुकून देगा। तो सुन लेते हैं ये गाना।

0: इस गाने के साथ हम यही शुभकामना कर रहे हैं कि पूरे देश में बरखा दुल्हनियाँ आएं और इतनी संतुलित बारिश लेकर आएं कि किसी को कोई परेशानी ना हो। और अब घड़ी की ओर देखिए, बिल्कुल वक्त नहीं कि कुछ बोलें बतियाएं या गाना सुनवाएं, तो लेते हैं सखियों और सखाओं से इजाज़त। आप सभी को ममता सिंह
1: और दीपा माहेश्वरी का नमस्कार।
0: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रोड्यूसर अनुश्री पाठक।
2: सखी सहेली।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं अभिनेता विपुल देशपांडे से। इनसे बातचीत की है जयंत पात्रीकर ने और ये है इस बातचीत का पहला भाग।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज विविध भारती के स्टूडियो में ऐसे कलाकार पधारे हैं जो आपके घर में भी आपसे मिल चुके हैं, आप सिनेमा हॉल में जाएं तो वहां भी आपसे मिल चुके हैं, और आपने अपने लैपटॉप के पर्दे पर या टीवी के पर्दे पर जब कभी OTT प्लेटफॉर्म पर आप गए होंगे तो वहां भी आपकी इनसे मुलाकात हुई होगी। जी हाँ, एक ऐसा अभिनेता जो सेल्यूलॉइड का कोई भी जरिया हो, कोई भी मीडियम हो, वहां अपना नाम रखते हैं और अपनी जगह उन्होंने बनाई है। आइए स्वागत करते हैं विपुल देशपांडे का। विपुल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका विविध भारती में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। नमस्कार सभी श्रोताओं को भी।
1: विपुल जी, कहाँ से शुरू करें, शुरू से बात करते हैं, कैसे शुरुआत हुई, आप कहाँ के रहने वाले हैं, पैदाइश कहाँ की है और बचपन कहाँ बीता आपका?
2: वैसे मेरे पेरेंट्स मुंबई में ही रहते थे, तो मेरी पैदाइश आप कह सकते हैं कि मुंबई में ही हुई।
1: अच्छा।
2: लेकिन फर्स्ट स्टैंडर्ड तक मेरी पढ़ाई के बाद में हम लोग शिफ्ट हो गए मुंबई से नागपुर।
1: अच्छा।
2: तो नागपुर ये मेरा वैसे विदर्भ में हम लोग का घर है
1: जी।
2: वहीं पे सब रिलेटिव्स हैं और एंसेस्ट्रल अगर बोला जाए तो अमरावती के पास अकोलखेड़ नाम की एक जगह है जहाँ से हम बिलोंग करते हैं।
1: जी जी।
2: बट अभी हाल ही में सभी लोग जॉब के सिलसिले में सब बाहर आए और पिताजी बैंक में थे और मेरी माँ जो है वो लेक्चरर थी, तो उन लोगों ने फिर नागपुर में अपना जो है परमानेंट एड्रेस बनाया और मेरा स्कूलिंग नागपुर में ही हुआ।
1: अच्छा।
2: मैं पिताजी का पहले से हॉबी था कि वो स्पोर्ट्स और एथलेटिक्स में इंटरेस्टेड थे, तो उन्होंने पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग ये सभी जरिए में अपना एक पैशन कायम रखा
1: जी।
2: और मुंबई में ये सब करने के लिए बैंक में जॉब करते हुए पॉसिबल नहीं था, तो उन्होंने नागपुर चुना।
1: अच्छा।
2: हालांकि एग्जैक्टली उल्टा मैंने किया कि मुझे मुंबई चुनना पड़ा वापस तो मैं वहां से वापस आया, बट वहां से आते आते बहुत समय लग गया। तो हालांकि मैं चाहता जरूर था कि मैं पढ़ाई करूं NSD में या फिर ड्रामेटिक्स पढ़ूं या FTI में जाऊं, बट एक्सपोजर कम होता है मुंबई के मुकाबले इस क्षेत्र के लिए स्पेशली। इसे हम लोग करियर नहीं मानते, मतलब एक्टिंग ये हॉबी करके देखी जाती है। मैं जिस शहर से आता हूँ वहां पे, तो मैंने उसके लिए थोड़ा सा क्रांतिकारी रवैया अपनाया था कि नहीं मुझे यही करना है। लेकिन पेरेंट्स ने कहा कि नहीं बेटा ऐसा है, पहले पढ़ाई भी कर लो ताकि बड़ी अनसर्टन फील्ड है, आप नॉलेजेबल रहोगे तो आप कुछ कर पाओगे बाद में अगर ऐसा कुछ समय आया तो, बहुत अच्छी बात थी। तो उन्होंने मुझे इंजीनियरिंग के लिए सपोर्ट किया, देन मैंने MBA किया। फिर जॉब करते करते ऐसा हो गया कि वो एक होता है ना 99 का पढ़ा बोलते हैं, आदमी फंस जाता है, तो उसमें फंस सा गया था।
1: अच्छा।
2: बट देन फिर मैंने कहा कि नहीं यार करना तो पड़ेगा, तो फिर शुरू में नागपुर में जो भी थिएटर कर पाए हम वो मैंने किया
1: जी।
2: वहां पे कुछ महानाट्य थे, कुछ नॉर्मल नाटक थे, वो मैंने किए। लेकिन हालांकि मुंबई आना ही एक रास्ता था, तो मैं एक बार आके गया।
1: अच्छा।
2: मैं 2000 में मुंबई आया था, तो आज से 26 साल पहले की बात है
1: जी।
2: तब मैं 20 साल का था, लेकिन तब कुछ मुझे समझ नहीं आया क्योंकि कोई चीज का एक्सपोजर नहीं था, कुछ चीज के बारे में मालूमात नहीं थी, तो मुझे एक महीने बाद वापस जाना पड़ा। मैंने सोचा कि यार यहाँ पे बिना किसी नॉलेज के कुछ करना पॉसिबल नहीं है। देन आई वेंट बैक, आई कंप्लीटेड माय इंजीनियरिंग, आई कंप्लीटेड माय MBA।
1: अच्छा।
2: उसी के साथ कैंपस प्लेसमेंट हुआ, मैंने गोवा में एक साल जॉब किया, फिर मैं कैसे तो भी करके मतलब मिन्नतें करके मैंने कंपनी से बात की कि मुझे मुंबई जाना है। मालूम था कि मुंबई में ही करना पड़ेगा जो करना है, तो वो हुआ नहीं, वीडियोकॉन से तो ट्रांसफर नहीं मिली, सो आई टुक अ स्विच। मैं यहाँ पे हाइपरसिटी में जॉब करने आया।
1: अच्छा।
2: सो 2-2.5 साल लग गए, उसके बाद में फिर कहीं जाके एक जगह मैंने ऑडिशन,
1: पहली बार आए तो एक नौकरी के लिए आए?
2: नौकरी के लिए।
1: अच्छा।
2: मुंबई में मैंने 2007 से लेकर 2009 तक नौकरी की। 2009 से मैंने स्विच किया, रिसेशन हिट हुआ था उस दौरान, नौकरियां सभी की थोड़ी सी डामाडोल में थी
1: जी जी।
2: तो फिर 2000 मैंने स्विच किया बिरला में, बिरला एजुटेक में मैं काम कर रहा था, 2 साल ऑलमोस्ट वहां पे काम किया। और उसी दौरान मैंने एक ऑडिशन के बारे में पता किया जो कि 4 इडियट्स नाम की एक फिल्म थी, जो पता चला
1: जी। ये मुंबई की जो आपकी अभिनय की यात्रा है उसकी अब यहाँ शुरुआत होने जा रही है, उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि नागपुर में जो आपने थिएटर किया तो वो एक्सपीरियंस कैसा था, किस तरह के नाटक वो हुआ करते थे जिनमें आपने अभिनय किया?
2: एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस होता है एक कलाकार के लिए जब वो स्टेज पे जाता है या स्टेज से जुड़ी कोई भी हरकत करता है।
1: हाँ।
2: लेकिन सीखने के लिए बहुत ही लिमिटेड वहां पे स्कोप था
1: जी।
2: क्योंकि वहां पे जितने भी लोग थे या तो यहाँ पे आके वापस जा चुके थे कि उनका यहाँ पे शायद ना हो पाया या फिर वहां से आए ही नहीं है और वहीं पे एक अपनी दुनिया बसा ली है।
1: हाँ।
2: एक पैरेलल इंडस्ट्री खड़ी करने की बात जहां पे होती है।
1: हाँ, हाँ।
2: तो नाटक नो डाउट बहुत अच्छे थे।
1: एक उम्र होती है जब हमें एहसास होता है कि भाई हाँ हम अभिनय की दुनिया में कुछ कर सकते हैं
2: जी,
1: और एक वो समय होता है कि जब हमें हमारे घर से प्रोत्साहन मिलता है या हमारे किसी शिक्षक ने हमें कहा कि चलो तुम तो बड़ा अच्छा कर सकते हो, तो वो हमें स्टेज पर धक्का दे देते हैं एक तरह से। तो ऐसा कभी हुआ है आपके साथ?
2: अभिनय मैं कुछ कर सकता हूँ ये मेरी, जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं एक्टर ही बनना चाहता
1: हूँ। क्या बात है, क्या बात।
2: आई नेवर इमेजिन्ड एनी अदर प्रोफेशन।
1: वाह वाह वाह।
2: बट जरिया नहीं मिल रहा था तो नाटक हम करते रहते थे। फिफ्थ स्टैंडर्ड से नाटक हर साल मेरे स्कूल में करता था।
1: हाँ।
2: जो स्नेह सम्मेलन गैदरिंग होता है।
1: हाँ।
2: उसमें हर साल करता था, जहां जहां पॉसिबल हो वहां पे करता था। और जैसे कहा आपने कि लोग सराहना करते हैं तो आपको अच्छा लगता है
1: जी।
2: आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। तो वही है कि आप एक होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस और एक होता है कि हाँ भी लोग जब बोल रहे हैं तो समझ जाते हैं आपके, हाँ आप कर सकते हैं अच्छा। तो ये फिर वो धीरे धीरे बढ़ता गया
1: जी,
2: बिकॉज यू हैव परफॉर्म्ड वेल, पीपल हैव अप्रिशिएटेड, उन्होंने वो सराहना की और फिर आगे बढ़ती गई।
1: और फिर मुंबई आके अपने आप को आजमाना, ये जो मन की एक इच्छा है, बाकी सारे काम करते हुए, नौकरी करते हुए या पढ़ते हुए भी हम जो है वो इच्छा मन में कुलबुलाते रहती है
2: बहुत ज्यादा।
1: ये कितने दिनों तक चला?
2: ये सर बहुत चला। ये बेसिकली अगर बात करें तो 2006 में मेरा MBA जब मेरा पास आउट हो गया
1: जी, जी।
2: मैं पहली बार जॉब करने गया तो मैंने मेरे बॉस को कहा कि मुझे सर मुंबई में आप प्लेसमेंट दे दो।
1: अच्छा।
2: तो मैं चाहता था कि जॉब करते हुए मैं कुछ ना कुछ यहाँ पे।
1: हाँ।
2: लेकिन उस दौरान मुंबई में था नहीं, तो वो मेरा 1.5 साल जो है औरंगाबाद 6 महीने और फिर 9 से 10 महीने गोवा में, ऐसा मेरा बीता। और रोज रात को, रात को इसलिए क्योंकि दिन भर काम आपका समय कट जाता है, फिर जो आपको समय मिलता है शाम को 7-8 बजे, देन यू फील कि मैंने आज जो दिन भर किया क्या वो मुझे जो पसंद था वो किया।
1: अच्छा।
2: या फिर बस करना है इसलिए किया, सरवाइव करने के लिए किया। तो वही एक बड़ी मशक्कत और बड़ा ही एक द्वंद्व होता था
1: जी, जी।
2: कि यार ये नहीं करना चाहता हूँ, ये खुशी नहीं मिल रही है लेकिन करना पड़ रहा है। तो कुछ तो भी करके भगवान की दया से मुझे वो स्विच करना पॉसिबल हुआ और फिर मुंबई आया।
1: तो ये मुंबई का जो सफर है हम उसकी बात करेंगे, मगर हमारे बातों के बीच में आपकी पसंद के गाने भी हम सुनेंगे। तो कौन सा गाना होगा सबसे पहला जो आपको पसंद है?
2: मैं जिंदगी को जिस नजरिए से देखता हूँ उस नजरिए से अगर बात करें,
1: हाँ,
2: तो जिंदगी को एक लाइटली और एक हंसते खेलते जितना पॉसिबल हो बिताना चाहिए, किसी को तकलीफ ना देते हुए, शायद वो ज्यादा जरूरी है। तो बच्चन साहब का एक गाना है,
1: हाँ,
2: जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल,
1: वाह,
2: इसे खोना नहीं खोके रोना नहीं।
1: क्या बात है, बहुत बढ़िया।
2: ये एक बहुत खूबसूरत सा गाना है,
1: आइए सुनते हैं।
3: जिंदगी

0: जिंदगी हंसने गाने के लिए है पल दो पल, और ये जिंदगी जो अभिनय यात्रा के रूप में आपकी मुंबई में शुरू हुई, तो वो कैसी शुरुआत थी?
1: सर, मैं जब नागपुर में था 2 साल के
0: हाँ
1: लिए,
0: हाँ
1: मैंने जॉब छोड़ के, मैं नागपुर में 2 साल के लिए मैंने एक पॉज लिया था कि एक नौकरी की आदत होती है, 1 तारीख को सैलरी आती है,
0: हाँ हाँ
1: वो तो वो तोड़नी थी मुझे आदत,
0: हाँ
1: क्योंकि यहाँ पे आके कोई गारंटी नहीं थी कि रोज़ काम मिले। तो मैंने वहाँ पे एक बिजनेस हमारा था, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, जो मेरी माँ के अंडर बड़ा हुआ था पूरे अच्छे
0: जी
1: से।
0: जी
1: तो क्योंकि मम्मी लेक्चरर थी, रिटायरमेंट के बाद में शी वॉज टेकिंग केयर ऑफ दिस। तो फिर वो हमने थोड़ा सा एक्सपांड किया, 25 सेंटर्स हमने उसके बनाए नागपुर में। और फिर मैं यहाँ पे आने की मेरी जो एक बात हुई, तो मैंने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी, मैंने सोचा कि जाते काम कैसे मिलेगा।
0: अच्छा
1: तो आई नेवर हैड अ मुस्टैश इन माई लाइफ। यहाँ पे मैंने देखा कि क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, पुलिस फाइल्स, ऐसे कुछ क्राइम शोज आ रहे थे उस दौरान, जो कि बहुत हिट होते थे, और हमेशा नए एक्टर्स उसमें दिखाई पड़ते थे और रिपीट भी होते थे कुछ।
0: जी
1: तो मैंने सोचा कि यार ये एक सही है, इन लोगों को नए नए बंदे लगते होंगे, तो यहाँ पे जाते हैं। और फिर मैंने सोचा कि मेरी हाइट है 6 फिट 2 इंच, भगवान ने दी हुई, तो उसका फायदा कॉप के रोल में किया जा सकता है, तो एटलीस्ट कॉप रिपीट भी ज्यादा होते हैं।
0: हाँ
1: सेम थिंग हैपेंड, बट इट टुक ऑलमोस्ट 7 to 8 months
0: अच्छा
1: टू लैंड इन अ पर्टिकुलर रोल। वो रोल ऐसे आसानी से नहीं मिल पाया, उसके लिए लाइन में लग के इंट्रोडक्शन देना पड़ा बहुत बार, कभी
0: जी
1: लाइन में लगने के बाद नंबर भी नहीं आता था।
0: हाँ
1: तो वो सब करते करते, बट मैंने मूंछ बढ़ाई और मैं थोड़ा
0: अच्छा
1: फिजिक उस हिसाब से किया कि मैं एक ऑथोरिटेटिव कैरेक्टर में जा सकूं,
0: जी जी
1: और वही हुआ कि फिर उसके बाद क्राइम पेट्रोल, साउथर्न इंडिया, इसमें मैं रेगुलर तौर पे पुलिस ऑफिसर के दौर में दिखने लगा।
0: अच्छा
1: तो एटलीस्ट मुझे पहले से कोई सीखने वाला, मैं ना कहीं जा पाया सीखने के लिए और कुछ कर पाया, बट कैमरा मुझे सीखने को वहाँ से मिला।
0: अच्छा
1: मैंने बहुत करीब से इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व किया
0: जी
1: और बहुत अच्छे एपिसोड्स हुआ करते थे क्राइम पेट्रोल के पहले। सुब्बू सर उनको ऑप्टिमिस्टिक के थ्रू डायरेक्ट करते थे या देखते थे,
0: जी
1: तो ये उन्होंने बहुत अच्छा किया, तो वो मुझे समझने काफ़ी मिला। आजकल सटल एक्टिंग ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं,
0: जी
1: जिसको एक नैसर्गिक तरीके से हम लोग, जैसे आप और मैं अभी बात कर रहे हैं, तो
0: सहज और
1: सहज
0: स्वाभाविक
1: और स्वाभाविक
0: अभिनय जिसे
1: अभिनय
0: कहा
1: जिसको
0: जाता है।
1: कहते हैं,
0: जी
1: तो वो मुझे वहाँ से ज़्यादा अच्छे से सीखने को मिला। ऐसा लगता नहीं था कि अभिनय किया जा रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि अभिनय ना करो, आपको करना पड़ता है कि वैसा लगे ना कि वो अभिनय हो रहा है, तो दैट इज़ मोर इम्पोर्टेंट
0: जी
1: थिंग। तो
0: जी
1: ये मुझे वहाँ से सीखने को मिला और ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, वो कंटिन्यू रही। तो दैट वॉज माई स्टार्ट द मुंबई।

0: साथ में कंफर्टेबल हो जाता है, इसलिए वो साथ में काम करता है।
1: जी
0: तो ये थोड़ी स्ट्रांग लगी मुझे रीजनल के दायरे में, तो वहां पे मेरी एंट्री ज्यादा नहीं हो पाई। आज भी शायद बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं मराठी अभिनेता हूँ, मैं मराठी कर सकता हूँ। बट आई वुड लव टू एक्सपांड माई थिंग। मुझे बहुत खुशी होगी अगर मुझे कुछ अच्छे किरदार मिले जो मराठी में भी नहीं हो पाऊँ। बट हिंदी में हमेशा मुझे साथ सबका मिला और हिंदी में मैं अब तक काम करते आ रहा हूँ रेगुलर।
1: अच्छा,
0: दैट इज थिंग।
1: चलिए यहाँ पे एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का। कौन सा गाना होगा?
0: एक मैं कंपेनियनशिप, एक सपोर्टिव एटमॉस्फेयर पे बहुत बिलीव करता हूँ।
1: जी
0: वो कितना पॉसिबल होता है सबकी लाइफ में ये अपने अपने नसीब की बात है, लेकिन जब कोई बात बिगड़ जाए ये एक मेरा बहुत फेवरेट
1: ओहो,
0: गाना है।
1: बहुत खूबसूरत गीत है, आइए सुनते हैं।
2: जब

0: जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़
1: हाँ
0: जाए। ये मुश्किल पड़ने वाली बात संघर्ष के दिनों में तो कदम कदम पे जो है इसका सामना होता
1: जी
0: है ना?
1: जी
0: कैसे मुश्किलों का सामना होता था उन दिनों में, क्योंकि एक तरफ आप काम तो कर रहे थे,
1: जी
0: मगर एक ही तरह की वो टेलीविजन सीरीज थी जिसमें पुलिस की ही भूमिकाएं ज्यादा होती थी,
1: जी
0: और उसमें टाइपकास्ट होने का बड़ा डर था। कैसा था वो संघर्ष?
1: ये फील्ड ही ऐसी
0: किसी फिल्म का इंतजार कर रहे थे तब कि कोई फिल्म मिल जाए बस। हाँ, तो
1: हाँ
0: वो वही वाकया जो है कि पहली
1: जी
0: फिल्म कैसे मिली।
1: जी ये बेसिकली संघर्ष जो है, जैसे मैंने कहा था कि अब बोलने वाला जा रहा था कि बच्चन साहब के जवानी मैंने सुना हुआ था कि संघर्ष तो जिंदगी भर रहेगा, अगर संघर्ष नहीं चाहिए तो डाय वो कोई संघर्ष नहीं रहेगा। तो
0: बराबर
1: जब तक हम इस जिंदगी में हैं, इस दुनिया में, तब तक संघर्ष रहेगा। उसको हम
0: जी,
1: कितनी खूबसूरती से अपने मार्ग को क्रमण करते हैं उस पर
0: हाँ
1: डिपेंड है।
0: यस,
1: तो संघर्ष हमेशा रहा और शुरुआती दिनों में बहुत ज्यादा रहा। कभी कभी ऐसा हुआ कि 3 3 महीने मेरे पास काम नहीं था।
0: हो
1: तो एक एक्टर के लिए जब 3 महीने काम नहीं है, तो अब 3 महीने कुछ नहीं कमा रहे हो, वो एक बहुत बड़ी सिचुएशन थी। लेकिन ऊपर वाले की दया है कि बीच बीच में फिर उसके बाद कुछ ना कुछ काम आता गया और सस्टेन करता रहा, हैंड टू माउथ
0: अच्छा
1: वो चीज़ें चलती रही। और टाइपकास्ट आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि फिर उस दौरान लोगों को ऐसा होता है कि वो आपके डेटाबेस में ही फीड करके रखते हैं कि इंस्पेक्टर में ये 10 लोग हैं, पहला फोन जाएगा तो आपको इंस्पेक्टर के लिए आएगा, अगर
0: हाँ
1: डॉक्टर है तो डॉक्टर के लिए ये 20 लोग हैं।
0: जी
1: तो ये चलता रहा काफ़ी दिन, फिर हमें नहीं बोलना पड़ा। बहुत बार मुझे नहीं बोलना पड़ा कि मैं नहीं करूंगा, और वो बहुत बड़ी बात होती थी कि आपको मालूम है आपको काम मिल रहा है, उसी से आपका घर चलने वाला है,
0: लेकिन मना करना
1: लेकिन
0: पड़ता
1: मना
0: था
1: करना पड़ रहा है क्योंकि यार उसके अलावा कुछ दे ही नहीं रहे हैं। एक अभिनेता के तौर पे अगर मैं
0: जी
1: वेरिएशन ना दे पाऊं
0: जी जी
1: तो कुछ खास मजा नहीं आता है जिंदगी में। तो वो नहीं करते करते कभी हाँ कभी नहीं, जब जरूरत है उस हिसाब
0: हाँ
1: से हमने काम किया, फिर कहीं ना कहीं लैंड हुए। हमने ये भी सोचा था कि कोई फिल्म जो है वो एटलीस्ट अच्छे इसमें मिल जाए,
0: जी
1: तो इट हैपेंड। और ये जैसे मैं वर्क ग्रेनरी पे मतलब बिलीव करता हूँ,
0: अच्छा
1: वर्क ग्रेनरी मतलब जैसे धान्य का कोठार होता
0: जी, अनाज का
1: है, अनाज का
0: कोठार।
1: कोठार होता है, उसमें एक बहुत बड़ा मतलब जो जो 20 20 25 25 फीट के कोठार होते हैं, जो
0: जी
1: पहले किले पे भी हुआ करते थे,
0: हाँ
1: जहाँ पे लोग आके उस पर धान्य डालते थे। कि मेरे एक भाई जैसे दोस्त ने मुझे बताया
0: हाँ
1: कि काम आप करते हो आप उसमें डालो, वैसे एक धान्य का जैसा वर्क ग्रेनरी है, तो उसमें आप डालोगे एक बार 2 बार 10 बार 100 बार कुछ नहीं होगा, लेकिन एक टाइम आएगा कि वो जो अनाज है वो उसका लेवल तक भर जाएगा।
0: जी
1: फिर आप जो भी डालोगे, एक भी छोटा गड़वा आप उसमें डालोगे
0: जी
1: अनाज, तो वो बाहर आएगा। सो वर्क ग्रीनरी, आप पहले कितने काम करो शायद उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन जब वो अनाज का जो कोठार है वो भर जाएगा, तो आप छोटा भी कुछ करोगे आपको रिजल्ट मिलेगा।
0: आह
1: तो इट इज लाइक दैट। तो शायद वो मेरे और सभी केस में काम करता है। तो पहली फिल्म मुझे जो मिली वो ऐसे ही बहुत जगह ऑडिशन इंट्रोडक्शन ऑडिशन
0: अच्छा
1: इंट्रोडक्शन दे दे के एक जगह से कॉल आया, और एक बहुत बड़े डायरेक्टर थे जिन्होंने अर्जुन रेड्डी नाम की फिल्म साउथ में की थी,
0: जी
1: उनका नाम था संदीप सर, संदीप वांगा रेड्डी, उन्होंने मेरा वो ऑडिशन देखा,
0: अच्छा
1: मुकेश छाड़ा साहब के यहाँ से वो ऑडिशन आया था, एंड ही लाइक्ड इट फॉर द कैरेक्टर ऑफ द डीन ऑफ द हॉस्पिटल वेयर कबीर सिंह जहाँ काम करता है। और फिर वो फिल्म में मुझे एक किरदार मिला जो कि बहुत अच्छा किरदार था, सीन्स शायद कम थे लेकिन एक नोटिस करने लायक किरदार था,
0: जी,
1: और वो फिल्म इतनी बड़ी हुई तो एक छोटे से छोटे किरदार को भी आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिल जाता है।
0: बिल्कुल
1: तो दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म दैट हैपेंड इन माय लाइफ। तो अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो शायद कबीर सिंह के नाम से मुझसे जानते होंगे।
0: हाँ, बड़े सेलिब्रिटी पर्दे का ये जो पहला अनुभव था,
1: जी
0: इसमें सारे बड़े नाम,
1: बहुत
0: तो कहीं किसी तरह का प्रेशर महसूस किया आपने या इन सब के साथ काम करते हुए क्या अनुभव क्या था?
1: मैं मेरे आर्ट से बहुत प्यार करता हूँ सर, तो मुझे बिल्कुल प्रेशर फील नहीं होता जब मैं परफॉर्म कर रहा
0: क्या
1: होता
0: बात, बहुत बड़ी बात आपने कही है, और मतलब जो भी इस क्षेत्र में आने वाले लोग हैं उनके लिए बहुत सही बात है कि समझे इस बात को कि आप अपनी कला से कितना प्रेम करना चाहिए।
1: हूँ। बस वो मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जरूरी वही है,
0: हाँ
1: अगर
0: हाँ
1: आप आपकी कला में निपुण हो, आपने उसे सफिशिएंट टाइम दिया है,
0: जी
1: तो सामने मतलब मैं बच्चन साहब के साथ भी रूबरू हुआ हूँ पर मुझे कभी प्रेशर नहीं आया।
0: ओहो
1: तो और यही सब लोग हैं जो इस लेवल पे जा चुके हैं, जैसे बच्चन साहब को तो बचपन से हम देखते आ रहे हैं।
0: जी
1: जब मैं उनके साथ पहली बार रूबरू हुआ, वागले की दुनिया के हमारे शो के थ्रू एक्सचेंज हुआ था,
0: हाँ
1: हमारा शो और उनका शो KBC, और वो हम
0: जी
1: लोग,
0: जी
1: तो हमें नसीब प्राप्त हुआ उनके इर्द गिर्द बैठने का, उनसे बात
0: हाँ
1: करने का।
0: हाँ
1: तो मुझे प्रेशर नहीं लगा, मुझे लगा कि अपना ही कोई एक सीनियर, एक बहुत बड़ा
0: जी,
1: अभी मेरी आंखों में पानी आ रहा है, वो फील था वो अलग ही था। तो वो उनसे मिलने के बाद ऐसा लगा, और उनसे मैंने बात भी की, मैंने उनको कहा, आई रिक्वेस्टेड हिज मैनेजर कि मुझे एक मिनट अलग से बात करनी है।
0: अच्छा।
1: जैसे अरे आप दिन भर साथ में थे सर, क्या प्रॉब्लम है, बोले एक मिनट बात करनी है।
0: हाँ।
1: तो वो आए, पटेल साहब बहुत ही खूबसूरत इंसान है, बहुत ही अच्छे दिल से, वो आए, उन्होंने कहा हाँ हाँ बोलिए बोलिए। मैंने बोला सर एक प्रॉब्लम है मेरी लाइफ में।
0: हाँ
1: अरे क्या हो गया?
0: अच्छा।
1: सर वो बचपन से आपको देखते देखते बड़े हुए हैं,
0: हाँ।
1: तो अभी जब भी एक्टिंग करते हैं तो मेरा कोई ना कोई दोस्त या कोई डायरेक्टर ऐसा बोलता है कि यार खुद से थोड़ा बच्चन कम कर ले। He laughed the same way, the way you laughed.
0: अच्छा।
1: डर वाला मुझसे होता नहीं है।
0: हाँ। यहाँ अगर मैं आपसे कहूँ कि एक गाना चुनो, तो आप बच्चन साहब की फिल्म का गाना चुनेंगे?
1: बिल्कुल, मुझे उनका एक बहुत खूबसूरत गाना आता है और जो मैं गाता भी हूँ बहुत सारे गेट टूगेदर्स में, शराबी फिल्म का दे दे प्यार दे। आई लव दैट सॉन्ग, इट स्टार्ट्स विद हम बंदे हैं प्यार के, तो एक बहुत खूबसूरत गाना है जो मैं हमेशा।
0: क्या बात, चलिए सुनते हैं।
2: हम

0: शराबी फिल्म का गीत हम सुन रहे थे, दे दे प्यार दे। और ये प्यार जो आपने मांगा इंडस्ट्री से, वो आपको मिलता गया, बढ़ता गया ये प्यार, और इस प्यार की अब इंतहा होना बाकी है। मगर इस प्यार के बढ़त में जो अगला स्टेप है, वो कौन सी फिल्म थी, कौन सा प्रोजेक्ट था?
1: इस दौरान काफी फिल्में हुई। एके वर्सेस एके नाम की अनिल कपूर और अनुराग कश्यप जी के साथ एक फिल्म थी, नेटफ्लिक्स पे आई थी।
0: हाँ हाँ,
1: वो मैंने एक फिल्म की, बहुत अच्छी फिल्म थी। अनिल जी और अनुराग जी के साथ काम करने का मौका मिला, दोनों इतने महान एक्टर्स भी हैं
0: जी,
1: तो बहुत सीखने को मिलता है इन सब लोगों के थ्रू। तो एके वर्सेस एके मेरी दूसरी फिल्म थी।
0: जी,
1: फिर मैंने बागी 3 भी की, जो कि टाइगर श्रॉफ के साथ में थी, रितेश देशमुख साहब थे, वो थी। फिर उसके बाद में मेरी दो प्रोजेक्ट्स मुझे बहुत अच्छे लगते थे। मड़गांव एक्सप्रेस एक फिल्म आई थी अभी, कुणाल खेमू उन्होंने वो डायरेक्ट की थी, लिखी थी
0: जी,
1: सो लाइट कॉमेडी फिल्म, बहुत ही खूबसूरत पिक्चर थी। जैसे मैं हेरा फेरी, अंदाज अपना अपना, ये फिल्में कभी भी लगाओ, कितनी भी बार देखो, वैसा ही मड़गांव एक्सप्रेस भी आप कभी भी देखो, एक बड़ा ही लाइट कॉमेडी फैमिली के साथ देखने लायक, वो एक फिल्म थी। और एक ताज़ा खबर नाम के वेब सीरीज जी, जो कि भुवन बाम अपने आप में एक बहुत बड़ा यूट्यूब स्टार है आज के दुनिया में,
0: जी,
1: तो उसके साथ की थी। वो दोनों सीजन मैंने उसमें किए, तो उसमें भी मेरा प्राइमरी कैरेक्टर रहा, नेगेटिव शेड है, ग्रे शेड है। पहले सीजन में विलन थे जड़ी चक्रवर्ती साहब,
0: जी,
1: जो कि साउथ से सत्या मूवी आई थी, उन्होंने सत्या का कैरेक्टर किया।
0: हाँ।
1: और दूसरे में थे जावेद जाफरी साहब,
0: जी,
1: तो ये दोनों के साथ मैंने वो कैरेक्टर किया था, जो कि ग्रे शेड था, लेकिन काम करते हुए बहुत मजा आया। फिर बीच में गांधी गोड से एक युद्ध, जो राजकुमार संतोषी साहब की फिल्म थी, उसका किस्सा बड़ा खूबसूरत है। हुआ ये कि मैं रंजीत कपूर सर के साथ नाटक किया करता था।
0: अच्छा,
1: रंजीत कपूर सर जो अन्नू कपूर साहब के बड़े भाई हैं, 9 साल बड़े,
0: हाँ,
1: वो थिएटर की वन ऑफ द मोस्ट सीनियर पर्सनालिटी होंगी आज इंडिया
0: जी
1: में,
0: जी
1: तो उनके साथ में नाटक करता था, चेखों की दुनिया, शेर अफगन भी हम करने वाले थे। तो सर को मैं बहुत मानता हूँ। लॉकडाउन खत्म होते ही मैंने सोचा कि मैं वापस आ जाता हूँ, फैमिली मेरी नागपुर में ही थी,
0: हाँ
1: लेकिन मैं आ गया, एटलीस्ट थोड़ा बहुत काम चालू हुआ था।
0: जी जी
1: मैं रंजीत सर को मिलने गया, रंजीत सर ने कहा कि विपुल कल आ जाओ, उस दौरान जो है वो सोसाइटीज लॉक हुआ करती थी, सबको एंट्री नहीं होती थी। बोले तुम्हारे पास गाड़ी है तो मुझे तुम छोड़ देना, मुझे जाना है जुहू,
0: अच्छा,
1: तब हमारी रास्ते में बात भी हो जाएगी। मैंने बोला सर ठीक है। मैं गया, सर को पिकअप किया मैंने, हम जाते जाते बातें कर रहे थे, जो कुछ बातें थी, मैंने भी एक फिल्म लिखी थी, मैंने सर को बताई,
0: अच्छा,
1: बातें हुई, मुझे पता नहीं वो कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा जुहू चलो,
0: अच्छा,
1: बच्चन साहब के घर के सामने से जाएंगे, तो मैं वहां ले गया गाड़ी। फिर उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, मेरी मंजिल आ गई, मैं उतरता हूँ, मिलते हैं बाद में। मैं बोला ठीक है सर। तो उन्होंने उतरते वक्त पूछा तुम राज जी से मिले हो? मैंने बोला कौन राज जी सर?
0: हाँ,
1: अरे राजकुमार संतोषी।
0: अच्छा,
1: अरे मैंने बोला सर मैंने तो नाम ही सुना है, आप राज जी से मिले हो, कैसे मैं मिलूंगा? अच्छा तो आ जाओ चलो। फॉर मी इट वॉज लाइक गूस बम्प, इतने बड़े इंसान से आ जाओ चलो मिलने। मैंने तुरंत मैंने ठीक है आता हूँ, मैंने गाड़ी लगाई उनके साथ ऊपर गया। ऊपर गया तो राज जी नहीं थे, बाहर गए हुए थे।
0: अच्छा,
1: उन्होंने कहा कि थोड़ी देर आप इंतजार कीजिए, और वो चले गए अंदर किसी वर्कशॉप टाइप डिस्कशन के लिए।
0: अच्छा,
1: अब वो बहुत बड़ा सा फ्लैट टॉप फ्लोर पे मैं था, मैं वहां पे जाके, टेरेस ओपन था, वहां पे जाके बैठ गया। और एक इंसान बड़ा खूबसूरत ख्यालों में खो जाता है। मैंने सोचा मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, मेरे लंबे बाल हुआ, लॉकडाउन में मैंने कंधे तक बाल बढ़ा लिए थे।
0: अच्छा,
1: मैंने सोचा मैं ऐसे बैठा हुआ हूँ, राज जी की एंट्री होती है, राज जी बोलते हैं अरे यार ये कौन है, इसको ले लेते हैं। ऐसे मैं कुछ सोच रहा था, हालांकि राज जी आए थोड़ी देर बाद, उन्होंने मुझे देखा नहीं, बाद में मुझे मिलाया गया उनसे।
0: हाँ,
1: और एक कैरेक्टर उनके दिमाग में था, जो उनके एसोसिएट ने आके मुझे बताया,
0: हाँ,
1: कि डीएसपी राणा नाम के उस दौरान के अच्छा कैरेक्टर था
0: जी,
1: तो उनको बताया कि ये है विपुल देशपांडे। रंजीत सर ने बताया कि मेरा एक्टर है, बहुत अच्छा एक्टर है, थैंक्स टू रंजीत सर फॉर दैट। और उन्होंने कहा कि आप इससे जो भी आपके पास काम हो आप कराइए, बहुत बढ़िया कलाकार है। तो उन्होंने कहा यार डीएसपी का कैरेक्टर है लेकिन इतने खूबसूरत बाल बढ़ा रखे हैं, काटने पड़ेंगे। मैंने बोला सर मैं काट लूंगा, बालों का टेंशन नहीं है, अब काम करना जरूरी है। देन ही गिव मी दैट कैरेक्टर एंड आई वर्क्ड विद हिम, इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस वर्किंग विद हिम आल्सो।
0: ओटीटी की वेब सीरीज के लिए, फिल्मों के लिए आपने काम किया, टेलीविजन के लिए सीरीज की है, और बड़े पर्दे पर भी काम किया है। ये तीनों अलग अलग मीडियम है, मगर इसके शूटिंग की जो प्रोसेस है ऑलमोस्ट एक जैसी होती है
1: जी।
0: कुछ फर्क आपने एक एक्टर के रूप में महसूस किया है इसमें?
1: फिल्म और ओटीटी ऑलमोस्ट सेम है,
0: हाँ,
1: क्योंकि इसके पहली बात आती है बजट की, आपके पास में एक थोड़ा अच्छा डिसेंट बजट है तो आपके पास टाइम होता है
0: जी।
1: टेलीविजन में क्या होता है कि आपके पास में टाइम थोड़ा कम होता है, क्योंकि आपको वो शूट करके पहुंचाना है,
0: हाँ,
1: आगे, और
0: उसकी एक तयशुदा तारीख है कि उस दिन वो
1: डेडलाइन
0: एपिसोड तो टेलीकास्ट होना ही है।
1: होना ही है।
0: जी
1: तो जैसे आपने कहा कि एक तयशुदा तारीख, तो उस वक्त आपको पहुंचाना है,
0: जी
1: और आपके पास में बहुत सारा काम होता है,
0: जी
1: बिकॉज महीने में अगर वो 28 दिन टेलीकास्ट हो रहा है, 28 दिन आपको काम करना पड़ेगा, 28 स्टोरीज आपको लगेंगी।
0: जी
1: तो मेरा एक बहुत ही बड़ा काम जो मैंने किया है आज तक, वो था वागले की दुनिया।
0: हाँ जी
1: मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट समझता हूँ कि जेडी सर ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, जेडी मजेठिया सर, आतिश कपाड़िया सर, ये
0: जी
1: दोनों प्रोड्यूसर्स हैं। मुझे मौका मिला सुमित राघवन जैसे इतने सीनियर आर्टिस्ट के साथ भाई के करेक्टर में काम करने का। तो सुमित दा मेरे मेंटर जैसे हैं।
0: क्या बात है।
1: दो और हमारे आइकॉन थे, भारती मौसी, भारती आचरेकर,
0: जी
1: और अंजन सर, अंजन श्रीवास्तव, जो कि सीनियर कपल थे
0: जी
1: वागले।
0: जी
1: ये अपने आप में एक इंस्टीट्यूट्स हैं,
0: बिल्कुल
1: इनसे सीखने को बहुत मिलता है। तो ये तीनों के साथ काम करने में बड़ा मज़ा आया, मुझे बहुत सराहना भी मिली इन लोगों के साथ काम करते हुए, बहुत सीखने मिला। ये मेरा पहला डेली शो था,
0: अच्छा
1: तब तक मैं फिल्म्स और ओटीटी ही करना चाहता था, तो मैं उसी पे फोकस ज़्यादा कर रहा था। बट ये कैरेक्टर बड़ा ही अपने आप में मुझे
0: ये मुझे
1: पसंद है।
0: लगता है 2022 की बात है।
1: जी, 2022 की बात है, आज से 4 साल पहले।
0: हाँ
1: तो ये मुझे फ़ोन आया, जैसे मैंने कहा वर्क ग्रीनरी,
0: हाँ
1: उसी कॉन्सेप्ट में मुझे कॉल आया। ये होता है कि आप जैसे कोई न्यू कॉमर भी आता है, वो सोचता है अरे यार मैं अभी ये ऑडिशन क्यों दूं, वो क्यों दूं। मुझे लगता है हर एक ऑडिशन जो आपके पास आता है, वो कुछ ना कुछ मीनिंग लेके आता है। वो
0: हाँ
1: शायद कहीं ना कहीं ऐसे सर्कल में जाएगा जहां से आपको बाद में फ्यूचर में काम मिलेगा,
0: अच्छा
1: क्योंकि सबको चाहिए अच्छे काम करने
0: बिल्कुल
1: वाले। तो
0: बिल्कुल
1: कास्टिंग डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर, दे नीड गुड पीपल। तो आपके पास जो भी मौका, जो भी अपॉर्चुनिटी आती है, आप उसको छोड़ो मत। आपके पास में भले ही आपको लग रहा है कि ये इतना मजा नहीं आ रहा है, बट आप उसको शूट करके भेज दो।
0: जी
1: आजकल तो बहुत आसान हो गया है। पहले मैं जब आया था 2013 में, ये ऑनलाइन वीडियो बना के भेजने वाली बात नहीं थी।
0: बिल्कुल
1: आज ऐसा हो गया है कि आपको स्क्रिप्ट आती है, आपका मोबाइल में अच्छा कैमरा है, आप उसको स्टैंड पे लगाओ और खुद ही घर पे बैठ के शूट कर लो,
0: अपना
1: ऑडिशन भेज दो, सही लगा तो वो बुलाएंगे। ये पहले नहीं हुआ करता था। पहले एक भी ऑडिशन क्यों ना हो, जाना पड़ता था, जहां जहां बुलाया जा रहा
0: जी
1: है
0: जी
1: वहां पे लाइन में खड़ा होना
0: वो
1: पड़ता था।
0: दर दर भटकने वाली बात है।
1: बिल्कुल, हमने दर दर की ठोकरें खाई है।
0: हाँ
1: और बहुत जगह से बाहर से ही निकाला जाता था कि यहाँ कुछ काम नहीं है। कुछ जगह पूछा जाता था कि आपकी अपॉइंटमेंट है, तो नहीं सर पता करने आए, कुछ काम है क्या? नहीं नहीं कोई कोई काम नहीं है।
0: ओह
1: तो ये भी बहुत बार, बहुत साल हुआ है मेरे साथ। तो लेकिन उसका अपना एक मज़ा था, वो
0: हाँ
1: सफ़र है।
0: अच्छा
1: मंजिल पे पहुंचने का मज़ा तभी आता है जब सफ़र अच्छा हो।
0: हाँ
1: अगर सफ़र आप डायरेक्ट चले गए तो क्या मतलब फिर?
0: बराबर
1: तो एक अलग मज़ा रहा है, अभी भी मैं एंजॉय करता हूँ। स्ट्रगल अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है,
0: हाँ
1: अभी भी ऐसे बहुत सारे किरदार हैं जो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन शायद वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी समय होगा। बट जब भी मिलेगा ये सफ़र आनंददायी ही रहेगा।
0: क्या बात। कोई ऐसा गाना जो आपके इस संघर्ष के दिनों में बार बार आपके जहन में गूंजता हो।
1: देवानंद साहब का जो एक गाना मैंने उन पे फिल्माया हुआ गाना देखा था, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला
0: है, क्या
1: गया
0: बात है।
1: और फिक्र को धोए में उड़ाता
0: हम दोनों
1: चला।
0: फिल्म का गाना है,
1: हाँ जी,
0: बेहद लोकप्रिय गीत
1: बेहद
0: है।
1: लोकप्रिय।
0: आइए सुनते हैं।
1: जी।

0: विपुल जी, जिंदगी का साथ निभाते निभाते आप वागले की दुनिया तक पहुंचे।
1: जी
0: हम उसकी बातें और थोड़ा विस्तार से करना चाहेंगे।
1: जी
0: अंजन जी जैसे वरिष्ठ और श्रेष्ठतम कलाकार के साथ काम करना, भारती जी आचरेकर और सुमित दादा के बारे में आप बता रहे थे, सुमित राघवन जी, कैसा इंटरेक्शन होता था ऑफ द कैमरा, कैसे सब माहौल होता था?
1: एक बहुत ही खूबसूरत बात सुमित दादा के साथ ये होता था
0: जी
1: कि मैं जब तक सेट पे जाऊं और हम लोग रिहर्सल करें
0: जी
1: तब तक मैं उसको बोलता था कि सुमित्रा ये करते हैं, सुमित्रा ये करेंगे, हाँ ये
0: हाँ
1: करेंगे। जैसे ही एक्शन होता है वो दादा मुझे बोलता था क्योंकि
0: आपने
1: मैंने
0: बड़े भाई का रोल
1: मैंने
0: किया,
1: उनके बड़े भाई का रोल किया था।
0: मनोज नाम था
1: मनोज
0: उसका,
1: वागले मेरा, मनोज
0: उसका
1: वागले मेरा नाम था।
0: जी जी जी
1: तो बड़ा एक अजीब सा वो लगता था, मुझे बड़ा मजा आता था उसमें सुनते हुए कि जब तक एक्शन नहीं हो रहा है तब तक मैं उनको दादा बोल रहा हूँ। सभी हम लोग सभी
0: जी
1: से
0: जी जी
1: सीनियर हैं। और फिर उसके बाद में जैसे ही एक्शन हो गया तो सुमित दादा की यहाँ से आवाज आती थी, अरे
0: हाँ
1: दादा। खैर ये तो हुई मजाक की बात, लेकिन जहां तक उनके साथ काम करने का सवाल है, सुमित दादा को भी 40+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। वो बहुत
0: जी
1: बचपन से काम कर रहे हैं,
0: बिल्कुल
1: फास्टर फेने वो
0: हाँ
1: शो किया करते थे 80s में शायद।
0: बिल्कुल
1: और अंजन जी और भारती मौसी का तो क्या ही कहना, मतलब वो मेरे फर्स्ट रील मदर फादर थे और
0: हाँ,
1: उन्होंने उतना ही प्यार दिया।
0: आपको पहला शॉट याद आ रहा होगा अंजन जी के साथ जो दिया था आपने।
1: अमेजिंग इट वाज, मतलब
0: हाँ
1: पहला शॉट सुमिता के साथ भी, अंजन जी के साथ भी। तो हालांकि सुमिता के साथ तो मेरा मॉक शूट भी हुआ था,
0: अच्छा
1: क्योंकि ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट होते हैं जिनको प्रोडक्शन बुलाता है, चैनल बुलाता है, एक ऑडिशन होता है, उसके बाद में देखा जाता है कि इनके साथ में केमिस्ट्री होगी कि नहीं होगी।
0: हाँ
1: तो मुझे बुलाया था मेरे ऑडिशन के बाद में, शॉर्टलिस्ट होने के बाद में प्रोडक्शन ने मॉक शूट के लिए।
0: अच्छा
1: तब सीन ये था कि माँ मतलब भारती मौसी एडमिट है
0: अच्छा
1: और ये जो कैरेक्टर है मनोज वागले का, ये थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड कैरेक्टर है
0: ओके
1: मेरा, जो कैरेक्टर मैंने जो प्ले किया था।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: ये है विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन, छाया गीत। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों में।

इस दिल की मंजिल तो तय है, जहां दिलदार का हसीन साया है। तेरे जलवों में गुम हैं आंखें, तुझे देखें या जमाने को, दिल इसी में भरमाया है।

दिन रात इसी सोच में डूबा है दिल कि कैसे मिलें और कब मिलें उनसे, और मिलने पर बस यही सोचने लग जाता है दिल कि अब क्या कहें उनसे।

खूबसूरत हो, हसीन हो, हमने तो कह दिया जहां से, ए यार करते रहेंगे तेरी तारीफें, हैं जब तक ये सांसें।

हवाओं में गूंज रहे हैं तेरे मेरे उल्फत के अफसाने, खुश हैं ये जमीन और ये आसमान, लगे हैं मुस्कुराने।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: रात 10 बजे आप सुनते हैं छाया गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं, असरदार।
2: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिसरे गीत, प्रायोजक वीको वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट। मजेदार नहीं, असरदार।
3: प्रत्येक बुधवार सुबह 9:15 पर सुनिए कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ। प्रायोजक हैं लेजर चिकित्सा में अग्रणी नाम आनंद आई हॉस्पिटल जयपुर।
4: 9772097720।
5: प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे सुनिए जयमाला। प्रायोजक हैं देव दर्शन ओवरसीज़।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। तराने नए पुराने कार्यक्रम के लिए कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: तराने नए पुराने।
1: नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत तराने नए पुराने कार्यक्रम में आप सभी को सबसे पहले जो गाना सुनवा रहे हैं इसे गाया है सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर ने। फिल्म का नाम बंटी और बबली।

0: सोनू निगम और महालक्ष्मी अय्यर की आवाजों में आप सुन रहे थे गुलजार का लिखा हुआ गीत। संगीतकार शंकर एहसान लॉय, फिल्म का नाम था बंटी और बबली।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: अरे अरे अरे ना ना ना ना ना ना ना ना।
0: तराने नए पुराने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से।

0: नमक हलाल फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। आवाजें किशोर कुमार आशा भोसले की थी। अनजान के बोलते बप्पी लहरी का संगीत था।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत।

0: जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार संगीत सरिता नई श्रृंखला शास्त्रीय संगीत फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
3: विविध भारती हर पल साथ हर पल खास
2: बेचारा
4: भारत की आवाज भारत का दिल भारत का साथ।
3: सुबह की ताजगी से लेकर रात की खामोशी तक
4: हर पल लीजिए संगीत का अनमोल आनंद।
3: सुनिए आपके पसंदीदा गाने दिलचस्प फिल्मी बातें और मजेदार किस्से।
5: मुझे भाई का बचपन भी याद आ रहा है। जी हाँ हृदयनाथ मंगेशकर सच कहूँ तो इसे मैंने बेटों से भी ज्यादा प्यार दिया है। दिन भर गोदी में टांगे रहती थी और ये मेरे बाल खींचा करता था। मुझसे गुस्सा हो जाता तो रोता रोता माँ से कहता कि मेरे सामने इसको मार खूब मार। आज वही मेरा भैया कितना बड़ा हो गया है।
4: साथ ही देश विदेश की ताज़ा खबरें और रोचक जानकारियाँ
3: हमारे उद्घोषकों के साथ जुड़कर बनाएं अपने हर पल को खास।
4: विविध भारती जो हर पल है आपके पास।
6: तराने नए पुराने कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए ओम शांति ओम फिल्म का ये गाना। आवाज श्रेया घोषाल अभिजीत की है, विशाल शेखर का संगीत है और जावेद अख्तर ने

विशाल शेखर के संगीत निर्देशन में आपने सुना श्रेया घोषाल और अभिजीत का गाया गीत। फिल्म का नाम था ओम शांति ओम और इस गीत को जावेद अख्तर ने लिखा था। तराने नए पुराने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अब सुनते हैं शक्ति फिल्म का ये गीत। आवाजें हैं किशोर कुमार, लता मंगेशकर की, आनंद बख्शी के बोल हैं।

तराने नए पुराने कार्यक्रम में भी आप सुन रहे थे शक्ति फिल्म का गीत किशोर कुमार लता मंगेशकर की आवाजें थी। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था। तराने नए पुराने कार्यक्रम का शेष भाग आप सुनेंगे समाचार के बाद। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, AI और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
1: इंडिया और इंडोनेशिया समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में एक नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया। नागर विमानन मंत्री के राम मोहन नायडू ने कहा है कि एरोड्रोम लाइसेंस मिलने के बाद भोगापुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उद्घाटन के लिए तैयार है। हवाई अड्डे का निरीक्षण करने के बाद श्री नायडू ने कहा कि ये परियोजना केंद्र सरकार, राज्य सरकार और GMR समूह के आपसी सहयोग से निर्धारित समय से पहले पूरी कर ली गई है। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4 लाख से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम MSME सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं। वायनाड के मिपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया और उन्हें मिपड़ी के सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं।

0: उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। इस बीच वायनाड और कोझिकोड जिले के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। वायनाड के शिक्षण संस्थान कल बंद रहेंगे। जम्मू कश्मीर में मूसलाधार वर्षा के कारण आज सुबह डोडा जिले के थथरी क्षेत्र में एक बादल फट गया, जिससे कई घरों में दुकानों को नुकसान पहुंचा। हालांकि बादल फटने से कोई हताहत नहीं हुआ है। सीरिया की राजधानी दमिश्क में आज दोपहर दो विस्फोट हुए। इनमें चार पुलिसकर्मियों सहित 18 लोग घायल हो गए। ये विस्फोट फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुअल मैक्रों और सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शराकी राष्ट्रपति भवन में होने वाली बैठक से ठीक पहले हुए। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। तराने नए पुराने कार्यक्रम में आप सभी का फिर से हम स्वागत करते हैं। सुनाते हैं आपको विरासत फिल्म का ये गीत।

0: कुमार सानू और जसपिंदर नरूला की आवाज़ों में जावेद अख्तर का लिखा हुआ गीत आप सुन रहे थे विरासत फिल्म से। तराने नए पुराने कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: यादें
2: सुनना न भूलिए, हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
1: तराने नए पुराने,

0: रेफ्यूजी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाज़ें थी सोनू निगम और अलका याग्निक की, जावेद अख्तर की बोल थे, अनु मलिक का संगीत था।
1: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
2: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
1: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है, तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
3: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
1: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
3: तेरा जवाब नहीं,
1: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
3: प्यार का राग सुनो रे।
1: बजता है छाया गीत विविध भारती से,
3: सदा रही है सदा रहेगी।
1: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत, सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
5: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
4: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
1: नसीब इंसान का।
0: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: दिल तो पागल है फिल्म का ये गाना आशा भोसले की आवाज में।

0: आशा भोसले और साथियों की आवाज़ों में आप ये गीत सुन रहे थे। इसे आनंद बख्शी ने लिखा था और उत्तम सिंह ने संगीत तैयार किया था। फिल्म का नाम दिल तो पागल है। इस गीत के साथ ही आज का तराने नए पुराने कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: तराने नए पुराने।

FM 100.3 मेगाहर्ट्ज पर ये विद भारती का जयपुर केंद्र है। आप सुन रहे थे हमारी राष्ट्रीय प्रसारण सेवा मुंबई का कार्यक्रम। अब ये कार्यक्रम आप फिर से सुनेंगे शाम 7 बजे से। तब तक आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में हिंदी में प्रादेशिक समाचार, फिर जिले की चिट्ठी और उसके बाद राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दिल्ली दौरे के दूसरे दिन कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात, प्रदेश के विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की। दक्षिण पश्चिम मॉनसून प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में सक्रिय, अगले दो दिन उदयपुर और कोटा संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश का अलर्ट। भारत और इंडोनेशिया के बीच कई समझौते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डूरंड कप 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। समाचारों के साथ मैं माधुरी वशिष्ठ और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दिल्ली दौरे के दूसरे दिन आज विभिन्न केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात की। उन्होंने उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी से भेंट की। इस दौरान पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी क्रियान्वयन और यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल सहित अन्य विषयों पर चर्चा की गई। वे वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और आवास और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल से भी मिले। उन्होंने जनहित परियोजनाओं के साथ ही प्रदेश में ई बस और मेट्रो नेटवर्क सेवाओं के विस्तार पर बातचीत की। मुख्यमंत्री श्री शर्मा केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी मिले। श्री शर्मा ने कृषि मंत्रालय में आयोजित अहम बैठक में भी हिस्सा लिया। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस दौरान राज्य के कृषि क्षेत्र से जुड़े विषय और योजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई। उन्होंने वीबीजी रामजी लागू करने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री का आभार जताया।
1: राजस्थान में भी बहुत ही अच्छी तरह से ये काम चल रहा है। ये ऐसा काम है जो ग्रामीण क्षेत्र में, ग्राम पंचायत में एक विकास का आधार, क्योंकि वहाँ के लोग ग्राम सभा के अंदर कामों को चयनित करते हैं, तो एक ऐसे स्थायी होंगे तो गाँव को उसका फायदा मिलेगा। गाँव के लोग, उनको समस्या क्या है उसके समाधान के लिए काम उस पर कर सकते हैं।
0: केंद्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने कहा कि राजस्थान में ग्रामीण विकास और रोजगार सृजन से जुड़े कार्यक्रम संतोषजनक तरीके से चल रहे हैं। उन्होंने ग्राम चौपाल पहल की भी सराहना की। राज्य सरकार ने वाहन स्वामियों और सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दो महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। ट्रैक्टर और गैर परिवहन दुपहिया वाहन मालिकों को पंजीयन प्रमाण पत्र आरसी नवीनीकरण की देरी पर अतिरिक्त शुल्क में राहत दी है। परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने बताया कि कृषि कार्य में लिए जा रहे ट्रैक्टरों से आरसी रिन्यूअल में एक साल की देरी होने पर 500 रुपये माहवार की दर से अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। इसकी अधिकतम सीमा 2500 रुपये निर्धारित की गई है। गैर परिवहन दुपहिया वाहनों के आरसी नवीनीकरण में देरी होने पर 300 रुपये महीने की दर से अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा। इसकी अधिकतम सीमा 1000 रुपये तय की गई है। ये विशेष राहत इस साल 30 सितंबर तक प्रभावी रहेगी। मॉनसून आज राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में और आगे बढ़ा है। फिलहाल मॉनसून की उत्तरी रेखा बाड़मेर और जोधपुर से होकर गुजर रही है। इसके अगले दो दिनों में बीकानेर संभाग और आसपास के भागों में आगे बढ़ने के आसार हैं।

0: इससे जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में अगले 2-3 दिन गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। वहीं उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ में झमाझम बरसात का अलर्ट है। इस बीच राज्य के अधिकतर भागों में मॉनसून की सक्रियता बनी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार हल्की मध्यम बरसात का ये सिलसिला अभी बना रहेगा। हालांकि 10 जुलाई से भारी बारिश की गतिविधियों में कमी हो सकती है। आज डूंगरपुर के गलियाकोट, सागवाड़ा और निठाउवा में कभी तेज तो कभी हल्की बरसात हुई। चित्तौड़गढ़ जिले के कनेरा क्षेत्र में बिजली गिरने से 3 लोगों की मृत्यु हो गई। हादसा बीती रात लुनखंदा गांव में हुआ, जहां एक ही परिवार के लोग फसल की रखवाली के लिए खेत पर सो रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस इन्हें कनेरा CHC लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित किया। मॉनसून के दौरान बिजली जनित हादसों की रोकथाम के लिए अजमेर विद्युत वितरण निगम ने लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की है। तेज आंधी और बारिश के दौरान बिजली के खंभों और ट्रांसफार्मरों और विद्युत लाइनों से सुरक्षित दूरी बनाए रखने का आग्रह किया गया है। उधर पाली में मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से ऑयल बॉयल्स बनाई गई हैं। CMHO डॉक्टर विकास मारवाल ने बताया कि एंटी लार्वा के लिए ये बॉल्स काफी कारगर हैं।
1: ऑयल बॉल है वो बनती लकड़ी के बुरादे और कपड़े से, कपड़े के अंदर लकड़ी के बुरादे को बांध देते हैं और फिर रात भर या 2 या 4 घंटे तक उसको जो जला हुआ तेल है उसके अंदर डुबो के रखते हैं। फिर जो बड़ा पानी इकट्ठा हुआ होता है उसमें बीच में हम उस बॉल को डाल देते हैं और धीरे धीरे एक ऑयल की परत बनती है। वो परत बनने से नीचे जो मच्छर के लार्वा होते हैं ऊपर सांस लेने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में आते हैं। अगर परत बनी हुई होती है तो मच्छर का लार्वा ऊपर नहीं आ पाता और वो सांस नहीं ले पाता और उस वजह से वो मर जाता है। जिससे वर्तमान में हमारे पास 10,000 ऑयल बॉल तैयार हो चुकी हैं और सभी BCMO को 1,00,000 ऑयल बॉल बनाने का हमने टारगेट दिया।
0: जयपुर में आज एक सड़क हादसे में 3 बच्चों की मौके पर मृत्यु हो गई, वहीं 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना श्यामनगर क्षेत्र में 200 फीट बाईपास पर हुई, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने फुटपाथ पर खड़े 5 लोगों को कुचल दिया। पुलिस हादसे के कारणों की जांच कर रही है। उधर पाली जिले में नेशनल हाईवे 162 पर मोड़ भट्टा इलाके में एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में कार सवार 5 युवक घायल हो गए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज जोधपुर दौरे पर रहे। अपने प्रवास के दौरान उन्होंने केलावा खुर्द में आयोजित धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत की और जनसभा को संबोधित किया। इस मौके पर श्री बिरला ने कहा कि हमें मानवीय मूल्यों को अपने विचार, व्यवहार और दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। आज पूरी दुनिया शांति संतुलन के लिए भारत की ओर आशा से देख रही है। ऐसे में हमें सनातन संस्कृति को मार्गदर्शन का आधार रखना चाहिए।
2: शुद्ध आत्मा से व्यक्ति भी सोचता है कि मेरा जीवन नैतिक सत्य के मार्ग पर चले, करुणा संवेदना मेरे मन विचारों में हो, वह आध्यात्मिक धर्म संस्कृति के नैतिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देता है। व्यक्ति का शरीर तो स्वस्थ हो से ही उसके तन मन स्वस्थ के साथ उसका जीवन नैतिक मूल्यों पर चले, सत्य के मार्ग पर चले।
0: ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने आज जकार्ता में वार्ता की। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, खनिज, कृषि और उभरती प्रौद्योगिकी सहित अन्य क्षेत्रों के कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इंडोनेशिया की संसद के संयुक्त सत्र को संबोधित भी किया। श्री मोदी ने समुद्र की दूरी को दोनों देशों के बीच का सेतु बताया। उन्होंने भारत इंडोनेशिया के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों का जिक्र किया और आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता पर जोर दिया। श्री मोदी ने कहा कि भारत विस्तारवाद में नहीं बल्कि विकासवाद की नीति में विश्वास रखता है।
3: भारत दुनिया का वो देश है जो विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास, टुगेदर विथ ऑल डेवलपमेंट फॉर ऑल। मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया।

0: श्री मोदी को इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया प्रदान किया गया है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी को इस सम्मान से नवाजा। विभिन्न नेताओं और मंत्रियों ने प्रधानमंत्री को ये सम्मान प्रदान किए जाने पर बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी को बधाई देते हुए इसे हर भारतीय के लिए हर्ष और गौरव का विषय बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज नई दिल्ली में डूरंड कप 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। ये कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में आयोजित किया गया। इसके साथ ही टूर्नामेंट के लिए ट्रॉफी टूर की आधिकारिक शुरुआत भी हो गई। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने टूर्नामेंट में भाग लेने वाली सभी टीमों और खिलाड़ियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने प्रतिभागियों से खेल भावना का पालन करने और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने का आग्रह किया।
1: खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है। हम वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार फुटबॉल में खिलाड़ी एक दूसरे का सहयोग करते हुए टीम को विजेता बनाते हैं, उसी प्रकार हम सभी देशवासी एक दूसरे के साथ देते हुए विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे।
0: कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणि, सेना प्रमुख धीरज सेठ और नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन भी उपस्थित थे। गौरतलब है कि डूरंड कप देश के सबसे प्रतिष्ठित और ऐतिहासिक फुटबॉल टूर्नामेंट में से एक माना जाता है। राष्ट्रपति भवन में ट्रॉफियों का अनावरण टूर्नामेंट की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक है। थाईलैंड के पटाया में आयोजित अंडर 20 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवानों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 7 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 20 पदक हासिल किए। महिला वर्ग में भारत 184 अंक के साथ उपविजेता रहा, वहीं पुरुष फ्रीस्टाइल वर्ग में भारतीय टीम 152 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रही। उधर क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 5 T20 मैचों की श्रृंखला का तीसरा मुकाबला आज रात नॉटिंघम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 10 बजे से शुरू होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की दिल्ली दौरे के दूसरे दिन कई केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात, प्रदेश के विकास से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की। दक्षिण पश्चिम मॉनसून प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में सक्रिय, अगले 2 दिन उदयपुर और कोटा संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश का अलर्ट। भारत और इंडोनेशिया के बीच कई समझौते, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डूरंड कप 2026 की ट्रॉफियों का अनावरण किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से जालौर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं कप्तान खां कलर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के 12 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। नगर परिषद सभागार में केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं तथा विकास कार्यों पर आधारित प्रदर्शनी लगाई गई। बड़ी संख्या में लोगों ने प्रदर्शनी का अवलोकन किया। जिले में शहरी और ग्रामीण सेवा शिविरों के माध्यम से लोग सरकारी योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। इन शिविरों में राजस्व, चिकित्सा, कृषि, पशुपालन, ऊर्जा, पंचायती राज और अन्य विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। नामांतरण, सीमा ज्ञान, प्रमाण पत्र, भूमि संबंधी प्रकरण, आयुष्मान कार्ड, स्वास्थ्य जांच, पशु चिकित्सा और विभिन्न योजनाओं से जुड़े कार्य मौके पर ही किए जा रहे हैं। जिला कलेक्टर डॉ. प्रदीप के. गावड़े ने बताया कि ये शिविर 15 जुलाई तक जारी रहेंगे। राष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तहत पिछले दिनों जिले में नवजात से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र और अन्य स्थानों पर 1154 बूथ बनाए गए। पहले दिन दवा पीने से वंचित रहे बच्चों को स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने अगले 2 दिन घर घर जाकर दवा पिलाई। अभियान के दौरान जिले में 3,65,000 से अधिक बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई। आकोली ग्राम पंचायत में विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण योजना का जिला स्तरीय कार्यक्रम रखा गया। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य करवाए जाएंगे। इनके माध्यम से लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। कार्यक्रम में पौधरोपण भी किया गया। जिले में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम शाह पूंजाजी गेनाजी खेल स्टेडियम में हुआ। सभी ब्लॉक और ग्राम पंचायतों में भी योग कार्यक्रम हुए। आयुर्वेद विभाग के अनुसार जिले में 73,000 से अधिक लोगों ने योगाभ्यास किया। कृषि विभाग की ओर से तीखी गांव में खेत बचाओ अभियान के तहत कार्यशाला रखी गई। इसमें किसानों को प्राकृतिक खेती, मृदा संरक्षण, फसल चक्र और संतुलित उर्वरक के उपयोग की जानकारी दी गई। कृषि वैज्ञानिकों ने मिट्टी की जाँच और वैज्ञानिक खेती अपनाने की सलाह दी। जिले में गर्मी की छुट्टियों के बाद विद्यालय खुलने के साथ ही प्रवेश उत्सव भी शुरू हो गए हैं। शिक्षा विभाग की टीमें घर घर जाकर 6 वर्ष की आयु पूरी कर चुके बच्चों को विद्यालय से जोड़ने का अभियान चला रही है। अभिभावकों से सभी बच्चों का विद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित करने की अपील की जा रही है। नीति आयोग के आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के तहत आहोर ब्लॉक की प्रगति की समीक्षा बैठक पिछले दिनों आयोजित हुई। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास, पेयजल तथा अन्य विभागों की योजनाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों को पात्र लोगों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए गए। जिले में पिछले दिनों रोजगार उत्सव आयोजित हुआ। इस अवसर पर विभिन्न विभागों में चयनित 506 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र और स्वागत किट प्रदान किए गए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन का सीधा प्रसारण भी दिखाया गया। सहकारिता सप्ताह के तहत जिले में ग्रीन कोऑपरेटिव दिवस मनाया गया। केंद्रीय सहकारी बैंक, ग्राम सेवा सहकारी समितियों और अन्य संस्थानों में पौधरोपण किया गया। इस अवसर पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत जिले के पात्र आवेदकों के चयन के लिए ऑनलाइन लॉटरी निकाली गई। इस योजना में 519 वरिष्ठ नागरिकों का रेल यात्रा और 64 वरिष्ठ नागरिकों का हवाई यात्रा के लिए चयन किया गया। जिले में जल जीवन मिशन और पेयजल योजनाओं की समीक्षा भी की गई। अधिकारियों को हर घर नल कनेक्शन, पेयजल आपूर्ति और जल स्रोतों के संरक्षण से जुड़े कार्य समय पर पूरे करने के निर्देश दिए गए। उधर सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में सड़क दुर्घटनाएं कम करने के उपायों पर चर्चा हुई। दुर्घटना संभावित स्थानों पर संकेतक लगाने, आवारा पशुओं के गले में रिफ्लेक्टर लगाने और यातायात नियमों के प्रति लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए गए। जिले में भीषण गर्मी के बाद मॉनसून की बारिश का दौर शुरू हो गया है। जालौर, भीनमाल, आहोर, रानीवाड़ा, सायला, बागोड़ा और सांचौर सहित कई क्षेत्रों में अच्छी बारिश हुई है। बारिश के बाद किसानों ने मूंग, मोठ, बाजरा और ग्वार की बुआई शुरू कर दी है। तालाबों और एनिकटों में भी पानी की आवक शुरू हो गई है। इसके साथ ही जालौर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
3: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा दिल्ली दौरा रा दूजा दिन कई केंद्रीय मंत्रियों सागे मुलाकात कर प्रदेश का विकास से जुड़िया खास मुद्दा माथे चर्चा कीनी। राज्य रा घनखर हल्का माए चौमासारी बिरखा, आवता 2 दिन उदयपुर और कोटा संभाग में कठे कठे भारी बारिश सारू चेताईचियो। भारत और इंडोनेशिया बीच कई समझौता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया रा सब ऊंचा मानु नवाजी चिया। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फुटबॉल रा डूरंड कप 2026 री ट्रॉफियां रो अनावरण कीनो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर, अरब समाचार विगतवार। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज दिल्ली में न्यारा न्यारा केंद्रीय मंत्रियों सागे मुलाकात कीनी। व उपभोक्ता मामलात खाद्य और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी सागे भेंट रहे दौरान पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ने असरदार तरीकाओं लागू करण और यूटिलिटी लेड एग्रीगेशन मॉडल समेत न्यारा न्यारा मुद्दा मथ चर्चा कीनी। श्री शर्मा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ही मिलिया वे आवासन और शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल मिलर प्रदेश में ई बस और मेट्रो नेटवर्क सेवाओं ने बधावन रे बारा में बातचीत कीनी। मुख्यमंत्री कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ही मिलिया। श्री शर्मा कृषि मंत्रालय में राखी जी खास मीटिंग में ही शामिल थिया। खबर नवीसा सागे बातचीत करता थका मुख्यमंत्री कहो के इन दौरान राज्य रा खेतीबाड़ी हलकाओं जुड़िया मुद्दा और योजनाओं रे बारा में चर्चा करी ची वे वी बी जी राम जी लागूकरण सारू कृषि मंत्री रो आभार जतायो।
4: राजस्थान में भी बहुत ही अच्छी तरह से ये काम चल रहा है। ये ऐसा काम है जो ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत में एक विकास का आधार, क्योंकि वहाँ के लोग ग्राम सभा के अंदर कामों को चयनित करते हैं तो एक ऐसे स्थायी होंगे तो गाँव को उसका फायदा है। गाँव के लोग उनको समस्या क्या है उसके समाधान के लिए काम उस पर कर सकते हैं।
3: ई मौके केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कहो कि राजस्थान रा गांवई हलका में विकास और काम धंधा रा मौका बधावण जुड़िया काम संतोषजनक तरीकों चल रहा है वह ग्राम चौपाल पहल री सराहना कीनी। राज्य सरकार ट्रैक्टर और गैर परिवहन दुपहिया वाहन मालिका ने पंजीयन प्रमाण पत्र आरसी नवीनीकरण माए मोड़ो विवरण पर लागण वाला अतिरिक्त शुल्क माए राहत दीनी है। परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा बतायो कि खेतीबाड़ी सारू काम आ रहा ट्रैक्टर र मालिकाओं आरसी रिन्यूअल में एक साल रो मोड़ो विवरण पर 500 रुपया महीना री रेट अतिरिक्त शुल्क लियो जावेला जो बत्तों बत्तो 2500 रुपया वेला। गैर परिवहन स्कूटर मोटरसाइकिल री आरसी नवीनीकरण में मोड़ो विवरण पर 300 रुपया महीना री रेट अतिरिक्त शुल्क लियो जावेला जो बत्तों बत्तो 1000 रुपया फैला। आ राहत ई साल 30 सितंबर ताई मिलेला। प्रदेश रा लंकाओ आतुणी हलका माए चौमासा री बिरखा भेवण लगी है। फिलहाल मानसून री उत्तरी रेखा बाड़मेर और जोधपुर वेती निकल रही है। इनरे आवता दो दिन माए बीकानेर संभाग और आरएसआर रा हलका माए आगे बधवा रा आसार है। इनु जोधपुर और बीकानेर संभाग रा कुछ हलका माए आवता दो तीन दिन गरज सागे हल्की बारिश रा आसार है। उदयपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर और प्रतापगढ़ जिला माए बारिश सारू चेताई चियो है। इन बीचे राज्य रा घनखर हलका माए चौमासा री बिरखा वह रही है। मौसम विभाग रे मुजब 10 जुलाई बिरखा माए थोड़ी कमी री संभावना है। आज डूंगरपुर रा गलियाकोट सागवाड़ा और निठाउआ माए में बरसबा रा समाचार है। ए बीचे चित्तौड़गढ़ जिला रा कनेरा हलका रा लुणखंदा गांव माए बीती रात बिजली पड़ जावण तीन जना री मौत वे की। एक ही परिवार रा ए लोग साखा री निगरानी सारू खेत माए सूता हा। पुलिस वाना कनेरा CHC लेगी जठे डॉक्टर वारी मौत रो ऐलान करती नो। चौमासा माए बिजली पड़बार कारण हादसा री शंका न ध्यान राखता थका अजमेर विद्युत वितरण निगम जनताओं सावचेती राखण री अरज कीनी है। तेज आंधी और बारिश रे दौरान बिजली रा खंभा ट्रांसफार्मर और बिजली री लेणाओं दूर रहवण री राय दी री जी है। इ बीचे पाली माए मौसमी बीमारियां री रोकथाम सारू चिकित्सा विभाग तेल री गोलियां बनाई है। CMHO डॉक्टर विकास मारवाल बतायो कि मच्छर पनपाऊ रोकण माए ओ जुगाड़ घणो काम रो है।
5: ऑयल वॉल है वो बनती लकड़ी के बुरादे और कपड़े से, कपड़े के अंदर हम लकड़ी के बुरादे को बांध देते हैं और फिर रात भर या दो या चार घंटे तक उसको जो जला हुआ तेल है उसके अंदर डुबो के रखते हैं। फिर जो बड़ा पानी इकट्ठा हुआ होता है उसमें बीच में हम उस बॉयल को डाल देते हैं और धीरे धीरे एक ऑयल की परत बनती है। वो परत बनने से नीचे जो मच्छर के लार्वा होते हैं ऊपर सांस लेने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में आते हैं। अगर परत बनी हुई होती है तो मच्छर का लार्वा ऊपर नहीं आ पाता और वो सांस नहीं ले पाता और उस वजह से वो मर जाता है, जिससे वर्तमान में हमारे पास 10,000 ऑयल बॉल तैयार हो चुकी हैं और सभी BCMO को 1,00,000 ऑयल बॉल बनाने का हमने टारगेट दिया।
3: जयपुर रा श्याम नगर हलका माए 200 फीट बाईपास कने आज तेजी जा रही एक ट्रक फुटपाथ माथे उबा 5 जना न गचरती ना। हादसा में 3 बच्चों की मौके ही मौत फेंकी जबकि 2 जना घना जख्मी फेंकिया। पुलिस मामला की जांच कर रही है। पाली जिला में नेशनल हाईवे नंबर 162 माथे मोड़ भट्टा हलका में एक तेज रफ्तार कार डिवाइडर टकरा जावन रे कारण कार में सवार 5 जना जख्मी फेंकिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज जोधपुर के न केलावा खुर्द में राखी जिया धार्मिक कार्यक्रम में शामिल भया और जनसभा ने संबोधित कीना। इ मौके वे कहो कि मानवीय मूल्यान विचार व्यवहार और दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष

0: જોક આખી દુનિયા શાંતિ અર સંતુલન સારું ભર તોડી ઉમ્મીદ રી નજરું દેખ રહી હૈ અર માને સનાતન સંસ્કૃતિને માર્ગદર્શન રી બુનિયાદ બનાવણી ચાહીચે।
1: શુદ્ધ આત્મા સે વ્યક્તિ ભી સોચતા હૈ કે મેરા જીવન નૈતિક સત્ય કે માર્ગ પર ચલે, કરુણા સંવેદના મેરે મન વિચારો મે હો, વો આધ્યાત્મિક ધર્મ સંસ્કૃતિ કે નૈતિક માર્ગ પર ચલને કી પ્રેરણા ભી દેતા હૈ। વ્યક્તિ કા શરીર તો સ્વસ્થ હો સહી, ઉસકે તન મન સ્વસ્થ કે સાથ ઉસકા જીવન નૈતિક મૂલ્યો પર ચલે, સત્ય કે માર્ગ પર ચલે।
0: કાર્યક્રમમાં ઉર્જા મંત્રી હીરાલાલ નાગર અર યોગ ગુરુ બાબા રામદેવ ભી મોજૂદ રહ્યા। એ સમાચાર આપ આકાશવાણી જયપુર અજમેર નું સુન રહ્યા હો। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया रा राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो बीच आज इंडोनेशिया री राजधानी जकार्ता में बातचीत हुई। इन दौरान दोनों देशों बीच रणनीतिक भागीदारी ने मजबूत बनावण रे बारे में चर्चा करी ची। दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, खनिज, खेतीबाड़ी और नवी प्रौद्योगिकी समेत न्यारा न्यारा हल्का में भांत भांत रा करार माथे सही करी ची। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया री संसद ने संबोधित कीना। वाना भाषण में श्री मोदी समुद्र री दूरी ने दोनों देशों बीच रो पुल बतायो। भारत और इंडोनेशिया बीच ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ता रो जिक्र करता थका प्रधानमंत्री मोदी आतंकवाद रे खिलाफ एका माथे जोर दीनो। वे कहो कि भारत विस्तारवाद रे बजाय विकासवाद री नीति में भरोसा करे है।
2: भारत दुनिया का वो देश है जो विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है, और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास, टुगेदर विथ ऑल डेवलपमेंट फॉर ऑल। मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया।
0: इंडोनेशिया रा राष्ट्रपति सुबियांतो प्रधानमंत्री मोदी ने इंडोनेशिया रा सब ऊंचा मान बिंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया नवाजा। ये मौके मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा सोशल मीडिया पोस्ट रे जरिए श्री मोदी ने बधाई देता थका इन्हने भारत रा हर रहवासी सारू माथो ऊंचो करण री बात बताई। वे कहो के ओ इनाम दुनिया माए भारत रा बधता मान और भरोसा री निशानी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन रा सांस्कृतिक केंद्र में डूरंड कप फुटबॉल 2026 री ट्रॉफियां रो अनावरण कीनो। इस आगे डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट री ट्रॉफी ने न्यारी न्यारी ठोड़ घुमावण रा कार्यक्रम री आधिकारिक शुरुआत फेंकी। ये मौके राष्ट्रपति टूर्नामेंट में शिरकत करने वाली सगली टीमों और खिलाड़ियों ने शुभकामनावां दीनी। श्रीमती मुर्मू खिलाड़ियों खेल भावना राखता थका बेहतरीन खेल रो दर्शाव करण सारू कहो।
3: खेल भावना का महत्व केवल खेलों तक सीमित नहीं है, ये एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य है जो हमें समानता, सहयोग और विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ बने रहने की सीख देता है। हम वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार फुटबॉल में खिलाड़ी एक दूसरे का सहयोग करते हुए टीम को विजेता बनाते हैं, उसी प्रकार हम सभी देशवासी एक दूसरे के साथ देते हुए विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे।
0: कार्यक्रम में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल एनएस राजा सुब्रमणी, सेना प्रमुख धीरज सेठ, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन मौजूद हा। ध्यान जोग है कि डूरंड कप देश की मान्योड़ी और ऐतिहासिक फुटबॉल होड़ है। थाईलैंड रा पटाया में भी 20 सालों कम उम्र रा खिलाड़ियों री एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में भारत रा पहलवान सोना रा 4, चांदी रा 7 और कांसा रा 9 तमगा जीतिया। महिला वर्ग में भारत 184 अंक लेर उप विजेता रही, जबकि पुरुषों रा फ्री स्टाइल वर्ग में भारत री टीम 152 अंका सागे तीजी ठौड़ माथे रही। दूजकानी क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड बीच 5 T20 मुकाबला री सीरीज रो तीजो मैच आज रात नॉटिंगहम में खेलो जावेला और मैच भारत रा समय रे मुजब रात 10 बजे शुरू भेला। केंद्र सरकार चीन री फौज रे भारत में 60 किलोमीटर अंदर ताई घुस जावन रो दावो करन वाला सोशल मीडिया माथे

और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू फुटबॉल रा डूरंड कप 2026 री ट्रॉफियां रो अनावरण कीनो। इस आगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो भयो। नमस्कार।

फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला प्रस्तुत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सभी सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार। सबसे पहले ये देशभक्ति रचना लीजिए, सुनिए।

0: ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, नया दौर फिल्म का ये देशभक्ति गीत आपने सुना। मोहम्मद रफी, बलवीर और साथियों की आवाजें थी, साहिर लुधियानवी के बोल थे, ओपी नैयर की तर्ज थी।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, देश की सुरीली धड़कन। विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं फौजी साथियों का कार्यक्रम जयमाला। हम आपको अब सुनवा रहे हैं गुमराह फिल्म का ये गाना, जिसे महेंद्र कपूर और आशा भोसले ने गाया है। शब्दकार साहिल उद्यान भी हैं, संगीतकार रवि।

0: जयमाला कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे गुमराह फिल्म का गीत, आवाजें महेंद्र कपूर और आशा भोसले की थी, शब्दकार थे साहिल लुधियानवी और संगीतकार थे रवि।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
4: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
3: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती।

बंदिश फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। किशोर कुमार आशा भोसले की आवाजों में आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था। लीजिए अब सुने चंबल की कसम फिल्म का ये गाना, आवाजें लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की।

चंबल की कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आवाज़ें लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी की थी। साहिल लुधियानवी ने इस गीत को लिखा था खयाम की तर्ज थी। ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। जयमाला कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। इस कार्यक्रम में अब समय है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में बॉबी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। आनंद बख्शी ने इस गीत को लिखा था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत की धुन बनाई थी।
1: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
2: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
1: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है। पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका, सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
3: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
4: नसीब इंसान का,
3: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें, देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा जयमाला कार्यक्रम। इस समय आप सुन रहे हैं जयमाला कार्यक्रम का आज का आखिरी गीत आपको सुनवा रहे हैं। घर फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ है, गुलजार की बोल है, आर डी बर्मन की तर्ज।

0: घर फिल्म के इसी गाने के साथ ही आज का जयमाला कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आरजी

0: एक नई खुशी। जेडीए लाए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
1: जिसमें आनंद विहार, अभिनव विहार, यश विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मुझ विहार, हरित विहार, यमुना विहार, अनुपम विहार, आनंद लोक, बीलवा, बूरथल, वसंत कुंज, गोल्डन रेजिडेंसी, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, सरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, अनिरुद्ध एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, मनोहरपुरा, रामचंद्रपुरा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडरपास, ट्रांसपोर्ट नगर, गोविंदपुरा, करधनी, आदिनाथ सरोवर, डेमिकला, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
0: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।

0: एक नई खुशी।
1: जेडीए लाए हैं भूखंडों की ई नीलामी,
2: जिसमें आनंद विहार, अभिनव विहार, यश विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मुझी विहार, हरित विहार, यमुना विहार, अनुपम विहार, आनंद लोक, बीलवा, बूरथल, वसंत कुंज, गोल्डन रेजिडेंसी, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, सरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, अनिरुद्ध एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, मनोहरपुरा, रामचंद्रपुरा, एसएमएस हॉस्पिटल अंडरपास, ट्रांसपोर्ट नगर, गोविंदपुरा, करधनी, आदिनाथ सरोवर, डेमिकला, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
1: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी जेडीए द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।

पॉप एक्सप्रेस। इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पिया एल्बम का गाना, आवाज स्नेहा शंकर की थी। शायरा अपूर्वा ने इस गाने को लिखा था और अभिजीत श्रीवास्तव ने इस गाने की धुन बनाई थी।

0: शान की आवाज में तन्हा दिल एल्बम का गीत आप सुन रहे थे। इस गीत को शान ने ही लिखा था और राम संपत ने म्यूजिक, राम संपत का म्यूजिक था।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब यह प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
3: जी।
2: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
0: पॉप एक्सप्रेस ये कार्यक्रम इस समय सुन रहे हैं। लीजिए अब सुनिए पार्वती खान की आवाज में नूर देवासी का लिखा गीत, एल्बम का नाम है मिसिंग क्यू।

0: आज के हवा महल में सुनवा रहे हैं नरेश मिश्रा की लिखी झलकी मुंशी इतवारी लाल। निर्देशन है विनोद रस्तोगी का।
1: राजन की अम्मा पांचों उंगली घी में और
2: ए राजन के बाबू
1: भागमा तनी बगल में बैठ जाओ। अरे प्रेम से बतियाओ,
2: बात करने का टाइम नहीं है। बात बात में तुम जरूरी बात भूल जाओगे।
1: कौन सी बात?
2: बस रह गए ना वही मिट्टी के माधो। पूछो कैसे
1: कैसे।
2: देखो आहारे बेहारे लज्जा ना कारे।
1: काहे की लज्जा? अरे बेटवा हमारा है, दहेज हम छाती ठोक कर लेंगे।
2: और का, बैल बेचो या बेटा ब्याहो, सौदा पहले पक्का कर लो।
1: मगन रहू चोला, पक्का वादा कम न ज्यादा।
2: आम नींबू और बेटी के बाप का गला दबाओ तभी उसमें रस निकलता है।
1: इसमें भी कोई शक है?
2: तुमने हंस के बात की तो बात नहीं बनेगी।
1: तब का गुस्सा से बात करूं?
2: अरे नहीं जी, तनिक कड़े पढ़ कर बात करना।
1: ठीक है, कड़ा रहूंगा अकड़ा रहूंगा।
2: रामपाल को हमारा राजन पसंद आ गया है।
1: अपना राजन किससे कम है भाई, पढ़ा लिखा है, सरकारी नौकरी करता है।
2: ओ देदार है, इकलौता है, लाड़ प्यार में पला है।
1: मगन रहू चोला,
2: ऐसा घर बार मिले तो हम घर द्वार बेचकर बेटी के हाथ पीले कर दें।
1: अरे हमें कौन बेटी के हाथ पीले करने हैं राजन की अम्मा, हमें तो बस अपनी गोट पीली करनी है। हाँ, वैसे मुर्गी मोटी है, सोने का अंडा देती है।
2: और का, रामपाल का सारे जबार में नाम है, वो ईंट भट्टे का मालिक है।
1: मगन रहू चोला, कहो तो भट्टा ही मांग ले।
2: अरे भट्टा मांगोगे तो भट्टा बैठ जाएगा, हमें तो नगद नारायण चाहिए, जेवर चाहिए।
1: अच्छा
2: और
1: सामान चाहिए।
2: वो रामपाल आ रहे हैं, संभल कर बात करना। मैं चली अंदर।
1: आइए आइए रामपाल जी। हाँ भैया, 20,000 होगा।
3: लेकिन वो
1: 10 थान सोने का जेवर, 4 थान चांदी के जेवर, 5 बनारसी साड़ियाँ और
3: माफ कीजिए, मैं सौदा नहीं संबंध करने आया हूँ।
1: कैसा सौदा? आपका सिर्फ गाल बजा के बेटी ब्याहना चाहते।
3: मैंने ये तो नहीं कहा, पान फूल जो भी पन पड़ेगा वो।
1: भैया पान फूल तो देवता प्रसन्न होते हैं।
3: दहेज ही सब कुछ नहीं होता भैया, मेरी बेटी गुनों की खान है, अपने मुँह से क्या कहना, आप राजन बाबू से ही पूछ लीजिए।
1: राजन से? वो आपकी लड़की को कैसे जानता है?
3: दोनों कॉलेज में साथ साथ पढ़ते हैं।
1: मगन रहू चोला, भैया राजन को लड़की पसंद है तो हमको लेन देन पसंद है
3: जी।
1: आप हमारा दहेज दे दीजिए, लड़का आपका हो गया।
3: दहेज तो मेरे बस का नहीं है।
1: वाह वाह, दहेज आपके बस का नहीं है। फसल मैंने बोई, उसे जतन से पाला पोसा, जब फसल तैयार हो गई तो आप मुफ्त में हथियाने आ गए।
3: भाई साहब आप मेरी बात।
1: जाइए जाइए, कोई दूसरा दरवाजा खटखटाइए, दहेज का भाव पता चलेगा तब लौट कर आइएगा। हाँ मगन रहू चोला, भागमान तनी अपने बेटवा के बात सुन ले।
2: का है राजन?
1: लाडले अब ब्याह नहीं करेंगे। हाँ
2: काहे हो?
1: हमने रामपाल से सीधे मुँह बात नहीं की।
2: अच्छा, का हम लड़की वाले हैं जो सीधे मुँह बात करें?
1: अरे जिसकी 1000 गरज हो हमसे आकर बात करे। हाँ
2: कहने को भट्टे वाले और दिल गोरसी के बराबर भी नहीं।
4: अम्मा मैं भट्टे के साथ ब्याह नहीं करूँगा, मेरी पसंद भी तो कोई चीज है।
1: मगन रहू चोला, सुनती हो राजन की अम्मा, अब अपने घर में भी कलजुग आ गया है।
5: भाई कलजुग को छोड़ो, दुलारे भाई कलजुग को छोड़ो, ये बताओ कि भाई तुम्हारी दुकान पर खाद कब आएगी भगवान के फजल से?
1: अरे आइए आइए मुंशी जी। हाँ। खाद सब गोबर हो गई।
5: अम्मा भाई क्या कहते हो, गोबर की खाद होती है, खाद का गोबर कैसे हो गया भगवान के फजल से? है बोलो,
2: हमारे तो कर्म फूट गए।
5: भाग फूट गए
2: लौटा बेटा, बात काटना सीख
5: गया। यार भाई राजन, ये मैं क्या सुन रहा हूँ भगवान के फजल से?
4: मुंशी जी मैं अपनी शादी के बारे में आंख बंद नहीं कर सकता हूँ।
1: हमने क्या आंख बंद करके शादी ब्याह
5: किया? भाई देखो दुलारे भाई देखो, हमारे तुम्हारे ब्याह का जमाना गया। हाँ, अब शादी ब्याह में लड़के लड़के की जो पसंद है ना वही पहली होती है भगवान के फजल से। हाँ।
2: राजन के बाबू।
1: हाँ भागमान।
2: सुना तुमने, राजन अंग्रेजी ब्याह करेगा?
1: आग का कहूँ को नहीं भैया, हम तो अब गांव से चले।
5: अब भाई कहाँ चले भगवान के फजल से, कहाँ चले?
1: अब हम काशी बास करेंगे मुंशी जी।
2: राजन के बाबू हमको भी साथ लेते
5: चलो। अरे भाई नहीं नहीं नहीं नहीं, देखो भाई दुलारे भाई, दुलारे भाई। हाँ देखो भाई, मैं कहता हूँ कि तिल को तार बनाने से क्या फायदा है।

0: पहले भाई मुझे राजन से बात कर लेने दो, है हो सकता है भाई कि उसके भी कुछ अरमान हो भगवान के फजल से।
1: आप बात कीजिए, हमें अब राजन से क्या लेना देना।
0: अच्छा भाई राजन, आओ बेटे आओ भाई, देखे तुम्हारी शिकायत भी सुन ले भगवान के फजल से।
2: कहिए रामपाल, दहेज का बहाना दिया?
3: जी हाँ देख आया, अब तो इसी घर नैया पार लगेगी।
2: अच्छा हुआ ऊंटने पहाड़ देख लिया।
3: भाई साहब आपकी शरण आया हूँ, बाहर गहे की लाज रखिए।
2: अरे आप मेरी लाज रखिए, मैं आपकी रखूंगा।
3: मुझे नकदी और जेवर देना मंजूर है।
2: मगन रहो चोला, सामान भी देना होगा। आपको बिरादरी ऊपर बेटा दे रहा हूँ।
3: सामान भी बता दीजिए।
2: मोटरसाइकिल तो आप जरूर देंगे।
3: मोटरसाइकिल?
2: और क्या, खुद मोटरसाइकिल पर चढ़ेंगे और आपका दामाद पैदल चलेगा?
3: जी नहीं, मैं पैदल चलूंगा, मुझे डॉक्टरों ने पैदल चलने को कहा है।
2: मेरा राजन शहर जाने में तकलीफ होती थी, स्टेशन जाओ टिकट खरीदो तब गाड़ी पर बैठो।
3: जी हाँ मैं समझता हूँ, और कोई सेवा हो तो?
2: और का, अरे वही मेज कुर्सी बर्तन सर्तन,
3: फर्नीचर स्टेनलेस सेट बर्तन क्राकरी सब दूंगा। और बोलिए।
2: और मगन रहो छोला, अरे वो रेडियो जिसमें फोटो आती है उसको क्या कहते हैं?
3: टेलीविजन।
2: हाँ हाँ वही वही वही दीजिएगा।
3: वो भी दूंगा, अब तो ओखली में सिर दे ही दिया है भैया।
2: दिल चौड़ा रखिए भाई साहब, हमें तो ऐसा ही समझी चाहिए, जो मुंह से निकाला सो हाजिर है।
3: तो मैं अगले इतवार को बरिच्छा देने आ जाऊं?
2: आ जाइए आ जाइएगा, शुभ काम में देर का है कि। हाँ
4: माँ पेट में बड़ा दर्द है।
1: कैसा दर्द है बेटवा?
4: लगता है पेट में घसियारिन घास छील रही है।
2: अब क्या होगा, सब गुड़ गोबर हो गया।
4: मुंशी जी अभी तक नहीं आए?
1: बुलवाया है, आते ही होंगे।
2: कल ही परीक्षा है और
0: क्या हो गया? क्या हो गया राजन, कहाँ दर्द है भगवान के फजल से?
4: मुंशी जी अब मैं नहीं बचूंगा।
0: अरे भाई नहीं नहीं नहीं,
1: भगवान ऐसी बात ना बोलो बेटा।
4: अम्मा पानी।
1: बेटा ये लो पानी, हे शंकर भोले हे गंगा माई, हमारे राजन को ठीक कर दो, हम नरियर चुनरी चढ़ावेंगे।
2: गई भैंस पानी में।
0: अरे दुलारे भाई भैंस को जाने दो, बेटे की फिक्र करो भगवान के फजल से।
4: मुंशी जी गांव के डॉक्टर की दवा नहीं लगती, मर्ज उनकी पकड़ में नहीं आया।
0: अरे भाई देखो ना, मर्ज भी तो नए नए चल गए हैं भगवान के फजल से।
4: सब बेकार है, अब कुछ नहीं हो सकता मुंशी जी।
1: जी छोटा मत करो बेटा, हम तुम्हें शहर के बड़े डॉक्टर को दिखा देंगे, तो हम तुम्हारे बराबर रुपया।
2: भगवान हम चले गए तो परीक्षा का सरजाम कैसे होगा?
4: मुंशी जी इन्हें परीक्षा की तैयारी करने दीजिए, आप मुझे डॉक्टर को दिखा लाइए।
0: भाई ठीक है।
2: हाँ मुंशी जी, हाँ मुंशी जी, आप हमारी मदद कर दीजिए।
0: अजी भाई देखो, मदद से इनकार नहीं, लेकिन भाई मेरे खेत पर भी बहुत काम पड़ा हुआ है भगवान के फजल से।
1: सब काम छोड़ दीजिए, अपने राजन की फिक्र कीजिए।
0: अजी भाई देखो बहू, तुम कहती हो भाई तो जाना ही पड़ेगा। हाँ
2: मुंशी जी कल तक लौट आइएगा।
0: ठीक है,
2: कल परीक्षा आवेंगे।
0: हाँ हाँ देखो भाई दुलारे भाई, मर्ज पर मेरा कोई काबू नहीं है। हाँ डॉक्टर कहेगा तो राजन कल ही आ जाएगा भगवान के फजल से।
3: समधी जी, राजन बाबू कहाँ है, दिखाई नहीं पड़ते?
2: शहर गए हैं भाई साहब सामान खरीदने, आते ही होंगे।
3: हमें जल्दी परीक्षा देकर लौटना है।
2: शुभ काम में देर काहे की, बस राजन को आ जाने दीजिए।
0: भाई सोचा था क्या हो गया।
2: अच्छा ये मुंशी जी आ गए हैं।
0: हाँ भाई यहाँ तो होने वाले समधी जी भी तशरीफ रख रहे हैं भगवान के फजल से।
3: मुंशी जी मैं परीक्षा के लिए हाजिर हूँ।
0: जी भाई बड़े मौके से आए हैं आप।
2: राजन कहाँ है?
0: जी भाई राजन भी आ जाएगा, जरा तुम अंदर तो आना मेरे साथ। हाँ भाई अंदर तो आना। जी भाई देखो समझ गए मेरी बात। हाँ
2: मुंशी जी आप ही क्या कह रहे हैं?
1: हमारा राजन बिटिया हो जाएगा।
0: यकीनन हो जाएगा, डॉक्टर ने यही बताया है भगवान के फजल से।
2: उसके पेट में दर्द था।
0: हाँ भाई इसीलिए उसका मर्ज पकड़ में नहीं आ रहा था। हाँ
1: हे भगवान, मुंशी चाचा अब क्या होगा?
0: अजी भाई देखो, अब एक छोटा सा ऑपरेशन होगा भगवान के फजल से।
2: ऑपरेशन?
0: हाँ, और ऑपरेशन के बाद जो दर्द है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और जो राजन है ना बस रजनी हो जाएगा भगवान के फजल से। हाँ
1: हे शंकर भोले, तुम ही बताओ मैं क्या करूं?
0: अजी भाई मैं बताता हूँ, तुम राजन के लिए एक साड़ी और ब्लाउज निकाल दो फौरन, उसे अस्पताल में जरूरत पड़ेगी भगवान के फजल से।
2: एक साड़ी ब्लाउज से क्या होगा मुंशी जी? गठरी भर दहेज कहाँ से आएगा?
0: भाई दुलारे भाई डॉक्टर दहेज का नहीं, वो सिर्फ मरीज का इलाज कर सकता है।
1: हम ऑपरेशन न कराएं तब का होगा?
0: तब अजी भाई, तब राजन की जान को खतरा है भगवान के फजल से।
2: हाँ। इस पार कुआ उस पार खाई, बोलो भगवान किसमें कूदोगी?
1: राजन के बाबू तुम खामोश रहो।
2: अरे तो हमने क्या कर दिया भाई, ये कलयुग है कलयुग, भगवान की टकसाल में जाली सिक्के ढलने लगे।
0: अजी भाई देखो देखो, तुम लोग आपस में चोंच मत लड़ाओ। हाँ, रामपाल जी जो है ना, वो बैठक में बैठे हुए हैं। पहले परीक्षा का मसला तय करो भगवान के फजल से।
1: हाय, अब का तय करें, सोना तो लोहा हो गया।
0: नहीं नहीं, ऐसी बातें मत कहो बहू, रामपाल का लड़का भी तो शादी के काबिल है।
2: है तो है।
0: हाँ, वो शादी करना चाहते हैं तो करे।
1: कैसे?
0: अरे भाई, तुम लड़के के बजाय लड़की ब्याह देना। जवान लड़की भाई कब तक घर में बैठाए रहोगे भगवान के फजल से, बोलो।
2: हम नगद नारायण कहाँ से लाएंगे?
0: अरे भाई देखो ना, बात करने में क्या हर्ज है, रामपाल आखिर रिश्ते के लिए ही तो आए हैं भगवान के फजल से।
3: मुंशी जी आप उल्टी गंगा बहा रहे हैं।
0: अमा भाई, इसमें हर्ज क्या है? बोलो बोलो बोलो।
3: कुछ नहीं है, लेकिन दहेज भरपूर मिलना चाहिए।
0: गरीब भाई, गरीब आदमी है ये। देखो भाई, दुलारे भाई पर दया कीजिए और अपनी फरमाइश बताइए।
3: ज्यादा कुछ नहीं मुंशी जी, बस यही कोई 20,000 का फलदान होगा।
2: 20,000?
3: जी हाँ, और 10 थान सोने का जेवर, 4 थान चांदी के जेवर और 5 बनारसी साड़ियाँ।
2: रामपाल जी, हम दीन हैं, आप दीन बंधु हैं, हमसे जो पान फूल बन पड़ेगा।
3: कैसी बात करते हैं भाई साहब, पान फूल से सिर्फ देवता प्रसन्न होते
0: हैं। जी भाई देखिए, बात ये है कि दुलारे भाई गरीब हैं, हाँ, लेकिन इनका खानदान बहुत
3: ठीक है। हाँ। गरीब है तो मैं इनसे टेलीविजन नहीं लूंगा, लेकिन मोटरसाइकिल तो देनी ही पड़ेगी।
2: मोटरसाइकिल वो तो आपको भगवान ने दिया है, मैं सिर्फ साइकिल दे सकता हूँ।
3: साइकिल अपने अपने पास रखिए, मैं आपके घर शादी नहीं करूंगा।
0: अजी भाई रामपाल जी, दुलारे भाई का अरमान रखिए। हाँ, बेचारे वैसे भी कुदरत के कारखाने से ठगे हुए हैं भगवान के फजल से। हाँ।
3: मुंशी जी, दहेज की मांग पहले दुलारे भाई ने की थी।
0: हाँ।
3: इसमें मेरी क्या गलती?
0: बात तो भाई ठीक है भाई, दुलारे भाई तुम दहेज तो देने में क्या हर्ज भगवान के फजल से?
2: मुंशी जी बोलो। हाँ, मेरी तो मत मारी गई थी, मुझसे भूल हुई। भगवान की सौगंध खाकर कहता हूँ मुंशी जी, ब्याह का कोई सौदा नहीं है, दहेज लेना पाप है।
0: बोलिए भाई रामपाल जी, आप क्या कहते हैं भगवान के फजल से?
3: ठीक है मुंशी जी। हाँ। मैं भी दहेज नहीं लूंगा।
2: तो आप मेरी बेटी से अपना बेटा ब्याहेंगे?
3: जी नहीं, मैं आपके बेटे से अपनी बेटी ब्याहूंगा।
2: बेटा?
0: हाँ भाई जी। हाँ दुलारे भाई, आपके बेटे ने फिलहाल बेटी बनने का इरादा छोड़ दिया है।
2: मुंशी जी, आप सच कहते हैं?
0: अरे और क्या, मैं झूठ कहता हूँ भाई, यकीन ना हो तो देख आइए, राजन मेरे घर में बैठा है मुंशियान के पास।
2: अरे भगवान, सुनती हो, अपना राजन रानी नहीं बनेगा।
0: अरे भाई सुनो तो, सुनो तो, चल कहाँ दिए दुलारे भाई?
2: राजन की अम्मा को मना कर दो मुंशी जी, साड़ी ब्लाउज निकाल।
0: अरे भाई साड़ी की फिक्र छोड़ो, पहले परीक्षा तो लेते जाओ भगवान के फजल से।
2: परीक्षा में बाद में लूंगा, पहले एक भिक्षा दीजिए।
0: अरे भाई मांग लो, क्या मांगते हो भगवान के फजल से बोलो।
2: ये बताइए, राजन को दर्द नहीं था तो इतना बड़ा झूठ ये सब?
3: राजन बाबू को दर्द था।
2: कैसा दर्द था भैया?
0: अजय भाई दर्द ये था कि वो रामपाल की बेटी के बगैर जी नहीं सकता था।
3: दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं।
2: दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हम रोकने वाले कौन है भैया? मियाँ बीबी राजी तो कहा करें?
0: ये बात तुम अब कह रहे हो दुलारे भाई, पहले तो दहेज न मिलने पर काशीवास करने पर आमादा थे भगवान के फजल से।
3: मुंशी जी ने आपको सही राह पर लाने के लिए मुझसे मिलकर नाटक किया, मैं आपसे माफी चाहता हूँ।
2: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है समधी जी। अरे घास गिरी तो गिरी, पर गिरी बहुत मिट्टी है।
0: दुलारे भाई, तुमने दहेज का दूसरा पहलू देख लिया भाई, ये ठीक ही रहा। अब कभी मत भूलना कि दहेज के दलदल में फंसने वालों का जमाना अब नहीं रहा भगवान के फजल से। हाँ नहीं।
5: मुंशी इतवारी लाल, अभी आपने नरेश मिश्रा की लिखी ये झलकी सुनी। निर्देशक थे विनोद रस्तोगी। आकाशवाणी इलाहाबाद केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

अरिजीत सिंह और साथियों की आवाजों में यारियां टू फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। गीतकार थे यो यो हनी सिंह। अब आइए सुनते हैं फिर हेरा फेरी फिल्म का ये गीत।

0: चित्रलोक कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे फिर हेरा फेरी फिल्म का गीत। हेमेश रेशमिया की आवाज थी, समीर के बोल थे, हेमेश रेशमिया का संगीत था।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।

0: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना ज़रूरी रहता है।
1: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
3: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था, हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

मलयाल फिल्म का गीत आप सुन रहे थे ऋत्विक तलाशिक शिलकर और साथियों की आवाज़ों में। प्रशांत इंगोली ने इस गीत को लिखा था और संजय लीला भंसाली ने इस गीत को संगीत से संवारा था। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, चित्रलोक कार्यक्रम में। अब वक्त है कि एक छोटा सा ब्रेक लिया जाए। ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे।

0: एक नई खुशी। JDLI है भूखंडों की ई नीलामी,
1: जिसमें आनंद विहार, अभिनव विहार, यश विहार, विप्र विहार, स्वर्ण विहार, मुझ विहार, हरित विहार, यमुना विहार, अनुपम विहार, आनंद लोक, बीलवा, बूरथल, वसंत कुंज, गोल्डन रेजिडेंसी, रियासत रेजिडेंसी, शौर्य नगर, दीनदयाल नगर, सरोली, निलय कुंज, विद्याधर नगर, सेंट्रल स्पाइन, मेट्रो एनक्लेव, अनिरुद्ध एनक्लेव, गोकुलौरा, अनुपम विहार, पत्रकार कॉलोनी, रियासत निर्वाणा, खुशी संसार, मनोहरपुरा, रामचंद्रपुरा, SMS हॉस्पिटल अंडर पास, ट्रांसपोर्ट नगर, गोविंदपुरा, करधनी, आदिनाथ सरोवर, डेमिकला, रिंग रोड परियोजना एवं निजी खातेदारी योजनाओं जैसी प्राइम लोकेशन पर विभिन्न साइजों के आवासीय, व्यावसायिक, मिश्रित, वेयरहाउस व दुकान उपयोग के लिए भूखंड ई नीलामी के माध्यम से उपलब्ध है।
0: भुगतान के लिए लगभग 6 माह तक का समय मिलेगा और एक मुश्त भुगतान पर 2% की छूट। ई नीलामी JDA द्वारा जुलाई माह में की जा रही है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 01412569696 पर।
2: सुबह 7 बजे आप सुनते हैं भूले बिस्तरे गीत, प्रायोजक वीकू वज्रदंती, इंडिया का गम एक्सपर्ट, मजेदार नहीं असरदार।
3: प्रत्येक बुधवार सुबह 9:15 पर सुनिए कार्यक्रम हेल्थ इज वेल्थ। प्रायोजक हैं लेजर चिकित्सा में अग्रणी नाम आनंद आई हॉस्पिटल जयपुर।
4: 9772097720।
5: प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे सुनिए जयमाला। प्रायोजक हैं देव दर्शन ओवरसीज़।

0: जसपिंदर नरूला और सोनू निगम की आवाजों में सोल्जर फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। समीर ने इस गीत को लिखा था, अन्नू मलिक ने इस गीत की धुन बनाई थी।
1: जिस तरह इंसान का नसीब मोहब्बत से संवरता है, ऐसे ही फिल्मी गीतों की किस्मत चमकती है चाहने वालों के प्यार से।
2: नसीब इंसान का।
1: मगर कुछ गीत बेहतरीन होकर भी गुम हो जाते हैं समय के अंधेरे गलियारों में।

0: ऐसे ही नायाब गीतों का कार्यक्रम
1: अनमोल यादें,
0: जाने माने फिल्म पत्रकार राजीव विजयकर के साथ
1: अनमोल यादें
0: सुनना न भूलिए हर शुक्रवार शाम 7:45 पर अनमोल यादें देश की सुरीली धड़कन विविध भारती पर।
2: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है, रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
3: अपनी आप रातों में चिमने सरकती है।
2: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
4: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
2: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
4: तेरा जवाब नहीं,
2: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
4: प्यार का राग सुनो रे।
2: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
4: सदा रही है, सदा रहेगी।
2: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
1: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: जिनकी बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है जीवन का संगीत, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत।

में बांसुरी की भूमिका सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।

दिल्ली सिक्स फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। रेखा भारद्वाज और साथियों की आवाजें थी। प्रसून जोशी ने इस गीत को लिखा था, ए आर रहमान की तर्ज थी। इसी गाने के साथ आज का चित्रलोक कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए सविता सिंह को। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया, कहा भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया, कहा इससे आर्थिक और पर्यावरणीय लाभ। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया, कहा 6000 हेक्टेयर से अधिक हरित रिज क्षेत्र को वन क्षेत्र में विकसित किया जाएगा। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता, वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। मौसम विभाग का अगले 4 दिन में उत्तर और दक्षिण भारत के कई हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान। और नॉटिंघम में 5 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला के तीसरे मैच में आज भारत का मुकाबला मेजबान इंग्लैंड से। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
1: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया हूं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
0: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एक तरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया।
1: आतंकवाद जैसे विषयों पर भारत और इंडोनेशिया दोनों की एक राय रही है। पिछले वर्ष पहलगाम में जब जघन्य आतंकवादी हमला हुआ, इंडोनेशिया तब भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहा। मैं इसके लिए राष्ट्रपति प्रबोवो और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। हमारे दोनों देश काउंटर टेररिज्म पर जॉइंट वर्किंग ग्रुप के माध्यम से साथ काम कर रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, डिजिटल प्रौद्योगिकी, शिक्षा, एआई और महत्वपूर्ण खनिजों के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का आह्वान किया। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंधों पर प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत रामायण से लेकर बोरोबुदुर तक फैली हुई है।
1: इंडिया और इंडोनेशिया सिर्फ समुद्र ही शेयर नहीं करते, हमारी हिस्ट्री भी शेयर्ड है। हमारा संबंध रामायण और महाभारत की विरासत है। बोरोबुदुर और प्रभानंद जैसी अद्भुत स्मारकों के जरिए जुड़े हैं हम। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ा से जुड़े हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा है कि वैश्विक विकास को गति देने में भारतीय अर्थव्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि भारत 1 अरब से अधिक लोगों के सपनों को साकार करने वाला राष्ट्र है और ऊर्जा तथा कनेक्टिविटी से लेकर सेमीकंडक्टर विनिर्माण तक कई क्षेत्रों में तेजी से प्रगति कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता की ओर भारत की यात्रा न केवल इंडोनेशिया बल्कि पूरे आसियान क्षेत्र के लिए प्रेरक शक्ति बन रही है। उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया विकास के लिए एक समान दृष्टिकोण साझा करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मात्र 20 रुपए प्रति माह से शुरू होने वाली किफायती बीमा योजनाओं जैसी पहलों ने वित्तीय समावेशन में क्रांति ला दी है। वहीं यूपीआई और एक्सप्रेसवे के तेज विस्तार ने भारत की अर्थव्यवस्था को रूपांतरित किया है और लाखों लोगों के जीवन स्तर में सुधार किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इंडोनेशिया द्वारा दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान बिंतांग आदिपूर्णा दोनों देशों के बीच घनिष्ठ मित्रता का प्रतीक है।
1: आज सुबह ही मुझे इंडोनेशिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त करने का भी सौभाग्य मिला। ये 140 करोड़ भारतीयों का यश है। ये भारतीय समुदाय के आप सभी साथियों का सम्मान है और सबसे बड़ी बात, ये पुरस्कार इंडोनेशिया और भारत की घनिष्ठ मित्रता का एक और प्रतीक है।
0: इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई गति प्रदान की गई। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM बेंगलुरु को इंडोनेशिया में एक विदेशी परिसर स्थापित करने की अनुमति मिलने से भारत के शिक्षा क्षेत्र में नया अध्याय जुड़ गया है। इस प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया यात्रा के दौरान मंजूरी दी।
2: बेंगलुरु IIM वैश्विक स्तर पे ग्लोबल स्टैंडर्ड में QS रैंकिंग में 29th पोजीशन पे अभी है। एशिया की सूची में ये 5th नंबर पे है। इस प्रकार के एक महत्वपूर्ण इंस्टीट्यूट हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा को, भारतीय शिक्षा प्रणाली को वैश्विकरण करने में, इंटरनेशनलाइज करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है, जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया।
3: श्री गडकरी ने कहा कि वैकल्पिक ईंधनों के अधिक उपयोग से प्रदूषण कम होगा, ईंधन आयात में कमी आएगी और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इससे किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्रमुख परियोजनाएं देश में संपर्क व्यवस्था को मजबूत कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने जम्मू श्रीनगर मार्ग पर बन रही 36 सुरंगें, केदारनाथ रोडवे और कश्मीर से कन्याकुमारी तक बेहतर सड़क संपर्क जैसी परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इनसे देश के बुनियादी ढांचे को मजबूती मिल रही है। श्री गडकरी ने यह भी कहा कि राजनीति सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन का माध्यम होना चाहिए। शिवांग की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने अगले 4 वर्षों में 6,300 हेक्टेयर हरित रिज क्षेत्र को पूर्णतः वन भूमि में विकसित करने और इसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है।
4: रिज के अंदर 70 से ज्यादा तालाब भी होंगे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट भी होंगे और यहाँ पर जितनी भी हमारी आर्कियोलॉजी की संरचनाएं हैं उसको भी हम सुरक्षित करेंगे।
0: गृह मंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पिछले एक वर्ष में 129 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट चालू हो गए हैं। गृह मंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज प्रगति परियोजना का शुभारंभ किया। इसका उद्देश्य 20,000 से अधिक कृषि उद्यमियों और 20 लाख किसानों को सशक्त बनाना है। नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में श्री चौहान ने विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कृषि विकास, समृद्ध गांव और समृद्ध किसानों के विकास की आवश्यकता पर बल दिया।
5: प्रधानमंत्री जी के विजन के कारण भारत की कृषि तेजी से बदल रही है विकसित भारत के लिए, विकसित कृषि, समृद्ध गांव, समृद्ध किसान। सरकार अपने सारे प्रयत्न कर रही है, लेकिन सरकार के साथ अगर बाकी संगठन भी जुड़ते हैं तो काम और तेजी से आगे बढ़ता है। और प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत ये तय किया है कि अभी तक 26,000 कृषि उद्यमी ट्रेंड करके, छोटे छोटे कृषि उद्यमी इन्होंने तैयार किए हैं, जो एक गाँव में काम करते हैं और गाँव की कृषि को बदलने के लिए 100-200 किसान को साथ जोड़ते हैं।
0: आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण के अंतर्गत 4,00,000 से अधिक गारंटियां जारी की जा चुकी हैं और गारंटीकृत राशि 1,55,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस वर्ष मई में शुरू की गई इस योजना से सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम सबसे अधिक लाभान्वित हुए हैं।
6: वित्त मंत्रालय ने कहा कि यह योजना पश्चिम एशिया की भू राजनीतिक स्थिति से प्रभावित व्यवसायों को तेजी से और बड़े पैमाने पर सहायता प्रदान कर रही है। मंत्रालय ने बताया कि योजना ऋण देने वाली संस्थाओं को उधारकर्ताओं को अतिरिक्त ऋण देने के लिए जोखिम

0: कम करने हेतु बनाई गई है। इससे व्यवसायों को नकदी प्रवाह में व्यवधान से उबरने और संचालन जारी रखने में मदद मिलती है। इसने वित्तीय संस्थानों को अधिक आत्मविश्वास के साथ ऋण देने में भी सक्षम बनाया है। इससे एमएसएमई के लिए अतिरिक्त ऋणों पर 100% और अन्य व्यावसायिक क्षेत्रों के लिए 90% गारंटी कवरेज प्रदान करके जरूरतमंद क्षेत्रों तक तरलता पहुँच सुनिश्चित होगी। वित्तीय सेवा विभाग ने योजना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए देश भर में एक अभियान भी चलाया है। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में प्रारंभिक और माध्यमिक स्तरों पर स्कूली शिक्षा छोड़ने वाले बच्चों की दर में पिछले 3 वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय कमी देखी गई है। शिक्षा मंत्रालय ने आज देश में स्कूली शिक्षा पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली एजुकेशन प्लस 2025-26 की रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री जी किशन रेड्डी ने सिंगारेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड को ताड़ीचेरला 2 कोयला ब्लॉक के सीधे आवंटन की घोषणा की। सहकारी संघवाद के महत्व पर उन्होंने कहा कि सिंगारेनी की वित्तीय स्थिति को सुधारने, बढ़ते कर्ज का सामना करने और घटते कोयला उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने इस निर्णय को मंजूरी दी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। वायनाड के मेपड़ी में कल्लाड़ी के पास सुरंग निर्माण स्थल पर तेज बारिश के बाद हुए भूस्खलन में 3 लोगों की मौत हो गई है। जमीन के नीचे फंसे 9 मजदूरों को बचा लिया गया है। 6 अन्य अभी भी लापता हैं और उनके मलबे के नीचे दबे होने की आशंका है। अग्निशमन और आपदा राहत दल बचाव अभियान में लगे हुए हैं। एक रिपोर्ट।
2: केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने कहा है कि वायनाड जिले में भूस्खलन स्थल पर बचाव कार्य तेज कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि 20 जून को ही सुरंग बनाने के काम के दौरान जमा हुई मिट्टी को हटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन ठेकेदारों ने इन निर्देशों का पालन नहीं किया। घटनास्थल के लिए रवाना हुए राज्य के मंत्रियों ने कहा कि अभी सबसे बड़ी प्राथमिकता भूस्खलन में फंसे लोगों को बचाना है। इस बीच मौसम विभाग ने आज वायनाड और पड़ोसी जिले कोझिकोड में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं कन्नूर और कासरगोड जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है, जबकि 4 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पालरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: महाराष्ट्र में आज भी मॉनसून की तेज वर्षा के कारण कई क्षेत्रों में बाढ़, भूस्खलन और यातायात बाधित रहा।
3: नासिक के घाट इलाकों में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हुआ है। रायगढ़ जिले में भी भारी बारिश जारी है, जिससे मुंबई गोवा हाईवे के कई हिस्सों में पानी भर गया है। हालात से निपटने के लिए NHAI ने हाईवे पर क्विक एक्शन टीम तैनात की है। घाट क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नदियों और बांधों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। एहतियात के तौर पर प्रशासन ने अगले आदेश तक मानसून टूरिज्म, ट्रैकिंग और एडवेंचर स्पोर्ट्स पर रोक लगा दी है। देवप्रिय भट्टाचार्य, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
1: इस बीच मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक उत्तरी, आंतरिक, कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ, विदर्भ, राजस्थान और पूर्वोत्तर क्षेत्र के कुछ भागों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिण पश्चिम मानसून आज गुजरात के शेष भागों और राजस्थान तथा हरियाणा के कुछ और क्षेत्रों में आगे बढ़ गया है। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज रात 10 बजे से नॉटिंघम में खेला जाएगा। भारत 5 मैचों की श्रृंखला में 0-1 से पीछे है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडोनेशिया की संसद को संबोधित किया। कहा, भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थक, विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम को वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के अभियान का शुभारंभ किया। केरलम में वायनाड सुरंग निर्माण स्थल पर भूस्खलन से 3 लोगों की मौत और 6 लोग लापता। वायनाड और कोझिकोड जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम प्रस्तुत है आपके लिए। सभी सुनने वालों को सविता सिंह का नमस्कार।

काला बाजार फिल्म का गीत गीता दत्त और मोहम्मद रफी की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे। शब्दकार थे शैलेंद्र और संगीतकार थे एसटी बर्मन। आपके लिए कार्यक्रम में लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा हुआ ये गीत, जिसे संगीत से संवारा है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और फिल्म का नाम है पत्थर के सनम।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत अभी आप सुन रहे थे। संगीतकार थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। फिल्म का नाम था पत्थर के सनम। लीजिए अब सुनिए ये गाना। सन ऑफ इंडिया फिल्म का ये गीत आप सुन रहे हैं।

लता मंगेशकर और सखियों के सुरों में शकील बदायनी का लिखा हुआ ये गीत अभी आपने सुना। इस गीत को संगीत से संवारा था नौशाद ने और फिल्म का नाम था सन ऑफ इंडिया। लीजिए अब सुनिए लता मंगेशकर महेंद्र कपूर की आवाजों में बड़ा आदमी फिल्म का ये गाना। रचना प्रेम धवन की है, संगीतकार हैं चित्रगुप्त।

0: कोई प्यार की देखे जादूगरी, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में कोहिनूर फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। शकील बदायूनी ने इसे लिखा था और नौशाद ने इस गीत की धुन बनाई थी।
1: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या, लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से, जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
2: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।

0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
1: विविध भारती पर आ रहे हैं साहित्य जगत के जाने माने लेखक हरिशंकर राठी, आपसे साझा करेंगे अपनी लेखन यात्रा।
2: किशोरावस्था से ही मैं कहीं न कहीं अपनी भाषा में व्यंग का प्रयोग करता था। हास्य भी मेरे अंदर था और मैं बहुत विनोद किया करता था। जो स्वाभाविक रूप से मेरे व्यंग निकलते थे किसी मुद्दे पर, वो कुछ लोगों ने कहा कि आप तो बड़ा अच्छा व्यंग बोल लेते हैं। ये बड़े मजे की बात है कि बाद में चल करके व्यंग मेरी प्रमुख विधा हो गई।
1: तो सुनना न भूले कार्यक्रम आज के मेहमान 8 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

सुजाता फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे। मजरूह सुल्तानपुरी ने इस गीत को लिखा था, एसटी वर्मन ने धुन बनाई थी। इस गीत के पहले आपने किशोर कुमार की आवाज़ में एक गीत सुना था जिसे हमने लिया था फिल्म एक राज से। शब्दकार थे मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार थे चित्रगुप्त। और अब सुजाता फिल्म के इसी गाने के साथ ही आज का आपके लिए कार्यक्रम से दीजिए इजाजत सविता सिंह को। नमस्कार।

0: यह है विविध भारती।
1: आज के फनकार कार्यक्रम आप सुनेंगे कुछ ही पलों के बाद।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: आज फिर जीने की तमन्ना है।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: चित्तौड़ उदयपुर के पास है, वहाँ शूटिंग कर रहे थे, ऊंची सी दीवार थी।
0: अभिनेत्री वहीदा रहमान,
2: और बीच में एक गैप था लिटरली, जो आप कह रहे हैं कि आज जीने की तमन्ना है, मरने का इरादा है, तो आपको ये भी नहीं फिक्र है कि आप मर जाएं तो मर जाएं। गाते गाते आप इस दीवार से जाती हूँ, जंप कर जाती हूँ। मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। खैर बड़े टेंशन में वो शॉट किया मैंने, शुक्र है गिरी नहीं।
0: ऐसी बेमिसाल कहानियाँ आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: आज के फनकार कार्यक्रम में आज बातें एक बहुत ही वरिष्ठ और अलबेले संगीतकार की। आज के फनकार कार्यक्रम में आज हम नमन कर रहे हैं संगीतकार अनिल बिस्वास को।
1: आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है। दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। दूर हटो है दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है।
0: अनिल बिस्वास का जन्म 7 जुलाई 1914 को बारीसाल ईस्ट बंगाल में हुआ था। आज ये जगह बांग्लादेश का हिस्सा है। अनिल बिस्वास के पिता थे जेसी बिस्वास। बहुत कम उम्र में बालक अनिल को संगीत का चस्का लग गया था। दिन रात वो संगीत के सुरों में खोए रहते थे। इसके अलावा एक और क्रांति हुई थी और वो ये कि बालक अनिल स्वतंत्रता आंदोलन में कूद पड़े थे। वे जुगांतर पार्टी का हिस्सा बन गए थे और भारत के स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लेने के लिए 14 बरस की उम्र में उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। जब वो जेल से रिहा हुए तो घर से केवल 5 रुपए लेकर कोलकाता भाग निकले। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा था। कोलकाता आने के बाद उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। छोटे मोटे काम उन्होंने किए और आगे चलकर उनकी मुलाकात सुप्रसिद्ध बांसुरी वादक पंडित पन्नालाल घोष से हुई। आगे चलकर अनिल बिस्वास की बहन पारुल घोष का विवाह पन्नालाल घोष के साथ हुआ था। यही वो दिन थे जब अनिल बिस्वास रंगमहल थिएटर से जुड़ गए। यहाँ वो एक्टिंग करते, गाने गाते और सहायक संगीत निर्देशक के तौर पर काम भी किया करते थे। इसके कुछ बरस बाद काजी नजरुल इस्लाम के लिए उन्होंने हिंदुस्तान रिकॉर्ड कंपनी की ओर से एक रिकॉर्ड भी तैयार किया था और इस तरह अनिल बिस्वास का खूब नाम हो गया था। फिर

आया साल 1935। अनिल बिस्वास कोलकाता से मुंबई की ओर रवाना हो गए। मुंबई में अनिल बिस्वास ने फिल्म धर्म की देवी में संगीत दिया। सन 1936 में वो सागर मूवी टोन से जुड़ गए। ये सागर मूवी टोन रामानंद सागर के सागर आर्ट से बिल्कुल अलग है और इसके मालिक हुआ करते थे चिमन लाल देसाई। यहां अनिल बिस्वास ने कई फिल्मों में संगीत दिया, जैसे डेक्कन क्वीन, हम तुम और वो, एक ही रास्ता और वतन वगैरह। उस जमाने में अनिल बिस्वास का काम अच्छी तरह चल निकला था और इसकी बानगी कुछ इस तरह से कि साल 1940 तक आते आते अनिल दा ने 26 फिल्मों में संगीत दे दिया था। इनमें से कुछ हैं मनमोहन, एक ही रास्ता, बहन, औरत, जागीरदार और अली बाबा। इन्हीं दिनों में उन्होंने सुरेंद्र और वहीदन बाई से गवाया फिल्म अली बाबा में।

0: सन 1940 में आई फिल्म अली बाबा का ये गाना आपने सुना सुरेंद्र और वहीदन बाई की आवाजों में। इस गाने को लिखा था आह सीतापुरी ने। इसके बाद आया साल 1943। ये वो दौर था जब अनिल विश्वास हिमांशु रॉय और देविका रानी की बॉम्बे टॉकीज से जुड़ गए थे। सन 1943 में उन्होंने फिल्म किस्मत में संगीत दिया। अशोक कुमार और मुमताज शांति के अभिनय वाली ये फिल्म कोलकाता के रॉक्सी सिनेमा में 3 साल और 8 महीने चली थी और आगे चलकर फिल्म शोले ने इसका रिकॉर्ड तोड़ा था। फिल्म किस्मत के गाने बेहद लोकप्रिय हुए थे।
1: जहां

सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। पूरा देश अंग्रेजों को देश से खदेड़ने के लिए तत्पर था। फिल्म किस्मत का ये गाना युवाओं का एंथम बन गया था। ये गाना युवाओं की प्रेरणा था। जहां कहीं भी प्रभात फेरियां या जुलूस निकलते, नौजवान गाते, दूर हटो ए दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। अंग्रेज सरकार इतनी खौफजदा और नाराज हो गई थी कि उन्होंने कवि प्रदीप और अनिल विश्वास के नाम के वारंट तक निकाल दिए थे और इन दोनों कलाकारों को भूमिगत होना पड़ा था। फिल्म किस्मत में सिर्फ यही एक हिट गाना नहीं था। इस फिल्म का ये गाना सुनिए।

0: सो रहा है शोरगुल न मचा धीरे धीरे।
1: इस फिल्म में अनिल बिस्वास की बहन और सुप्रसिद्ध गायिका पारुल घोष ने ये मीठा गाना गाया था।

अनिल बिस्वास की खासियत ये है कि उन्होंने शास्त्रीयता का दामन कभी नहीं छोड़ा। उनके संगीत में आपको अतिरिक्त वाद्य बिल्कुल सुनाई नहीं पड़ेंगे। जिन वाद्यों की जरूरत है बस वही वाद्य उनके संगीत में होते हैं। कभी पन्नालाल घोष की बांसुरी सुनाई देती है तो कभी पंडित राम नारायण का सारंगी। बड़े बड़े गुणी और माहिर शास्त्रीय संगीतज्ञों ने उनके लिए साज बजाए थे। महबूब खान के लिए अनिल बिस्वास ने 3 फिल्मों में संगीत दिया था। सन 1940 में आई थी औरत। आगे चलकर इसी फिल्म को दोबारा महबूब खान ने मदर इंडिया के नाम से बनाया था, लेकिन तब संगीत नौशाद का था। अनिल बिस्वास ने महबूब खान की अगली फिल्म में संगीत दिया, सन 1941 में आई बहन, और सन 1942 में फिल्म रोटी आई जो अनिल बिस्वास के संगीत से सजी थी। फिल्म रोटी में अनिल बिस्वास ने अख्तरी बाई फैजाबादी यानी बेगम अख्तर से गाने गवाए थे। सुनते हैं ये गाना।

अनिल विश्वास एक ऐसे संगीतकार हैं जिन्होंने कई गायकों के करियर को सहारा दिया, उन्हें पहला मौका दिया या उन्हें कामयाबी के रास्ते पर आगे बढ़ाया। सुप्रसिद्ध गायक तलत महमूद को पहला ब्रेक सन 1949 में फिल्म आरजू में उन्होंने दिया था।

दरअसल तलत महमूद और अनिल बिस्वास से जुड़ी हुई एक घटना है। फिल्म आरजू के गाने की रिकॉर्डिंग चल रही थी और तलत महमूद बहुत ज्यादा दबाव और तनाव में थे, इसलिए अपनी आवाज की मशहूर लर्जिश के बिना गा रहे थे। उनकी आवाज का वो कंपन गायब था। अनिल बिस्वास ने तलत महमूद को डांटते हुए कहा था कि तुम्हारी आवाज का ये कंपन ही तुम्हारी खासियत है और इसे तुम्हें कभी छोड़ना नहीं है। फिल्म आरजू के जरिए तलत महमूद की गायकी की कामयाबी की यात्रा शुरू होती है। इसके बाद तलत महमूद ने अनिल बिस्वास के लिए कई गाने गाए।

सन 1940 में फिल्म औरत में अनिल बिस्वास ने जो गाना गाया था वो है ये।

0: वैसे इसके अलावा अनिल विश्वास ने कई फिल्मों में गाने गाए हैं। विविध भारती के गानों के खजाने से फिल्म सौतेला भाई के इस गाने का अंश सुनिए, जिसमें अनिल विश्वास मन्ना डे के साथ गाना गा रहे हैं।
1: ऐसे का भरोसा न है वैसे का भरोसा, सच्चा है मेरे यार तो पैसे का भरोसा, कि पैसा ही मालिक पैसा ही दाता।

1945 में फिल्म पहली नजर में मुकेश से उन्होंने ये गाना गवाया। इसे लिखा था आह सीतापुरी ने। मुकेश को कुंदनलाल सहगल की छाया से बाहर लाने में और अपनी आवाज का एक मुहावरा खोजने में बहुत मदद की थी अनिल बिस्वास ने। सुनते हैं पहली नजर फिल्म का ये गाना।

0: सन 1948 में फिल्म अनोखा प्यार के गानों की रिकॉर्डिंग के दौरान अनिल बिस्वास की मुलाकात मीना कपूर से हुई। सन 1959 में उन्होंने मीना कपूर से शादी कर ली।
1: कच्ची है

लता मंगेशकर ने अपनी कई इंटरव्यूज में ये कहा है कि अनिल बिस्वास ने उन्हें ये सिखाया कि गाना गाते हुए सांस का किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, किस तरह से छिप कर सांस ली जाती है कि सुनने वाले को पता भी नहीं चलता गायक ने कब सांस ली और कब सांस छोड़ी। सन 1949 में जब लता मंगेशकर कामयाबी के पथ पर आगे बढ़ रही थी, अनिल बिस्वास ने फिल्म लाडली का ये गाना गवाया।

दिलचस्प बात यह है कि फिल्म फरेब के एक गाने की रिकॉर्डिंग से पहले अनिल विश्वास के घर पर दिलीप कुमार और अशोक कुमार किसी कारण से बैठे थे। महफिल चल रही थी। अनिल विश्वास ने अपने हारमोनियम पर ये गाना इन दोनों कलाकारों को गाकर सुनाया और पूछा कि इस गाने में महिला स्वर कौन होना चाहिए। दोनों ने तपाक से जवाब दिया कि ये गाना तो लता ही गा सकती हैं। जब पुरुष स्वर की बात आई तो दिलीप कुमार का कहना था कि ये गाना तलत महमूद से गवाया जाना चाहिए, लेकिन अनिल विश्वास ने कहा मैं ये गाना किशोर कुमार से गवा रहा हूं। दिलीप कुमार इस बात से सहमत नहीं थे, लेकिन अनिल विश्वास का कन्विक्शन और उनकी पहचान देखिए कि किशोर कुमार की आवाज में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गाना कितना खिला।

मुकेश को न केवल अनिल बिस्वास ने पहला मौका दिया बल्कि उनके करियर के कुछ यादगार गाने हैं अनिल बिस्वास के नाम। फिल्म आराम का ये गाना।

अब सुरैया की बात कर ली जाए। सुरैया ने अनिल बिस्वास के लिए दो मशहूर गाने गाए हैं। एक है फिल्म जीत का ये गाना, जिसे लिखा प्रेम धवन ने।

हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि गोपाल सिंह नेपाली का लिखा गीत फिल्म गजरे, आवाज सुरैया की, साल 1948।

सन 1965 में छोटी छोटी बातें का संगीत देने के बाद मुंबई से अनिल बिस्वास का मन उचाट हो गया था। वो दिल्ली चले आए और दिल्ली में आकाशवाणी के राष्ट्रीय ऑर्केस्ट्रा के निदेशक बन गए। यहाँ उन्होंने कई समूह गान कंपोज किए।

भारतीय फिल्म संगीत के इतिहास में अनिल बिस्वास की हैसियत फिल्म संगीत के एक पितामह सरीखी है। उन्हें हमारा विनम्र नमन।

0: आज की फनकार कार्यक्रम जो केंद्रित था संगीतकार अनिल विश्वास पर, शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति सहायक आकांक्षा सिंह और प्रस्तुतकर्ता मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

सारे फूल मुरझा जाते हैं, जिंदगी रूट जाती है। प्यार दो लोग करते हैं, बेवफा दोनों नहीं होते हैं। फिर क्या होता है जो जिंदगी रूट जाती है।

सीधी सादी सड़क टेढ़ी हो जाती है, रास्ते नजर नहीं आते, चेहरे पर घिर आए उदासी परेशान करती है। जिंदगी को मुट्ठी में बंद कर उससे बतियाना चाहते हैं, लेकिन जिंदगी रेत की मानिंद सरकती जाती है। ऐसे में हम जिंदगी को बुलाते हैं, मनहार करते हैं।

जिंदगी जब मान जाती है तो लम्हे मोती से चमक उठते हैं, दिल खिल जाता है, आंखों में प्यार बेशुमार होता है, खुशियों का खजाना बन जाती है जिंदगी जब जिंदगी खुश होती है।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम छाया गीत। मोहब्बत की इनायत सबको नहीं मिलती, जिन्हें मिलती है मोहब्बत उनकी जिंदगी

फूलों की झालर जैसी हो जाती है। जिंदगी का सफर आसान हो जाता है जब मिल जाता है किसी का भला सा साथ। नदी में तैरती कश्ती पर दो चाहने वाले एक साथ अपनी जिंदगी का सफर तय करते हैं। वे कांटों की परवाह नहीं करते, खुशनसीब होते हैं वे जिनकी जिंदगी मोहब्बत से भरी होती है।

0: रात कभी कभी।
1: कुछ लम्हे कभी बूढ़े नहीं होते, उन लम्हों पर अतीत की गर्द नहीं होती, न ही वो धूमिल होते हैं। वो लम्हे ताजी धुली आंखों की तरह चकमक रहते हैं। वो लम्हे बारिश में धुली पत्तियों की तरह हरे रहते हैं। कौन से लम्हे हैं वो जिन्हें हम अपनी पलकों की कोरों में सहेज लेते हैं।

आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1455555 पर कॉल करें।

0: आते।
1: अब आज का छाया गीत कार्यक्रम समाप्त करने की अपनी रेडियो सखी ममता सिंह को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
2: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे वीको वज्रदंती, भारत का गम एक्सपर्ट।
3: वीको टर्म

0: अपने देश में बढ़ रही है यूरिन की समस्या। लोग परेशान हैं प्रोस्टेट की बीमारी से। जरूरी है सजगता और सचेत रहना।
1: प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहाँ कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है।
0: यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर उमेश ओझा चर्चा करेंगे प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी तमाम बीमारियों पर। तो सुनिए सेहतनामा 13 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनिए,
3: कहिए,
0: सुनिए एक खुशखबरी,
3: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर। रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपनी पसंद के गाने।
4: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: और अब समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं भवतारिणी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत इंडोनेशिया रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि इससे दोनों देशों की समृद्धि बढ़ेगी और क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति भी बनी रहेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करता है और विस्तारवाद नहीं विकास मार्ग पर चलता है।
2: भारत विस्तारवाद नहीं विकासवाद की नीति पर चलता है और इसलिए हम भारत में कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आज मैं यही मंत्र यही भावना लेकर इंडोनेशिया के आप सभी सांसद सदस्यों के बीच आया। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र ताजा भविष्य का केंद्र है।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच संबंध सदियों पुराने हैं और दोनों देशों में समान लोकतांत्रिक मूल्य, आपसी विश्वास और भविष्य के लिए साझा दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकास, शांति, स्थिरता और समृद्धि में विश्वास रखता है। श्री मोदी ने आतंकवाद और क्षेत्रीय सुरक्षा को कमजोर करने वाली एकतरफा कार्रवाइयों के खिलाफ सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोबो सुबियांतो के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता की। बैठक में द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की गई। श्री मोदी ने इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान वेंतांग आदिपूर्णा ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया से सम्मानित होने पर आभार व्यक्त किया। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने आज बहरीन के उप प्रधानमंत्री खालिद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने बताया कि मुलाकात के दौरान दोनों पक्षों ने विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा की। कामराज पोर्ट 18 मीटर ड्राफ्ट क्षमता वाला देश का दूसरा प्रमुख बंदरगाह बन गया है। बंदरगाह जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्वानंद सोनोवाल ने कहा कि यह उपलब्धि आधुनिक और भविष्य के लिए तैयार समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है जो भारत की आर्थिक वृद्धि और वैश्विक व्यापार को बढ़ावा देगा। श्री सोनोवाल ने कहा कि मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के विजन से प्रेरित होकर देश विश्व स्तरीय बंदरगाह बना रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय राजधानी में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से एक पेड़ माँ के नाम अभियान के अंतर्गत दिल्ली में 70 लाख पौधे लगाने के मिशन का शुभारंभ किया। श्री शाह ने कहा कि यह अभियान दिल्ली के पर्यावरण को बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार यमुना नदी को साफ करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। गृहमंत्री ने 300 इलेक्ट्रिक बसों का शुभारंभ किया और 3 नवनिर्मित बस डिपो तथा 40 वाहन परीक्षण केंद्रों का वर्चुअल उद्घाटन किया। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित पहल है जिससे देश को आर्थिक और पर्यावरणीय क्षेत्र में महत्वपूर्ण लाभ मिले हैं। नई दिल्ली में विकसित भारत सम्मेलन में श्री गडकरी ने ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने और जीवाश्म ईंधन के आयात पर निर्भरता कम करने के लिए वैकल्पिक जैव ईंधनों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। फीफा विश्व कप में अटलांटा में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना और मिस्र के बीच राउंड ऑफ 16 का मैच चल रहा है। फिलहाल मिस्र 2-0 से आगे है। इसके बाद राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में वैंकूवर में स्विट्जरलैंड का सामना कोलंबिया से होगा। राउंड ऑफ 16 के एक और मुकाबले में बेल्जियम ने सिएटल में अमेरिका को 4-1 से हराकर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। नॉटिंघम के ट्रेंट ब्रिज में भारत ने इंग्लैंड के साथ तीसरे T20 क्रिकेट मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। ताजा समाचार मिलने तक इंग्लैंड ने 12 ओवर में 3 विकेट पर 111 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: 100.3 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी की विविध भारती सेवा का जयपुर केंद्र है। रात्रि के 11:05 हुए हैं। अब आज का प्रसारण समाप्त करते हैं। आपसे अगली भेंट कल सुबह 5:53 पर होगी। शुभ रात्रि। जय हिंद।